मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि। तदनुसार

24 मई 2026 5:57 होने को हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को है। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया।

0: है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। यह आकाशवाणी रायपुर है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इसमें पहले सुनिए देश वंदना समूह स्वर में। रचना है राम सेवक दीपक की।

जगजीत सिंह के गाए इस भजन के बाद लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति बलवंत के स्वर में।

0: मुकेश के गाए इस भजन के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। ये आकाशवाणी रायपुर है, धर्म ग्रंथों से पाठ। इसमें सुनिए ऋग्वेद से अग्नि सूक्त पाठ।
1: भारतीय धार्मिक जगत में अग्नि का विशेष तथा आदरणीय स्थान है। विवाह आदि के अनेक धार्मिक कार्य अग्नि के साक्ष्य में ही किए जाते हैं। प्राचीनतम भारतीय साहित्य ऋग्वेद में सर्वप्रथम जिस देवता की स्तुति की गई है वह अग्नि ही है। भारतीय मान्यता है कि दैवी संसार और मानवीय जगत के बीच मध्यस्थता और संपर्क सूत्र का कार्य अग्नि के द्वारा ही किया जाता है। ऋग्वेद के इस अग्नि सूक्त में अग्निदेव की विविध विशेषणों से स्तुति की गई है। अग्नि मानवों का सखा व रक्षक है, वह महान दानी है और मानव के गृहस्थ जीवन को खुशियों से भर देने वाला है। सूक्त में ऋषि मधुछंदा ने अग्निदेव से प्रार्थना की है कि वह पिता की भांति उसका कल्याण करता रहे।
2: ओम अग्निर्नव वै स्वामित्व

धर्म ग्रंथों से पाठ में अभी आप सुन रही थी ऋग्वेद से अग्नि सूक्त का पाठ। ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:35 हुए हैं। आइए अब सुने श्री रामचरित मानस गान।

अनुज लक्ष्मण तथा भार्या सीता के साथ पर्णकुटी में निवास करते हुए श्रीराम इस प्रकार सुशोभित हैं, जिस प्रकार इंद्र अपनी पत्नी शची तथा पुत्र जयंत के साथ अमरावती में सुखपूर्वक निवास करते हैं। किंतु उधर अयोध्या पर आसन्न शोक का आभास पशु पक्षियों की उस व्याकुलता से मिलता है जो निषाद राज गुह ने वापस आकर देखा। रथ के साथ सुमंत्र को आकुल देखकर निषाद राज गुह को अत्यंत दुख हुआ। निषाद राज को अकेले लौट आया देख सुमंत्र हा राम हा लक्ष्मण हा सीते कहकर धरती पर गिर पड़े। रथ में जुते अश्व दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर जिधर उन्होंने राम को जाते देखा था जैसे करुण हिन हिनाहट में अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं। चारा पानी छोड़ उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। निषाद राज ने सुमंत्र को पंडित और ज्ञानी संबोधित करके समझाया, अब विषाद छोड़ विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। रथ पर बिठाए जाने के बाद भी शोक से शिथिल हुए सुमंत्र से रथ हाँका नहीं जाता। घोड़ों को शोकातुर देख निषाद राज भी विह्वल हो गए। उन्होंने अपने चार सेवक सारथी के साथ कर दिए जो रथ को अयोध्या की ओर ले चले।

0: श्री रामचरितमानस गान अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी की इस संगीतमय प्रस्तुति के संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया और गायक कलाकार थी भूपेंद्र सिंह। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 हुए हैं। कृषि चर्चा इस कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है गर्मी की जुताई का महत्व एवं उसके लिए उन्नत कृषि यंत्र। जानकारी देते हुए डॉक्टर आर के नायक।
1: मोर किसान भाई मन सबला राम राम। गर्मी की जुताई बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है। गर्मी की जुताई के बहुत सारे फायदे होते हैं। यदि वाला किसान सही समय में कर ली ही तो ओकर आधा जो कठिन है काम हर ओहर सब हर इजी हो जाते। इमें का होते असल में हमार वायुमंडल जो है उसमें लगभग नाइट्रोजन की जो लेवल होते और 72-78% तक होते और 72-78% होए के बावजूद हमन वाला यूज नहीं कर पान। यदि हमन बारिश हो ही और ओकर बाद जुताई ला करबो तो जो हवा में नाइट्रोजन है वह जमीन के अंदर नहीं घुस सके। तो ओकरे बार का है कि यदि हमन गर्मी के सीजन के पहले मतलब जो हमार अभी तो खेत खाली है तो अभी जैसे हम कटाई कर लें गेहूं के या चना के या हर चीज़ के तो ओकर बाद तुरंत जुताई लग कर ले वो अभी यदि गर्मी अच्छा पड़त है और अभी एक पानी गिर भी दी से तो अभी जो टाइम है बहुत अच्छा सुटेबल हो ही ओकर बार। और उमें जो फायदा होते थे मतलब चिल्ला बताया तो मतलब कि एक तो चीज़ है कि जमीन के अंदर में अभी जो कीड़ा मकोड़ा रहीन जब आप खेत ला जहा तो अभी नहीं दिखे और नहीं दिखे के कारण ये है कि सब के सब कीड़ा अपन के एक ठो लार्वा बना के जमीन के अंदर में घुस जाते। तो जब हम जुताई करन जाबो और अच्छे गहरी जुताई यदि करबो जैसे कि एक हल आते MB प्लाव जैमे मिट्टी ला पलटा जाते। पलटाई के कारण का होते जमीन के अंदर में जो मिट्टी है तेहर ऊपर आ जाते और ऊपर के जो खर पतवार या जो भी हमारे पुराना अवशेष बचे खेती के ते सब हर जमीन के अंदर चल देते जो उनकी खाद के रूप में काम आते और जो नीचे जमीन के अंदर कीड़ा रहते तेहर ऊपर आ जाते। तो वो जब आप देखे वो है कि जब भी

0: हम जुताई करसन तो पिछू ले चिड़िया बना के खाते हैं ओला, तो ओमन कीड़ा ला खा ली और आधा आपके फसल के कीड़ा की समस्या समाधान हो जाएगी। दूसरा ये है कि खरपतवार जो रही ऊपर में ते हर भी जमीन के अंदर चल रही तो ऑटोमेटिक सड़ जाएगी और सड़े के कारण यह हमार आगे जाके हमार खाद के रूप में काम करते खेती पर। ओकर अलावा मिट्टी के जल संधारण क्षमता हर भी जतका गहरा जुताई करिया उतकी पानी हमारे जमीन में भर सकत है। और वो हर यदि कोई कारण से पानी है नहीं गिरत है, कई बार ऐसे स्थिति होते कि जून महीना के पानी हर 15 तारीख गिरी सो कर बाद तहाँ 2-4 दिन गिर के फिर बंद हो जाते, वो स्थिति में हमारे खेत जुताई हो रही तो अगर धारण करे के क्षमता और बढ़ जाते। अलावा वायु संचार में जैसे आपने बताया कि नाइट्रोजन हम डालते हैं यूरिया के रूप में जिनमें सिर्फ 46% नाइट्रोजन रहते और जबकि हवा में हमार 72-78% नाइट्रोजन रहते, तो यदि हमार जुताई हो जाए सही टाइम में तो वो नाइट्रोजन जमीन के अंदर जाके वहाँ एक तो बैक्टीरिया रहते नाइट्रोजन फिक्सेशन करे के और ओला धारणा करके जमीन में रख सकी। और मिट्टी पलटाए के और फायदा बहुत सारे हैं, जैसे कि धूप और हवा के प्रभाव भर भी खेत पर कम हो जाते, जैसे आप नहीं जुताई करी है और पानी गिर जाही तो पानी जितकी ही पानी हुई तेहर बह के चल दी, यदि जुताई हो रही तो जरूर उसमें पानी गिर ही तो तुरंत ओहर अवशोषण करना चालू करते, तो ओकरे भर हमला मिट्टी के जुताई के गर्मी के जुताई करे महत्वपूर्ण होते। दूसरा ये है कि एक बार आओ काका यंत्र है ते में जैसे एक ठो बताया आप मतलब कि मिट्टी पलट हल, तो वैसे ही मिट्टी पलटाने वाला एक ठो आओ हल आते वाला कहते हैं डिस्क प्लाव। डिस्क प्लाव ही काम का है जैसे MB प्लाव हर घिस के चलते जमीन में मतलब घिसाई होते और बाद मिट्टी ला पलटाते, तो डिस्क प्लाव हर ओला पलटाते हर लेकिन वह घूम घूम के करते, घूम घूम के करे कारण ताकत हमारे ट्रैक्टर ला कम लगते और डीजल के बचत होते, तो वही चीज ला भी आप मल ध्यान दे के कर सका था। तीसरा यंत्र आते एक बार जब ये जुताई हो जाए तो हम रोटावेटर में मिट्टी के साइज ला छोटे कर सका था और छोटे हो ही तो और ज़्यादा अच्छे से जमीन ला तैयार कर सका था हमन। और एक अलावा कल्टिवेटर है और डिग सेरो है, ये सब मशीन ला भी प्रयोग करके किसान अपन के गर्मी की जुताई ला कर सका थे। तो गर्मी की जुताई ला यदि आप सही समय में सही टाइम में सही में करिया अच्छा यंत्र से करिया तो हमारे किसान मतलब फायदा ज़्यादा जरूरत हुई। एक चीज़ और बताया रही जैसे कि मैं आप मतलब बताएं कि MB प्लाओ और डिग्स प्लाओ रोटावेटर, तो एकर चले के ट्रैक्टर के अलग अलग साइज लगभग रहते, जैसे MB प्लाओ सिंगल बॉटम है तो ओला आप मन छोटे ट्रैक्टर में भी चला सका था और यदि 2 या 3 ज़्यादा हुई तो ऐसे ऐसी पावर हर हमारे ट्रैक्टर के बढ़ जाए, 45 HP में लगभग 2 बॉटम पे चल जाते, अब 55 HP के है तो अपन 3 बॉटम के ले सका था, तो उसकी काम और आपके हल्का हो जाए जल्दी हो सके। वैसे ही डिस्क प्लाओ में भी 45 से 55 HP के अलग अलग साइज के प्लाव आते। और रही बात रोटावेटर के, तो रोटावेटर के भी 5 फीट ले चालू होके 8 फीट तक के मशीन मिलते। अब ये सब ला खरीदे के एक ठो उपाय ये है कि सरकार ये सभी यंत्र में सब्सिडी के रूप में 50,000 से 60,000 रुपये किसान मूल्य देते, तो ओकर बर आपमन जो बीज निगम है वो में रजिस्टर करके भी ले सका था या फिर कोई।
1: गर्मी की जुताई का महत्व एवं उसके लिए उन्नत कृषि यंत्र, ये विषय था आज की कृषि चर्चा का। जानकारी दे रही थी डॉक्टर R.K. नायक, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। समय है कार्यक्रम विवरण का।

आइए आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम सुनेंगे रात 8:30 पर। स्वर धरोहर कार्यक्रम होगा रात 8:15 पर। नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात 9:30 पर। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा के कार्यक्रम में रात 10 आप सुनेंगे पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य का सितार वादन। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर हम प्रस्तुत करेंगे सुबह 7:05 पर। इसमें 7:10 पर देश की वाणी आकाशवाणी में सुनिएगा आकाशवाणी के पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक श्री श्याम वर्मा से ली गई भेंट वार्ता। प्रस्तुत करता होंगे दीपक।

0: द्वार। नन्हे श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसले सुबह 8:30 पर। इसमें क्रम बच्चों की डायरी में होगी चर्चा करें योग रहें निरोग और ज्ञान विज्ञान की बातें में सुनेंगे श्री थान सिंह हिरवानी की वार्ता ऊर्जा के विभिन्न स्रोत और उनका संरक्षण। साथ ही होगा क्रम नन्ही कलम से और सुनेंगे बाल गीत। खेल संसार कार्यक्रम होगा सुबह 9:00। इसमें साप्ताहिक खेल समीक्षा के साथ सुनेंगे छत्तीसगढ़ में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित मुक्केबाज राजेंद्र प्रसाद से की गई बातचीत। प्रस्तुतकर्ता होंगी धर्मदीप डोंगरी। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 पर कलाकार होंगे भगत साहू और साथी। इस बार नहीं ये नाटक सुनिएगा आज सुबह 10:30 पर। लेखक श्री रेवती शरण शर्मा, निर्देशक सत्येंद्र शरत। फोन इन फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 11:05 पर। दोपहर 12:00 सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे जगजीत सिंह। आप मन के गीत ये कार्यक्रम प्रसारित होगा दोपहर 12:30 पर। महिलाओं के कार्यक्रम बिंदिया में दोपहर 1:30 पर आज की बात होगी खुद को महत्व दें और सुनेंगे मोनिका बागरेचा की वार्ता समाज में महिलाओं की बदलती भूमिका। संध्याकालीन सभा में 5:00 होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर। इसमें आजकल में आज होगी चर्चा आभार व्यक्त करना। साथ ही होगा क्रम राग नंदिनी। आलेख और संपादन बीरभान साहू का, प्रस्तुतकर्ता सुमिता राय बर्मन। साथ ही होगा क्रम सवालों के आईने में। शाम 6:05 पर जिले की चिट्ठी में आज सुनेंगे गौरेला पिंडरा मरवाही जिले की चिट्ठी। कानून की बात कार्यक्रम में शाम 6:30 पर सुनिएगा निःशुल्क विधिक सहायता योजना लोक अदालत नए आपराधिक कानून में भरण पोषण के प्रावधान विषय पर असिस्टेंट लीगल एवं एंड डिफेंस काउंसिल श्री रविंद्र कुमार साव द्वारा दी गई जानकारी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रायगढ़ की प्रस्तुति होगी। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने को है। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस स्थले अद्य विदेशमंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिका देशीयेन विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शांति सुरक्षा संबद्धान विषयान समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते। अमेरिका विदेश मंत्री गतदिने प्रातः चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं संप्राप्तः। द्विपक्षीय संबंधान सुदृढ़ीकर्तुं अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचने इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य ईशा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सह प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढ़यितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा सम्पर्क शिक्षा पारस्परिक जनसम्बन्धादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरंतर प्रगतेः विषये प्रधानमंत्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शांति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च संभाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शांतिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्।

0: वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अद्यारभ्य भारतीयव्यापारनेतॄणाम् एकेन प्रतिनिधिमण्डलेन सह कनाडादेशस्य त्रिदिवसीययात्रायां भविष्यति। वाणिज्यमन्त्रालयेन सूचितं यत् श्रीगोयलः व्यापारनिवेशभारतकनाडा व्यापकार्थिकसहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्यसूचना प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगुनः अवदत् यत् प्रशासनं 47-2000 वर्षपर्यन्तं विकसितं भारतं इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नई स्थिते ICF इति संस्थाने आयोजितं आजीविका मेलनं संबोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूत संरचना विकासे वृत्त्यवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। प्रियः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तु विभागेन अद्य पूर्वीयोत्तरप्रदेशाय, पूर्वीय मध्यप्रदेशाय, विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवारणिकी संचेतना प्रसारिता। भारतस्य उत्तरपश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपयक्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामि 7 दिवसपर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडावार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रो लखनऊ नगरे इकाना क्रिकेट क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे श्रेयस अय्यरेण अर्जितानां 71 शतधावनांकानां बलेन पंजाब किंग्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं 7 क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते, अय्यरः स्पर्धा पुरुषः घोषितः। अद्यतने द्वंद्वद्वये प्रथमं मुंबय्याम् अपराह्णे 3:30 मुंबई इंडियंस दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन स्पर्धिष्यते। ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः द्वंद्वं भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणी

0: उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यवसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा के 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 70 अरब कैनेडाई डॉलर तक पहुंचाना है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामले से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जनसूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में ये घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत ने विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ उतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडिया वेव और FM एंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

नमस्कार रायपुर में आज स्वीकार करिए प्रीति का नमस्कार। खुली किताब के सफ़े उलटते रहते हैं, हवा चले न चले दिन पलटते रहते हैं। फिर से एक नया दिन आ चुका है, ढेर सारे अनदेखे अनजाने पलों की गठरी लिए, और इस गठरी में किसके लिए क्या है ये तो समय ही बताएगा। फिर हमें क्या करना है? हमें करनी है कोशिश अपने आज और कल को बेहतर बनाने की, और थाम कर रखना है उम्मीद का दामन कुछ इस तरह।

0: ईसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
0: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
2: 10वीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य, भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
3: नमस्कार, रायपुर में अब समय है देश की वाणी आकाशवाणी का। देश की वाणी आकाशवाणी में सुनिए आकाशवाणी के पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक श्री श्याम वर्मा से ली गई भेंट वार्ता, प्रस्तुत करता है दीपक हटवार।

0: देश की वाणी आकाशवाणी में आज हमारे खास मेहमान हैं आकाशवाणी रायपुर के एक ऐसे पूर्व उद्घोषक जिनकी वाणी को हमारे छत्तीसगढ़ के संगीत प्रेमी वर्षों से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सुनते आ रहे हैं और खासकर छत्तीसगढ़ी फरमाइशी कार्यक्रम में सुनने वालों को यूं लगता था कि कब उनकी आवाज इस कार्यक्रम में सुनाई देगी और उनकी आवाज का हमारे छत्तीसगढ़ के संगीत प्रेमियों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहा करता था। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं आकाशवाणी के पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक श्री श्याम वर्मा। श्याम भैया, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: दीपक जी,

0: आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
1: श्याम जी, आकाशवाणी से आपका जो जुड़ाव रहा है उस यात्रा की कहानी भी बड़ी पुरानी है, तो सबसे पहले हम उस कहानी की शुरुआत की ओर जाना चाहेंगे कि रेडियो से आपका जो जुड़ाव है वो आकाशवाणी में आने से पहले किस तरह का रहा है।
0: आकाशवाणी में आने से पहले असली में क्या है कि उस जमाने में हमारे यहाँ घर में शुरू से रेडियो था, तो उस समय हम लोग बीबीसी लंदन सुना करते थे।
1: उस समय आपकी उम्र क्या रही हो?
0: करीबन मैं तो 11वीं पढ़ता था, तो वही 17-18 साल की उम्र रही है। तो उस समय हम लोग बीबीसी लंदन इसलिए सुनते थे कि हमारे गांव में पास में एक हाई स्कूल है 1962 से, तो सभी पढ़े लिखे थे, तो गांव का कल्चर भी अच्छा था, वहां पढ़ाई लिखाई को महत्व दिया जाता था जो मेरा गांव है। तो उस जमाने में मैं बीबीसी लंदन सुन के नोट्स बनाया करता था।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो फिर उस समय रुझान धीरे धीरे फिर आकाशवाणी रायपुर की ओर बढ़ा, और यहाँ का बहुत ही मशहूर कार्यक्रम युववाणी, तो उससे हम लोग युवा थे तो प्रेरित हुआ करते थे, तो युववाणी सुने। फिर उसके बाद सूर सिंगार कार्यक्रम 1 घंटे का आता था
1: जी,
0: तो उसके भी हम लोग दीवाने हो गए, क्योंकि मैं संगीत से जुड़ा हूँ, तो संगीत में भी सूर सिंगार के कुछ गीत हम लोग गाते थे। तो धीरे धीरे धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मेरा एक भतीजा समझिए या दोस्त, वो आकाशवाणी में ईए के पद पर उसकी नियुक्ति हुई। अब उस समय हम लोग ग्रेजुएट हो गए थे, तो मैंने कहा यार मैं क्या करूं, आप तो जगदलपुर आपका पोस्टिंग हो गया। तो उसने बताया कि आकाशवाणी में नैमित्तिक उद्घोषक का जो पद है वो निकलता है, आप भरिए। तो ये बात है सन 1987। तो फिर रेडियो तो सुनता था, तो धीरे धीरे फिर रेडियो सुन के जैसे लाल राम कुमार सिंह जी है, किशन गंगेले हैं, मिर्ज़ा मसूद जी हैं, उस समय के मशहूर उद्घोषक हुआ करते थे, तो हम लोग नकल करते थे कि ये कैसे बोलते हैं। तो धीरे धीरे धीरे धीरे फिर मेरे भतीजे ने कहा भर दो, तो फिर मैं रायपुर आया। फिर सन 1987 में एक कार्यक्रम आया करता था श्रमिक जगत और चौपाल, तो पहले हम लोग 6:40 को श्रमिक जगत करते थे और फिर उसके बाद 7:21 को चौपाल। तो धीरे धीरे हम लोग फिर यहाँ मेरा वो उस समय चयन हो गया, इंटरव्यू दिया। फिर धीरे धीरे धीरे धीरे फिर रुझान हुआ आकस्मिक उद्घोषक की ओर। उस समय क्या था, जैसे हम लोग केजुअल आते थे चौपाल कार्यक्रम में श्रमिक जगत में, उस समय के उद्घोषक जो होते थे हम लोगों को कंसोल, जिस दिन ड्यूटी रहती थी बोले आओ कंसोल में बैठो, तो हम लोगों को उस समय से ही कंसोल ऑपरेट करते
1: ये थे। 87-88 की बात,
0: 87-88 की बात, 87 की बात है,
1: बहुत पुरानी।
0: और फिर 1988 में फिर इन लोगों ने कहा कि तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम केजुअल अनाउंसर बन जाओ।
1: अच्छा।
0: तो कंसोल तो जानते ही थे, फिर केजुअल अनाउंसर 1988 से मैं नैमित्तिक उद्घोषक के रूप में यहाँ काम किया।
1: 1988 से कौन से साल तक आप नैमित्तिक उद्घोषक?
0: मैं 1996 तक।
1: 96 तक,
0: जी जी जी।
1: फिर उसके बाद आप जब परमानेंट हुए, तो हमने सुना है कि आकाशवाणी रायपुर के किसी अन्य आकाशवाणी केंद्र में आप परमानेंट हुए थे, कौन से?
0: मैं सन 1996 नवंबर में मध्य प्रदेश के आकाशवाणी शहडोल में मेरी पहली पोस्टिंग थी। और शहडोल का एक मज़ेदार किस्सा है कि जब मैं ज्वाइनिंग करने गया तो एक दो दिन तो मैं देखते रहा कि मेरे को ड्यूटी कब देंगे। तो वहाँ ये था कि ये नया लड़का है और इसको अभी सिखाओ। तो वहाँ के जो कार्यक्रम प्रमुख थे श्री मंगल सिंह जी, उसने कहा कि अभी सीखो। मैंने कहा सर मैं नहीं सीखूँगा क्योंकि मैं सब जानता हूँ। तो बोले कैसे जानते हो? मैंने कहा इतने साल तक मैं नैमित्तिक उद्घोषक था, तो मुझे कंसोल अनाउंसमेंट लिखना सब आता है, तो हम आपकी ड्यूटी कल लगा देते हैं। तो मेरी ड्यूटी लगी। और मज़ेदार देखिए कि उस समय हमारे गुरु आकाशवाणी रायपुर के किशन गंगेले जी, लाल राम कुमार सिंह जी, मिर्ज़ा मसूद जी, कमल शर्मा जी, इनकी जो आवाज़ थी और इनका जो प्रसारण करने का तरीका था उसको हमने अपनाया। और वहाँ मैं जैसे ही पहली बार अनाउंसमेंट किया तो एक वहाँ का डीओ हुआ करते थे, बाद में वो एएचडी होके रिटायर हुए, वो दौड़ते आ गया, बोले यार क्या है आप तो दिल्ली के अनाउंसर लगते हैं। तो मैंने कहा ये दिल्ली के अनाउंसर नहीं, ये आकाशवाणी रायपुर की देन है।
1: क्या बात। तो श्याम जी, शहडोल में आप कितने

0: साल रहे।
1: मैं शहडोल में नवंबर 1996 से नवंबर 1999 तक रहा।
0: तीन साल
1: रहा वहां पर।
0: फिर शहडोल के बाद आप रायपुर
1: आ गए।
0: तो वे श्याम वर्मा जो आकाशवाणी रायपुर में करीब 8 साल तक नैमित्तिक उद्घोषक थे, वे श्याम वर्मा एक परमानेंट अनाउंसर बनकर जब आकाशवाणी रायपुर आए तो उसके बाद यहाँ का वातावरण कैसा था, फिर कौन कौन से कार्यक्रम आपको मिले?
1: यहाँ का वातावरण तो वो हमारे जितने सीनियर थे वो समझते थे हमारे बीच का ही बंदा है। तो मैं आकाशवाणी रायपुर में आया तो सबसे पहले तो मुझे चौपाल कार्यक्रम दिया गया। उस समय हमारे केंद्र निदेशक हसन खान जी हुआ करते थे, चौपाल दिया। फिर धीरे धीरे मेरा जुड़ाव हुआ, फिर अनाउंसमेंट भी करता था साथ में, अनाउंसमेंट के साथ डीओ की ड्यूटी करना होता था। फिर धीरे धीरे मुझे एक लोकप्रिय कार्यक्रम राज्य बनने के बाद शुरू हुआ, उसका नाम है मोर भुइयां
0: जी।
1: तो उस समय गोवर्धन देवांगन जी देखा करते थे, फिर मुझे भी वहाँ अटैच कर दिया गया। फिर उस कार्यक्रम को

0: तो उसके बाद यहाँ का वातावरण कैसा था, फिर कौन कौन से कार्यक्रम आपको मिले?
1: यहाँ का वातावरण तो वो हमारे जितने सीनियर थे वो समझते थे हमारे बीच का ही बंदा है। तो मैं आकाशवाणी रायपुर में आया तो सबसे पहले तो मुझे चौपाल कार्यक्रम दिया गया। उस समय हमारे केंद्र निदेशक हसन खान जी हुआ करते थे, चौपाल दिया। फिर धीरे धीरे मेरा जुड़ाव हुआ, फिर अनाउंसमेंट भी करता था साथ में, अनाउंसमेंट के साथ डीओ की ड्यूटी करना होता था। फिर धीरे धीरे मुझे एक लोकप्रिय कार्यक्रम राज्य बनने के बाद शुरू हुआ, उसका नाम है मोर भुइयां।
0: मोर भुइयां
1: जी, जी जी। तो उस समय गोवर्धन देवांगन जी देखा करते थे, फिर मुझे भी वहाँ अटैच कर दिया गया। फिर उस कार्यक्रम को धीरे धीरे करते करते फिर मुझे युवाणी छत्तीसगढ़ी में जोड़ा गया।
0: अच्छा।
1: हाँ, उस समय क्या है, युवाणी छत्तीसगढ़ी भी दिखता था
0: जी,
1: चौपाल तो देखता ही था। फिर एक लोकप्रिय कार्यक्रम हुआ करता था नगर दर्पण, तो मेरी रोड ड्यूटी लगती थी, मैं रिकॉर्डिंग करने जहाँ भी जो जो आयोजन छत्तीसगढ़ शासन का या साहित्यिक कार्यक्रम या संगीत कार्यक्रम सभी में मुझे भेजा जाता था, वो कार्यक्रम मैंने किया। उसके बाद फिर कहा यार ये तो छत्तीसगढ़ी जानता है, क्यों ना इसको आपमन के गीत और सुर श्रृंगार दे दिया जाए
0: जी।
1: तो आकाशवाणी रायपुर में रहते रहते मैं आपमन के गीत और सुर श्रृंगार कार्यक्रम बहुत किया। फिर धीरे धीरे धीरे धीरे मोर भुइयां अलग अलग स्वरूप में आने लगा। एक समय ऐसा था कि एक नाचा कार्यक्रम का, हम लोग नाचा कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करते थे, उस समय महेश मिश्रा जी हुआ करते थे
0: जी।
1: तो मुझे यही कि ये लड़का छत्तीसगढ़ ही जानता है, इनको मिश्रा जी के साथ लगा दीजिए। तो उस जमाने में हम लोगों ने नाचा का जो नाचा की रिकॉर्डिंग पहली बार आकाशवाणी रायपुर से हम लोगों ने जो किया वो ऐतिहासिक कार्यक्रम था। फिर धीरे धीरे हर कार्यक्रमों में, क्योंकि यहाँ आकाशवाणी में तो कोई छुट्टी अगर ले लिया तो आप इसका कार्यक्रम देखिए, तो ऐसे करके सारा कार्यक्रम मैंने, गांधी चर्चा भी मैंने किया, गांधी चर्चा की रिकॉर्डिंग बहुत लंबे अरसे तक गांधी चर्चा देखा। और ये क्या है, इंटरेस्ट की बात है
0: जी,
1: अगर आप मेहनत करते हैं तो ऐसे धीरे धीरे धीरे धीरे बहुत सारा कार्यक्रम करने को मिला। फिर मैं सबसे ज़्यादा किया हूँ बाहर की रिकॉर्डिंग,
0: ओ भी
1: कार्यक्रम
0: जी,
1: जिसमें संगीत कार्यक्रम एक रात को हुआ करता था, नाम मैं भूल रहा हूँ, तो वो कार्यक्रम हम लोग गांव-गांव में जाके करते थे। फिर युवाणी गांव में ये कार्यक्रम मैंने लगातार किया, ये कार्यक्रम लगभग सन 2022 तक मैंने किया। तो इसी का प्रतिसाद है कि कलाकार लोग मुझे जानते हैं। उसके बाद आकाशवाणी रायपुर में लोक संगीत कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में कलाकार लोग आते थे, फिर रिकॉर्डिंग में बेचारे बैठे रहते थे, तो मुझे हमारे पेक्स समीर जी बोलते थे यार रिकॉर्डिंग कर दो, तो मैंने लोक रंजनी का, लोक संगीत का बहुत रिकॉर्डिंग किया।
0: अच्छा श्याम जी, आप जब युववाणी गांव में या इस तरह के जो कार्यक्रम स्थल ध्वनिंकन पर आधारित हुआ करते थे उनकी रिकॉर्डिंग के लिए आप गांव-गांव जाते थे
1: जी, जी।
0: आपके साथ में माइक तो एक ही हुआ करता था, और इतने सारे बजाने वाले गाने वाले जब बैठते थे तो एक माइक में किस तरह से आप सेट करते थे उसके बारे में कुछ?
1: दीपक जी देखिए, एक अनाउंसर होता है वो आवाज से नहीं, उसका मन मस्तिष्क कहता है कि यार इसको यहाँ बिठाऊं, इसको यहाँ बिठाऊं, इसको यहाँ बिठाऊं, फिर रिकॉर्डिंग हो जाएगी। एक अनाउंसर को माइक का जो तजुर्बा है वो बहुत होता है, तो मैं वैसे ही करता था, मैं सुनता कम था, पहले उनको बिठा के सुनता था, अरे ये तो बढ़िया आ रहा है। तो एक ये एक उद्घोषक या एक अच्छे प्रसारण जो करता है ये उनके ऊपर है, तो मैं अक्सर पहले आँख से देख लेता था कि जगह कैसी है, कहाँ कौन बैठे। तो एक
0: मतलब ये बड़े कमाल की बात होती थी
1: जी, जी।
0: कि आज के दौर में तो इतने सारे माइक्रोफोन होते हैं, ट्रैक में अलग अलग रिकॉर्डिंग की जाती है, और ये सारी रिकॉर्डिंग आप एक साथ करते थे और एक माइक से करते थे
1: जी, जी।
0: जिसमें गाने वाले भी दो हुआ करते थे, हारमोनियम भी साथ में हुआ करता था, बांसुरी भी, मंजीरा भी हुआ करता था, ढोलक भी हुआ करता था, तबला भी हुआ करता था। तो इस तरह से सारे साजों की और गायक कलाकारों के साथ एक माइक्रोफोन में आप रिकॉर्डिंग किया करते
1: जी, जी,
0: थे।
1: जी, जी।
0: और उसकी बैलेंसिंग भी बड़ी गजब की हुआ करती थी।
1: ये कमाल हमारे यहाँ मेल्ट्रॉन जो मशीन है
0: जी,
1: उसी का ही है, क्योंकि जहां तक मैं सुना हूँ सुर श्रृंगार के जितने भी गीत हैं सब
0: बाहर
1: की रिकॉर्डिंग है।

0: जी जी
1: तो उसमें एक अद्भुत अद्भुत मशीन है वो, सब आवाज़ वो खींच लेती थी, चाहे वो गाने वाले का हो, हारमोनियम का हो, और हम लोगों का बिठाने का भी एक कला है
0: जी,
1: कि उनको गोल बिठा देते थे, बीच में माइक रखते थे तो वो अच्छी रिकॉर्डिंग होती थी। जी जी जी
0: श्याम जी, आपने आकाशवाणी रायपुर में बहुत से नाटकों में और पारिवारिक धारावाहिक में भी काम किया है, तो उसके बारे में अपने अनुभव बताएं।
1: जी अजीत सुनिए और नाटकों में, ये तो असली में मैं देखा, एक समय की बात है जब मैं नैमित्तिक उद्घोषक के रूप में आता था
0: जी,
1: मिर्जा मसूद जी उस समय एक नाटक कर रहे थे, और उनको रेलवे में जो अनाउंसमेंट जो करते हैं ना, रेलवे का अनाउंसमेंट
0: जी,
1: उनके लिए एक आवाज़ की आवश्यकता थी, तो उन्होंने जितने भी कलाकार थे जो अप डाउन करते थे रेल से, बहुत कलाकारों को बुलाया तो जमा नहीं, तो मिर्जा भैया एक बोले कि यार ये श्याम भी तो ट्रेन से सफ़र करता है, तो मुझे मिर्जा मसूद जी ने जो अनाउंसमेंट रेलवे का
0: अच्छा,
1: आने जाने का अनाउंसमेंट दिया, मेरे लिए अद्भुत है, और मैं मिर्जा मसूद जी को इसलिए बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक पारखी निर्देशक हैं, उनको कैसी आवाज़ चाहिए, कौन चाहिए, ये मैं उस नाटक में देखा। और आपने बीच में कहा अजीत सुनिए कार्यक्रम
0: जी,
1: तो अजीत सुनिए कार्यक्रम में आपने भी खूब रोल निभाया, तो मैं भी बहुत दिनों तक अजीत सुनिए ये कार्यक्रम किया। दरअसल मैं देखा हूँ कि निर्देशक जो होते हैं वो उनके ऊपर है, किनको क्या लेना है, किनको क्या लेना है, जैसे मैंने बताया एक नाटक के बारे में, वैसे ही बहुत सारे नाटकों में हमारे जो जो जो नाटक के निर्देशक हुए हैं तो वो परखते थे कि किसमें किनको लेना है, किसमें किनको लेना है, तो ऐसे करके मैं बहुत सारे सारा नाटक है उसमें काम किया। एक नाटक था उसमें एक राजा का रोल किया था, मैं आज भी सुनता हूँ तो लगता है यार उस ज़माने में हमारी आवाज़ कैसी थी, क्योंकि उस समय हम लोग नैमित्तिक उद्घोषक के रूप में आते थे
0: जी,
1: तो ये आकाशवाणी रायपुर का ही देन है कि उन्होंने हमें सिखाया।
0: श्याम जी, आपने आकाशवाणी रायपुर के बहुत सारे लोकप्रिय कार्यक्रमों को लगातार किया है
1: जी,
0: खासकर फरमाइशी कार्यक्रमों की अगर हम बात करें, और फरमाइशी कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने वाले श्याम वर्मा जी को छत्तीसगढ़ के कोने कोने के श्रोता बहुत प्यार भी करते थे
1: जी, जी।
0: जानते भी थे, मानते भी थे। आप जब यहाँ से निकलकर किसी गांव में, सुदूर गांव में जाते थे, और लोगों को जब पता चलता था कि श्याम वर्मा जी आए हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं, किस तरह का माहौल आपको वहाँ का मिलता
1: जी, ये तो बड़ा ही एक प्रसारक और एक जो श्रोता हैं इनके बीच का जो रिश्ता है वो तो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन गांव जाओ तो ऐसे स्वागत करते थे, नहीं भैया आपको खा के जाना है भैया, नहीं भैया ऐसा है भैया, तो वहाँ ये पता चलता था कि 10 किलोमीटर के जो श्रोता हैं वो भी आते थे मिलने
0: जी जी,
1: तो श्रोताओं का प्यार तो बहुत मिलता है, और ये चाहे आप आकाशवाणी में रहें या आकाशवाणी से आप रिटायर्ड भी हो गए, फिर भी उनका प्यार आपके प्रति वैसे ही रहता है। कारण ये है कि हम लंबे समय तक जिस संस्था में थे, लोग जो बोलते हैं कई बार कि नहीं रिटायर्ड होने के बाद श्रोता से कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं, श्रोता आज भी उतना ही प्यार करते हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के जो श्रोता हैं, ये श्रोता तो पूरे भारत में कहीं नहीं, महाराष्ट्र के श्रोताओं से भी मेरा उतना ही जुड़ाव है, और छत्तीसगढ़ के श्रोताओं की तो बात ही अलग है, और इसी के चलते श्रोताओं का जो एकजुटता हमें दिखता है ना
0: जी,
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: आपने तो बहुत सारे श्रोता सम्मेलन भी अटेंड किए हैं
1: जी जी जी,
0: तो उन सम्मेलनों का कोई खास अनुभव आपको याद आ रहा होगा?
1: मैं अभी 4 बड़े बड़े श्रोताओं का सम्मेलन, पटियाला गया था मैं, बागपत गया, बुलढाणा, ये 3 जगह मेरा जाना हुआ। वो तो जो श्रोता हैं वो तो ऐसा हाथों हाथ लेते हैं उद्घोषक को कि पूछे मत, लेकिन एक चीज है, लोगों को लगता है कि रेडियो के श्रोता वही कुछ वर्ग के लोग हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि रेडियो में एक बड़े उद्योगपति भी जुड़ा हुआ है, एक वैज्ञानिक भी जुड़ा हुआ है, और एक शिक्षाविद भी जुड़ा रहता है, तो जब वहाँ जाते हैं ना तब वो जब ये मिलते हैं तब पता चलता है कि नहीं यार हम रेडियो में हालांकि काम करते हैं, लेकिन ये जो श्रोता वर्ग हैं कितने बड़े बड़े लोग हैं, समय निकाल के कैसे रेडियो सुनते हैं, और आप जैसे ही जाएंगे

0: तो इतनी आत्मीयता से आपको, मैं तो अभी जहाँ जहाँ गया हूँ ना, तो वो तो ऑटोग्राफ के लिए उन लोग भी तरसते हैं अभी भी। लेकिन ये चीज मानना पड़ेगा कि इतने धनाढ्य होने के बाद भी श्रोता उस सम्मेलन में आते।
1: श्याम जी, जिस दिन आप आकाशवाणी से सेवानिवृत्त हुए वो तारीख कौन सी थी और उस दिन आपको कैसा लग रहा था?
0: 2022 के जनवरी के माह की अंतिम तारीख को मैं जब विदा हुआ, मुझे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ा कि मेरा कहना है कि जिस संस्था में आपने काम किया वो संस्था में रहते हुए भी आप उतना ही प्रेम करते थे और जाने के बाद भी उस संस्था को उतना ही सम्मान दीजिए। एक संस्था के लिए तो यही सबसे बड़ी बात है कि हम उस संस्था को मरते दम तक न भूलें। आकाशवाणी रायपुर को इसलिए बहुत बड़ा मानता हूँ कि यहाँ बड़े बड़े प्रसारक हुए हैं जो दिल्ली तक गए हैं और यहाँ के कार्यक्रमों का जो नाम उन्होंने दिया, आज भारत के बहुत से स्टेशनों में ऐसा लगता है कि आकाशवाणी रायपुर से लिया गया कार्यक्रम का नाम।
1: श्याम जी, अभी सेवानिवृत्ति के बाद आपका समय किस तरह से कट रहा है?
0: दरअसल सेवानिवृत्ति के बाद एक तो मुझे बचपन से आदत है 3:30 बजे उठने की, फिर सुबह घूमता हूँ, घर का जो काम है वो करता हूँ और मेरे लिए मेरे बड़े भाई ने एक बहुत बड़ा संपत्ति दिया है, वो है संगीत का, क्योंकि मेरे बड़े भैया स्वर्गीय प्रेमलाल वर्मा जी बड़ोदरा घराने के, हालांकि हम लोगों ने पूरे परिवार संगीत में रमे हुए हैं, हम लोगों ने सीखा नहीं क्योंकि उनको डरते थे, लेकिन उनके दिए हुए संगीत का भी हम लोग आनंद उठाते हैं। मैं हारमोनियम बजाता हूँ और गाता हूँ और सबसे बड़ी बात है तो हमारा पोता आ गया है तो वो उनको पूरा समय देना पड़ता, समय का पता ही नहीं चलता और फिर शाम को यार दोस्तों के यहाँ बैठना होता है। और एक सेवानिवृत्त कोई भी हो उनको सबसे वही संबंध बना के रखना चाहिए जो हमारा जब हम यहाँ काम करते थे उस समय का संबंध अभी काम आता है।
1: तो श्याम जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप जिस तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं बड़े स्वस्थ और फिट लग रहे हैं, आप यूं ही स्वस्थ रहें, फिट रहें, हमेशा प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें और आकाशवाणी रायपुर की सुनहरी यादों के संग सदैव खुश रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

देश की वाणी आकाशवाणी में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक श्री श्याम वर्मा से ली गई भेंट वार्ता। प्रस्तुतकर्ता थी दीपक खटवार। देश की वाणी आकाशवाणी के बाद अब नमस्कार रायपुर के सफर को आगे बढ़ाते हैं इस गीत के साथ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोताओं, इन दिनों जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे थकान, चिड़चिड़ापन और अनिद्रा की समस्या से जूझते लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। अध्ययन बताते हैं कि गर्मी के मौसम में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में 8% तक बढ़ोतरी होती है, यानी तापमान

हमारे मानसिक संतुलन को भी प्रभावित करता है। गर्मी के दिनों में जब तापमान ज़्यादा होता है तो शरीर को ठंडा रखने के लिए ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है, जिससे थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी से एकाग्रता और याददाश्त पर भी बुरा असर पड़ता है। ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामीन जैसे फील गुड हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ सकता है और हम गुस्सा, तनाव, बेचैनी, थकान, सुस्ती के साथ अवसाद के शिकार हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के कारण ऊर्जा में कमी और मानसिक सुस्ती बढ़ सकती है, इसलिए मानसिक रोगियों के साथ ही सामान्य लोगों को भी अपने मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए पूरे दिन में पर्याप्त पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स लें। शाम या सुबह के ठंडे समय में ही हल्का व्यायाम या योग करें। भोजन में ताज़े फल, सलाद और ओमेगा 3 से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करें। तेज धूप में निकलने से बचें और मन अच्छा रहे इसके लिए मधुर संगीत सुने। फिर देखिए मन का मौसम कैसे बदलता है।

और अब जानकारी रोजगार से जुड़ी। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसपी में स्पोर्ट्स कोटे के तहत कांस्टेबल भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 27 अप्रैल 2026 को जारी इस नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती में पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। कुल पद हैं 404, शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, आयु सीमा 18 से 23 वर्ष है। ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट ssp.gov.in पर 7 जून 2026 तक कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का चयन स्पोर्ट्स अचीवमेंट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल फिटनेस टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। तो अगर आप भी इस क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं तो समय रहते आवेदन करें और जी जान से जुट जाएं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
0: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 बच्चर ले सवलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
2: 10वीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
3: यूं तो फिल्मी दुनिया के रुपहले पर्दे पर कई चेहरे सितारों से चमके और अपने अभिनय से लोगों के दिलों में जगह भी बनाई, पर इन जगमगाते चेहरों के साथ कुछ चेहरे ऐसे भी रहे जो पर्दे के पीछे रहे, लेकिन अपने गीतों के जरिए वो मुकाम और नाम हासिल किया जो सबके बस की बात नहीं। आज हम याद कर रहे हैं हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गीतकार और प्रगतिशील आंदोलन के उर्दू के सबसे बड़े शायरों में से एक मजरूह सुल्तानपुरी को। मजरूह सुल्तानपुरी ने 50 से ज्यादा सालों तक हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखे। फिल्मों में पहली बार गीत लिखने का अवसर उन्हें मिला सन 1945 में आई फिल्म शाहजहां में। गीत के बोल थे गम दिए मुस्तकिल और जब दिल ही टूट गया। KL सहगल की आवाज में ये गीत बेहद लोकप्रिय हुए। इसके बाद जो शुरू हुआ सफर बेहतरीन गीतों का, वो कई दशकों तक चलता रहा। उन्होंने लगभग 300 फिल्मों के लिए गीत लिखे। सन 1965 में आई फिल्म दोस्ती के लिए मजरूह सुल्तानपुरी को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, तो भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सन 1993 में उन्हें देश के सर्वोच्च सिनेमा सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने 6 दशक के फिल्मी करियर में जहां उन्होंने नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन और शंकर जयकिशन जैसे संगीतकारों की धुनों को गीतों से सजाया, तो वहीं नए दौर के संगीतकारों जैसे अनु मलिक, आनंद मलिंद, जतिन ललित और AR रहमान के साथ भी काम किया। आज ही के दिन यानी 24 मई सन 2000 में मजरूह सुल्तानपुरी इस फानी दुनिया से कूच कर गए और पीछे छोड़ गए अपने सुमधुर गीतों का खजाना। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें उन्हीं के लिखे इस गीत के साथ नमन करते हैं।

0: मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे कुछ और गीत सुनिएगा चित्रपट संगीत में आज सुबह 9:40 पर। और अब आज की नमस्कार रायपुर का सफर यहीं तक, दीजिए इजाजत प्रीति को, नमस्कार। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने को है समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
4: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान

0: जिलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों, चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
0: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
1: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ

0: अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
3: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
0: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरत नाज।
4: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोकसत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार रूबियो से मिलकर पीएम बोले

0: हाथ से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्य ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
1: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with US Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasth Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. US President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinderveer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with US Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting.
3: The Quad Foreign Ministers meet will be held on the 26th of this month. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Australian Foreign Minister Penny Wong, Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meet. In keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, they will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on the recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. With Suparna Sakya, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: Secretary Rubio called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people.

उठो सुबह आसन लगाओ, करो योग बीमारियां भगाओ, थोड़ा अनुलोम विलोम करें ध्यान, स्वस्थ रहना है जरूरी, कीमती होती है सबकी जान। प्यारे बच्चों नमस्कार, किसले के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका धीरेंद्र भैया और मिलकर बोले जय हिंद। बच्चों बहुत तेज गर्मी है ना? हाँ, गर्मी का मौसम जो है हर मौसम की अपनी तासीर होती है। गर्मी के मौसम में गर्मी लगेगी, ठंड में ठंड, बारिश में तो मिला जुला मौसम होता है, कभी गर्मी कभी ठंड और कभी उमस। जो भी हो, हमें हर मौसम में संतुलित खान पान और अनुशासित दिनचर्या के सहारे खुद को स्वस्थ रखना आना चाहिए। अनुशासित जीवन पर और मौसमों पर अपनी सेहत को कैसे अच्छा रखें, इस पर अगर एक एक बिंदु पर बात करें तो बात लंबी खींच जाएगी, लेकिन आज हम विशेष रूप से योग पर बात करेंगे। योग जो हमें अनुशासित रहने के साथ ही स्वस्थ रखने में मदद करता है। बच्चों आपने अपने घर में या आसपास रहने वाले दूसरे लोगों को व्यायाम करते देखा होगा, तो कुछ लोगों को आसन लगाकर ध्यान करते भी देखा होगा, सांस अंदर बाहर करते देखा होगा। यही तो है योग जो भगाता है रोग। वैसे मुझे पता है कि आप समझदार बच्चे हैं, योग के बारे में जानते ही होंगे और हर साल योग दिवस भी तो मनाया जाता है, जगह जगह योग होते हैं। योग का मतलब सांसों को भीतर खींचना और बाहर निकालना, कठिन आसन या व्यायाम करना ही नहीं होता। योग का मतलब होता है जोड़ना, अपने मन को अपने शरीर से जोड़ना, खुद को प्रकृति से जोड़ना। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों सालों पहले समझ लिया था कि बीमार पड़ने से अच्छा है कि बीमार ही ना पड़े, इसी सोच से निकले।

पहला मंत्र है योग, करें योग रहे निरोग। सोचो बच्चों, परीक्षा का समय हो, मन में डर बैठा हो, पेट में गुदगुदी होती हो, तब 5 बार लंबी सांस लेकर छोड़ें तो मन शांत हो जाता है। यही तो है प्राणायाम, जो योग का हिस्सा है। अब सोचो, रोज अगर योग किया जाए तो कितना फायदा होगा। अनुलोम विलोम, ताड़ासन, भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति, सूर्य नमस्कार, न जाने कितने योग की क्रियाएं हैं जो इंसान यदि प्रतिदिन करे तो कभी बीमार ही ना पड़े। योग तो हमें करना ही चाहिए, लेकिन हाँ, याद रहे, अपने मन से कुछ भी नहीं करना। योग किसी जानकार योग के शिक्षक से ही सीखें, ऐसे व्यक्ति से पूछें जो पहले से ही योगाभ्यास करता हो, फिर उसे दिनचर्या में शामिल कर लें। बच्चों, योग करने के तो बहुत सारे फायदे हैं, फिर देखना जीवन कितना सुखद हो जाएगा। योग के लिए महंगे जूते नहीं चाहिए, ना मैदान, बस एक साफ चटाई और रोज 10 मिनट का अभ्यास। सुबह हल्का भोजन करने से पहले सबसे पहले सुबह उठें, योग करें, फिर बाद में नाश्ता। आप देखना पूरा दिन कितना अच्छा लगने लगेगा, पढ़ाई में भी मन लगेगा और खेल में भी ऊर्जा रहेगी। तो चलो हम खुद से वादा करें, दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं, ना ही टीवी से करेंगे, दिन की शुरुआत तो हम योग से करेंगे। करें योग रहे निरोग। तो चलो मान लें ये जिंदगी यूं ही नहीं बिताएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे और निरोगी रहेंगे, जिंदगी को खास बनाएंगे।

0: तो बच्चों कैसा लगा ये गीत? हम तो यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें और ऊर्जावान रहें, सफल रहें। बच्चों जिस प्रकार हमें खुद को ऊर्जावान बनाए रखना होता है, वैसे ही प्रकृति ऊर्जा के स्रोतों को भी संरक्षित करना जरूरी होता है। आइए ऊर्जा के विभिन्न स्रोत और उनका संरक्षण इस विषय पर वार्ता सुनते हैं थान सिंह हिरवानी से।
1: किसलय सुन रहे सभी बच्चों को डॉक्टर थान सिंह हिरवानी का नमस्कार। बच्चों किसी भी मशीन के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे मशीन को कार्य करने की शक्ति मिलती है। उसी प्रकार हमारे शरीर भी एक मशीन ही है, जिसे संचालन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जिसके पाचन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो बच्चों ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, इसका संरक्षण कैसे करना है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। विषय है ऊर्जा के विभिन्न स्रोत और उनका संरक्षण। भारत के प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, पवन, जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। इसमें सबसे पहले जीवाश्म ईंधन की चर्चा करते हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस लाखों वर्ष पहले जीवित रहने वाले पौधों और जानवरों के अवशेषों से बने हैं। ये आज सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा स्रोत हैं, लेकिन ये नवीकरणीय नहीं हैं और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान देते हैं। कोयला भारत में सबसे अधिक उपलब्ध जीवाश्म ईंधन है और देश की ऊर्जा उत्पादन का बड़ा हिस्सा इससे आता है। भारत के पास विशाल कोयला भंडार है और यह वैश्विक स्तर पर कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कोयले का प्रयोग मुख्यतः ताप विद्युत संयंत्रों में बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। हालांकि कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है और इसके दहन से वायुमंडल में हानिकारक प्रदूषक छोड़े जाते हैं, जो वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ाते हैं। कच्चा तेल, भारत

अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयातित कच्चे तेल पर काफी निर्भर है। देश में सऊदी अरब, इराक, नाइजीरिया सहित लगभग 40 देशों से कच्चा तेल आयात करता है। कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल, एविएशन ईंधन जैसे पेट्रोलियम उत्पादों में परिष्कृत किया जाता है, जिनका उपयोग परिवहन, उद्योगों और घरेलू क्षेत्रों में होता है। आयातित तेल पर भारत की निर्भरता उसे वैश्विक तेल कीमतों में उतार चढ़ाव और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के प्रति संवेदनशील बनाती है। प्राकृतिक गैस कोयले और तेल की तुलना में स्वच्छ जलने वाला जीवाश्म ईंधन है। भारत के पास पर्याप्त प्राकृतिक गैस भंडार हैं, लेकिन इसका उत्पादन अभी भी इसकी खपत की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। प्राकृतिक गैस का उपयोग बिजली उत्पादन, औद्योगिक प्रक्रियाओं और घरों में खाना पकाने के ईंधन के रूप में किया जाता है। भारत प्राकृतिक गैस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस के आयात की भी संभावना तलाश रहा है। अब चर्चा करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के। भारत के पास सौर, पवन और जल विद्युत सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की विशाल क्षमता है। पहले चर्चा करते हैं सौर ऊर्जा की। भारत में प्रचुर मात्रा में सूर्य प्रकाश है, जिससे यह सौर बिजली उत्पादन के लिए उपयुक्त है। देश ने सौर बिजली क्षमता वृद्धि के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं और छतों पर, सौर पार्कों में और विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से सौर संस्थापनाओं को बढ़ावा दे रहा है। पवन ऊर्जा। भारत की लंबी तटरेखा और अनुकूल पवन परिस्थितियां हैं, जिससे यह पवन बिजली उत्पादन के लिए उपयुक्त है। कई राज्यों में पवन फार्म स्थापित किए गए हैं और सरकार जीवाश्म ईंधन की निर्भरता कम करने के लिए पवन ऊर्जा विकास को प्रोत्साहित कर रही है। जल विद्युत। भारत की अनेक नदियों और पहाड़ी क्षेत्रों के कारण इनकी महत्वपूर्ण जल विद्युत क्षमता है। जल विद्युत संयंत्र बहते पानी की ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करते हैं। हालांकि जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बड़े बांधों के निर्माण से पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव पड़ सकते हैं। उत्तराखंड में टिहरी बांध दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है और जल विद्युत उत्पन्न करता है। ज्वारी ऊर्जा। समुद्र की ज्वार और भाटा के उतार चढ़ाव से उत्पन्न की जाती है। यह एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, लेकिन यह केवल कुछ तटीय क्षेत्रों में ही उपलब्ध है। भारत सरकार जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने को बढ़ावा दे रही है। अब आता है कि बच्चों, हम लोग ऊर्जा का संरक्षण कैसे करें। ऊर्जा का संरक्षण का अर्थ है उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना, अर्थात अनावश्यक बर्बादी रोकना और भविष्य के लिए ऊर्जा बचाना है। इसके मुख्य उपाय इस तरह हैं। कोयले और तेल पर निर्भरता कम करके हमें सौर ऊर्जा, बायोगैस जैसे विकल्पों को अपनाना है। जैसे बिजली जलाते हैं उसमें LED और ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग, जैसे पारंपरिक बल्बों की जगह LED बल्बों का उपयोग करना, जो बहुत कम बिजली की खपत करते हैं। बिजली की अनावश्यक बर्बादी रोकना। कमरे से बाहर निकलते समय पंखे, लाइट, AC आदि बंद कर देना। जैसे हम लोग यात्रा करते हैं तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। निजी वाहनों जैसे कार, बाइक के बजाय सार्वजनिक परिवहन बस, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन या साइकिल का उपयोग करें। इससे ईंधन की बचत होगी। प्राकृतिक प्रकाश का अधिकतम उपयोग, जैसे दिन के समय खिड़कियां खुली रखें, ठीक, प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करें। बच्चों, अब मैं आप लोगों को 3R अर्थात रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का सिद्धांत अपनाने हेतु प्रेरित करूंगा। अर्थात हमें संसाधनों का कम उपयोग करना चाहिए, उन्हें पुनः उपयोग करना चाहिए और पुनर्चक्रित करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले कारक पर चर्चा करूंगा। भारत में लगभग 300 दिन धूप खिलती रहती है, प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। इस वजह से देश के अधिकांश हिस्से सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल हैं। इसके लिए सरकारी योजनाएं भी लागू की गई हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा

0: एवं उत्थान महाभियान। इस योजना का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में 30.8 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना करना है। इसके अतिरिक्त पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई है। साथ ही मार्च 2025 तक लगभग 10.09 लाख सोलर रूफटॉप स्थापित किए जा चुके हैं। अभी भी यह प्रयास जारी है। सौर घटकों का स्वदेशी विनिर्माण, इस पर चर्चा करेंगे। इसमें सोलर पार्क योजना जैसे उच्च दक्षता वाले सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना आदि के जरिए देश में ही सौर घटकों के विनिर्माण को बढ़ावा देना है। हरित ऊर्जा गलियारा योजना के तहत सरकार नई ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाने और नवीकरणीय ऊर्जा के वितरण एवं ट्रांसमिशन के लिए नए सब स्टेशन का निर्माण कर रही है। बच्चों, हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग कर भविष्य को सुरक्षित करने में योगदान दें। धन्यवाद।
1: बच्चों, बात तो सही है, हमें अपने ऊर्जा के स्रोतों का संरक्षण करना चाहिए और अधिक से अधिक ऐसा प्रयास करना चाहिए कि किसी भी प्रकार से ऊर्जा को बर्बाद भी ना करें, खुद भी और दूसरों को भी प्रेरित करें। इसमें क्या होगा, इससे हमारा पर्यावरण संरक्षित होगा और हमारा आने वाला जीवन सुरक्षित होगा। तो बच्चों, अभी आपने सुनी ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों और उसका संरक्षण, इस विषय पर वार्ता डॉक्टर थान सिंह हिरवानी से। अब समय है आपके पत्रों को पढ़ने का। इस बार पत्र थोड़े कम मिले हैं, शायद गर्मी की छुट्टियों में आप व्यस्त रहे होंगे कि पत्र लिखना ही भूल गए, लेकिन आगे से पत्र लिखना ना भूलें। आप पत्र लिखते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि हमें किस लय को और कैसे बेहतर बनाना है और कैसे आपकी पसंद का कार्यक्रम तैयार करना है। तो बच्चों, पत्र लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए, आज जो पत्र मिले हैं उसमें पहला पत्र है अम्बागढ़ चौकी परसा टोला से कुमेंद्र मसिया, तुषारिणी, कामेश, अनिरुद्ध, साकेत और पायल का। इन्हें 29 मार्च को प्रसारित किसलय कार्यक्रम पसंद आया, जिसमें इन्होंने समुद्र की रोचक दुनिया पर वार्ता सुनी, उन्हें ये पसंद आई। इसके साथ ही खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स पर दी गई जानकारी भी इन्हें पसंद आई। अच्छी प्रस्तुति के लिए इन्होंने किसलय परिवार को शुभकामना दी है। हम आपकी शुभकामनाएं और इसने स्वीकार करते हैं। आपको 8 मार्च का किसलय भी पसंद आया, जिसे लेकर आई थी अरुणा दीदी। इस दिन आपने सुनी परीक्षा के दिनों में आँखों की सुरक्षा कैसे करें, ये जानकारी साथ ही सुनी कहानी सच्चा मित्र। तो पुनः आपका आभार। इसी अंक के लिए एक पत्र और मिला है, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू और उनके साथियों का। आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पत्र लिखते रहिए और पत्र लिखना ना भूलिए। पता तो आपको पता ही है, चलिए फिर भी बता देते हैं, इसे नोट कर लीजिए। नन्ही कलम से किसलय अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, आकाशवाणी रायपुर, पिन 492001। एक बार फिर से बता देते हैं, नन्ही कलम से किसलय अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, आकाशवाणी रायपुर, पिन 492001। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल नोट कर लीजिए, RAINANHIKALAMSE15@gmail.com। नन्ही कलम से 15@gmail.com। तो बच्चों, पत्र लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके पत्र ही तो किसलय को बेहतर बनाते हैं और आपको खुशियां देने का प्रयास भी रहता है और ज्ञान विज्ञान की बातें भी होती हैं, साथ ही होता है मनोरंजन। तो चलिए, मनोरंजन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गीत।

तो बच्चों आज की किस्लाय में इतना ही, होगी अगले अंक में मुलाकात। दीजिए आपके धीन भैया को इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।

नन्हे श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसलय। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम खेल संसार। प्रस्तुत करता है धर्मदीप डोंगरे।

श्रोताओं नमस्कार, खेल संसार कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कुछ साप्ताहिक खेल गतिविधियों पर और बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के एकमात्र अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित मुक्केबाजी के खिलाड़ी राजेंद्र प्रसाद जी से। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम खेल संसार साप्ताहिक खेल गतिविधियों से। पांच बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स लगातार तीसरे सीजन प्लेऑफ स्तर से बाहर हो गई है। गुरुवार को गुजरात टाइटंस ने अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए चेन्नई को 89 रन से हराया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 229 रन बनाए। जवाब में चेन्नई की टीम ने 13 ओवर और 4 गेंदों में 140 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कप्तानी वाली अल नासिर ने सीजन के आखिरी दिन फुटबॉल में सऊदी प्रो लीग का खिताब अपने नाम कर लिया। रियाद के अल अव्वल पार्क में गुरुवार रात खेले गए फाइनल मुकाबले में अल नासिर ने शानदार खेल दिखाते हुए दमक क्लब को 4-1 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही अल नासिर का पिछले 7 सालों का लंबा इंतजार समाप्त हो गया है। क्लब ने साल 2018-19 के बाद पहली बार लीग ट्रॉफी पर कब्जा किया है। वहीं पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए भी सऊदी क्लब के साथ यह सबसे बड़ा ऑफिशियल खिताब है। 4 बार की ओलंपियन दीपिका कुमारी और उनके पति अतनुष दास को एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम में जगह नहीं मिली। दोनों सोनीपत के साई सेंटर में आज 3 मिनी ट्रायल्स में अपने अपने मैच हार गए। भारतीय तीरंदाजी संघ ने ट्रायल के बाद जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया। रिकर्व कैटेगरी में दीपिका कुमारी और आदामी चौथे स्थान पर रहे, इसलिए एशियन गेम्स टीम से बाहर हो गए। कंपाउंड में अभिषेक वर्मा भी एशिया में एंट्री नहीं हासिल कर पाए। तीसरे और आखिरी स्थान के लिए अनुभवी दीपिका कुमारी युवा ओलंपियन अंकिता भगत के बीच कांटे की टक्कर हुई। शुरुआती 3 राउंड के बाद दोनों 10.75 पॉइंट में बराबरी पर थी। शूट ऑफ में अंकिता ने बाजी मारी और एशियन गेम्स टीम का तीसरा आखिरी बर्थ हासिल कर लिया। स्पेनिश चैंपियन बार्सिलोना ला लीगा में अपने सभी होम मैच जीतने वाली 11वीं टीम बनी है। 38 मैचों वाले सीजन में ऐसा करने वाली वह पहली टीम है। इससे पहले 1985-86 में रियल मैड्रिड ने अपने सभी 17 होम मैच जीते थे। वहीं बार्सिलोना ने 1960 सीजन में अपने 15 होम मैच जीते थे। बार्सिलोना ने रियल बेटिस को 3-1 से हराया। ला लीगा इतिहास में इससे पहले कोई भी टीम 38 मैचों के फॉर्मेट में अपने सभी होम मैच नहीं जीत सकी थी। वर्ल्ड नंबर 1 जेनिक सिनर ने रविवार को घरेलू दर्शकों के सामने इटालियन ओपन का खिताब जीता। 24 साल के सिनर ने रोम फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूट को 6-4-6-4 से हरा दिया। इस जीत के साथ उन्होंने टेनिस इतिहास के सभी 9 एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतकर कैरियर गोल्डन मास्टर्स पूरा कर लिया। टेनिस इतिहास में सिनर ने पहले यह उपलब्धि सिर्फ 24 बार के ग्रैंड

0: स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच ने हासिल की थी। सिना ने सीजन में लगातार छठा मास्टर्स खिताब जीतकर पुरुष टेनिस टूर पर अपना दबदबा और मजबूत कर लिया है। ये तो थे कुछ साप्ताहिक खेल गतिविधियां। श्रोताओं, आइए अब चलते हैं बातचीत की तरफ। खेल संसार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ के एकमात्र बॉक्सिंग के खेल से अर्जुन पुरस्कार प्राप्त राजेंद्र प्रसाद जी से। तो राजेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो राजेंद्र प्रसाद जी, आप हमारे छत्तीसगढ़ से एक अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं और मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, तो उसके बारे में बताएं कि आपको ये पुरस्कार 1992 में प्रदान किया गया, तो उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी और कितने वर्षों खेलने के बाद आपको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ?
1: देखिए, मैं बॉक्सिंग तो शुरुआत किया 1986 से स्टार्ट किया मैंने, फिर अनवरत जारी रखा अपने खेल को। सबसे पहले मैंने स्टेट चैंपियनशिप खेला, एक्चुअली ऐसा नॉर्म से यह होता है कि सबसे पहले आपको स्टेट खेलना होता है
0: जी।
1: फिर इंटरनेशनल, फिर उसके बाद में अगर चांस बने तो फिर इंटरनेशनल आप खेलते हैं। तो मेरा शुरुआती दौर 1985 से हुआ
0: जी, जी।
1: और अनवरत करते हुए फिर मैंने नेशनल खेला। मैं जितने साल भी स्टेट में खेला उतने साल स्टेट का चैंपियन रहा हूँ। उसके बाद में फिर नेशनल में मुझे खेलने का सौभाग्य मिला, फिर नेशनल में मैंने खेला, नेशनल में मेडल जीता। तो उसके बाद इंडिया कैंप का चांस मिलता, इंडिया कैंप में मैंने फिर अपने आप को प्रूव किया था, जाकर इंटरनेशनल में क्वालिफाई करने का मौका मिलता, फिर उसके बाद मैंने क्वालिफाई किया
0: टूर्नामेंट में। जी जी जी। तो राजेंद्र प्रसाद जी, मुक्केबाजी का खेल आप खेलते हैं, तो जिस दौर में जब मुक्केबाजी आप खेल रहे थे वो एक ऐसा दौर था कि उस समय टेलीविजन और अभी का जो सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तो उस समय जो है एक मुक्केबाज खिलाड़ी को प्रकाश में आने में कितना समय लगा, मतलब लोगों को जानने में कितना समय लगा?
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका
0: जी।
1: जब हम 95 जब स्टार्ट किए थे
0: जी,
1: तब बॉक्सिंग के लिए बहुत अच्छा सुविधा तो थी नहीं
0: जी।
1: उसके बावजूद भी बोले ना कि हर एक बच्चा एक अपना डेस्टिनी लेके पैदा होता है, तो शायद भगवान ने मेरे को बॉक्सिंग को ऊंचाई छूने के लिए पैदा किया था
0: जी जी।
1: तो स्वभाव में रह के भी हमने प्रैक्टिस किया और क्या बोलना चाहिए वो मतलब लगन खा करके हमने खेल लिया
0: जी।
1: और सुविधाएं बोलेगे तो सुविधा तो कुछ भी नहीं थी, है ना
0: जी जी।
1: उसके बावजूद भी चूंकि हम भिलाई शहर में पले बड़े हैं, तो भिलाई शहर का जो खेल का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही अच्छा है
0: जी जी।
1: ठीक है, बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं है
0: जी,
1: लेकिन फिर भी आदमी अपनी कोशिश करेगा तो इतना तो है कि वो कुछ अच्छा कर सकता है। और उसके बाद अच्छा करने से तो फिर कोई ना कोई जब अच्छा करें तो भाई बहुत से हाथ बढ़ते हैं आपको खींचने के लिए, मेरा कहना है
0: जी जी। तो राजेंद्र प्रसाद जी, जब हम कुछ बनना चाहते हैं तो हमारा एक आइडल होता है और हम देखते हैं कि कोई खिलाड़ी ऐसा खेल रहा है तो हम उसे सीखकर हम आइडल बनाकर के आगे बढ़ते हैं, तो हम यदि जानना चाहें कि आप उस दौर में किसे अपना आइडल मानते थे?
1: देखिए, मेरे एक्चुअली ये मोहम्मद अली के प्रोफेसर से कौन अनभिज्ञ है, सभी
0: जी,
1: जानते हैं
0: जी।
1: उनका खेल, उनका फुटवर्क, उनका पंच है ना
0: जी।
1: उनका एक वो है ना, बहुत अच्छा उन्होंने डायरेक्ट मारते हैं मोहम्मद अली का, तो उसको इंस्पायर हुए। और साथ में माइक टायसन, उसके बाद में उनका एक दौर आया माइक टायसन का, बहुत मतलब सशक्त मुक्केबाज थे वो, बहुत ही मतलब क्या है ब्रूटल फाइटर थे वो, है ना। उनको भी देख करके मोटिवेट हुए और उसके बाद में दो हैं, और उसके बाद में अंत में हमारे जो गुरु जी हैं मिस्टर प्रदीप कुमार रॉय
0: जी जी,
1: प्रदीप कुमार रॉय, उन्होंने बहुत, उनसे भी मैं बहुत इंस्पायर हुआ। और उसी दौर पे हमारे एक और गुरु जी थे मिस्टर भूपेंद्र सिंह ठाकुर
0: जी जी,
1: हाँ वो भी हमारे पीछे काफी मेहनत किया है। तो मतलब किसी भी एक खिलाड़ी के आगे आने पे बहुत से लोगों का सहयोग रहता है
0: जी जी।
1: माँ बाप तो नहीं, एक बहुत बेसिक लोग हैं माँ बाप, क्योंकि हम सबसे ज्यादा समय अपने घर पे बिताते हैं, प्रैक्टिस के बाद आने के बाद में सोना रहना खाना पीना, तो मतलब सबसे बड़े गुरु तो हमारे सबसे पहले माता पिता हैं, फिर उसके बाद में फिर जो बचा कुचा है हमारे गुरु गुरुजी, फिर उसके बाद में फिर बचा कुचा दुनियादारी दिखाई देती है
0: जी जी
1: जी।
0: तो राजेंद्र प्रसाद जी, अभी वर्तमान में हम छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो यहाँ बॉक्सिंग के लिए जो माहौल हम चाहते हैं कि यहाँ से वो खिलाड़ी निकलें और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएं, तो उसमें खिलाड़ियों की थोड़ी हमें कमी दिखती है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं?

0: देखिए सबसे पहले बेसिक ये चीज है, अभी वर्तमान में जो बॉक्सिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो हमारे पास में नहीं है, नील है। एक्सपर्ट कोचेस है उसकी भी बहुत बहुत बहुत कमी है, बहुत कमी मतलब बहुत कमी। कोई एनआईएस कोच हमारे पास में नहीं है, अगर जो एनआईएस कोच हैं भी वो मतलब वो जो समय देना, पहली बात तो है नहीं, एनआईएस कोच तो यहाँ पे है नहीं हमारे पास में।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: अगर
1: जी,
0: ये दो चीज हमको अगर मिल जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर साथ में कोचेस है ना, और क्या फैसिलिटी, तो फिर ऐसा है कि हमारे पास में सेक्टर 2 इस्पात क्लब में है, बॉक्सिंग सेक्टर 1 में है, सेक्टर 8 में है, और दूसरी जगह में है। बात उसकी नहीं है, बात ये है कि इनको सही प्रॉपर गाइडेंस देने वाला कोच और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि देखिए आप किसी बच्चे को कहां से निकाल पाएंगे जहां पे काफी बॉक्सरों का जमावट होगा, उसमें आप खोल सकते हैं। यहाँ गिने चुने लोग आते हैं, ज्यादा हार्ड वर्क करा दो तो भग जाते हैं, और क्या है कि बहुत जल्दी बच्चों को कामयाबी चाहिए होता तो पॉसिबल नहीं है। मतलब एक कामयाब मुक्केबाज या कोई भी कामयाब स्पोर्ट्समैन अपने जिंदगी की मतलब पूरे जिंदगी की मेहनत कुछ समय में खेल लेता है, तब जाके उसको कुछ अच्छी होता है। कहने का मतलब है कि एक मुक्केबाज जिंदगी का जो जिंदगी भर की मेहनत था कुछ सालों में कर लेता है,
1: जी।
0: तब जाके उसको कुछ मुकाम हासिल होता है
1: जी।
0: तो आजकल वो बच्चों में कमी है, और मैंने आपको बताया कि यह इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है और कोचेज की भी कमी है। लेकिन अब ऐसा बोलोगे तो भाई इसके बावजूद भी राजेंद्र प्रसाद निकला ना, तो वैसे भी ऐसी सोच होनी मतलब होनी चाहिए मुक्केबाज में। उसका उस कमी को मैं देखता हूँ कि बच्चों में वो बात रही नहीं, वो डेडिकेशन नहीं है उनमें, वो आग नहीं है। अब देखिए तब आता है वो, इसी आग में हम सभी बैठे हुए
1: जी। तो राजेंद्र प्रसाद जी, क्या हम अभी के माहौल में देखते हैं कि लोग खेल को जॉब से जोड़ दिए हैं, लोग जो है जॉब के लिए खेलों को एक रास्ता बनाते हैं, तो क्या एक ये भी कारण हो सकता है कि लोग इस कारण भी इसमें कम दिखाई पड़ता है रुझान?
0: नहीं देखिए, आप अच्छा खेलेंगे तो नेचुरली आपको जॉब मिलना चाहिए है ना। आप अच्छा भी नहीं खेलेंगे, देखिए अभी मैंने कुछ स्पोर्ट्समैन को देखा कि कोई ऐसे नॉन रिकॉग्नाइज गेम को खेलते हैं और पूरी उम्र गुजार के फिर उम्मीद करते हैं कि उनको नौकरी मिले। तो आपके माध्यम से मैं ये लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी वो गेम खेलिए रिकॉग्नाइज गेम जिसमें आज नहीं तो कल आपको नौकरी को सिक्योरिटी हो। देखिए क्या होता है कि हर एक इंसान ना एक अपने समय का बहुमूल्य समय ये कुछ जवानी में देता है, तो एक बाल्यकाल में देता है। अगर उस वक्त उसको जॉब ना मिले या फिर परफॉर्म ना कर पाए तो क्या होता है कि वो माइल्ड हो जाता है। फिर उसके बाद में फिर स्पोर्ट्समैन को ब्लेम स्पोर्ट्स को ब्लेम करता है कि भाई स्पोर्ट्स ने मेरे को क्या दिया।
1: जबकि
0: मेरा बच्चों के साथ में ये एक संदेशा है कि भैया आपने स्पोर्ट्स को क्या दिया, पहले ये सोचिए ना कि आप देखिए कभी भी नौकरी उसको मिलता है, चाहे नौकरी में ले लो, चाहे पढ़ाई में ले लो, चाहे आप स्पोर्ट्स में ले। जो चीना नेशनल ने मतलब 18 साल के बाद को जो गेम होता है, जो उम्र होती है, उस उम्र में आप नेशनल में मेडल लेते हैं तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सब जूनियर में बहुत जोरदार अचीव करते हैं, जूनियर में कुछ एक अचीव करते हैं, उसके बाद में सीनियर में खत्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद में बोलते हैं कि भाई मेरे को इस गेम में क्या दिया। तो मेरा कहना है मतलब ने आपने बॉक्सिंग को क्या दिया, आपने स्पोर्ट्स को क्या दिया। अगर आप स्पोर्ट्स को दीजिए तो स्पोर्ट्स भी आपको देगा।
1: जी जी। तो राजेंद्र प्रसाद जी, 1992 का वो दौर था जब आपको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अविभाजित मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था, तो उसके बाद आपने किन किन जो है महत्वपूर्ण इवेंट्स में भाग लिया जो आपके लिए आज भी यादगार है?
0: देखिए ये बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो उन्होंने एक बीच में एक निकाला था कि जो भी अर्जुन अवार्डी होगा वो हमारे इंडिया टीम का सिलेक्शन कमेटी में रहेंगे है ना। तो वर्तमान में मैं इंडिया टीम का सिलेक्शन कमेटी मेंबर हूँ है ना, और जब भी इंडिया टीम कहीं भी जाती है क्वालिफाई राउंड में जाती है तो हम लोग को बुलाया जाता है, हम लोग फिर इंडिया टीम को सेलेक्ट करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पद दिया गया है मुझे, और मैं 15 साल तक अपने छत्तीसगढ़ बॉक्सिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ, और मैं जितनी कोशिश कर सका कि भाई बच्चों को बेस्ट फैसिलिटी मिलना चाहिए, जो मेरे से बन पड़ा मैं किया हूँ।
1: जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो राजेंद्र प्रसाद जी, कार्यक्रम में हम चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, अभी आने

0: हमारी जो पीढ़ी है और जो अभी वर्तमान की पीढ़ी है, उनको खेलों में क्या आप बताना चाहेंगे कि खेल कितना आवश्यक है हमारे जीवन में?
1: हाँ, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है
0: जी।
1: बहुत अच्छी बात है कि मैं इसी माध्यम से हर बच्चे को ये एक संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, आपको खेल में कुछ मिले ना मिले, एक अवश्य तो आपको मिलेगा, वो है शारीरिक हेल्थ, है ना
0: जी।
1: और हेल्थ के चक्कर में सारी दुनिया मतलब बहुत कुछ कर रही है। हेल्थ इज वेल्थ, ये मेरा बनाया हुआ वर्ड नहीं है, ये किसी संत मुनि ने बोला है। हेल्थ इज वेल्थ मतलब हेल्थ से बड़ा कोई दौलत नहीं। जिस दिन हेल्थ ने आपका दामन छोड़ा तो आप पूरे रिश्ते पे बोझ बन जाएंगे।
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: तो इसलिए हर किसी, चाहे अपने छत्तीसगढ़ के सभी जितने भी मेरे साथी हैं या मेरी इस बात को सुनेंगे, इसके लिए एक संदेशा ये है कि आप स्पोर्ट्स अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्पोर्ट्स ना भी करें तो अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। ये हेल्थ अच्छा रहा तो बहुत कुछ आप काम कर सकते हैं, अगर अच्छा हेल्थ रहा तो नेचुरली आपका अच्छा माइंड रहेगा, अच्छा माइंड रहेगा तो दुनिया में आप जो करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं और लोगों की अपेक्षा।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ के एकमात्र अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित बॉक्सिंग के खेल से जुड़े खिलाड़ी राजेंद्र प्रसाद जी से। तो राजेंद्र प्रसाद जी, कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी और जो अपने अनुभव साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी, नमस्कार।
0: खेल संसार कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: खेल संसार कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थे रमा शंकर। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं। चित्रपट संगीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: श्रोतों, आज है प्रसिद्ध गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी की पुण्यतिथि। आज के चित्रपट संगीत के कार्यक्रम को हम सजा रहे हैं उन्हीं के लिखे कुछ यादगार फिल्मी गीतों से। कार्यक्रम का पहला गीत दोस्ती फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ?
3: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: धर्म करम फिल्म का गीत सुनिए मुकेश की आवाज में, शब्द रचना मजरूह की, संगीत आरडी परमन का।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट

0: यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हम किसी से कम नहीं। इस फिल्म का गीत सुनते हैं मोहम्मद रफी, सुषमा श्रेष्ठ और साथियों की आवाजों में, शब्द रचना मजरूह की, संगीत एस डी परमन का।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अभिमान फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार एस टी परमन।

अभिमान फिल्म का यह गीत था किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार एस डी बर्मन। और इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। चित्रपट संगीत आप फिर सुनेंगे सुबह 10 बजे, और सुबह 10 बजे चित्रपट संगीत में आपको मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे कुछ और गीत सुनवाएंगे। समय हुआ है 9:40, प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत के आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं भगत साहू और साथी। इनके स्वर में पहले सुनते हैं ये गीत।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार हैं भगत साहू और साथी, इनके स्वर में लीजिए अब सुनिए ये गीत।

0: लोक संगीत अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे भगत साहू और साथी। आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा।

और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर दिल्ली में वहां पर चर्चा करेंगे, विषयों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी 7 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में देश भर के साथ छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से सभी राज्यों में लागू हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा आज 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। इस बार परीक्षार्थियों को पहली बार फेस स्कैन सिस्टम से गुजरना पड़ा। चेहरा मैच होने के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र के भीतर जाने की अनुमति दी गई। परीक्षा को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस परीक्षा के लिए रायपुर जिले में 22 केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और आम लोगों को घबराकर अतिरिक्त खरीदी करने की जरूरत नहीं है। सरकार के अनुसार राज्य में करीब 3,94,00,000 लीटर पेट्रोल और 8,08,00,000 लीटर से अधिक डीजल का भंडार उपलब्ध है। किसानों और जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए ईंधन की आपूर्ति जारी है। राज्य में 22 मई से ड्रम और जेरिकन में पेट्रोल डीजल पर रोक लगाई गई है। सरकार ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने कल जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जल जीवन मिशन के शेष कार्य समय सीमा में पूरा करने और लापरवाही पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि राज्य में जल जीवन मिशन के तहत 8,555 योजनाएं ग्राम पंचायतों को संचालन संधारण के लिए सौंपी जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में करीब 13,000, अगले वित्तीय वर्ष में 7,000 से अधिक योजनाएं पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ शासन को विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 2 माह में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि राज्य में 49,000 से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए करीब 4,000 विशेष शिक्षकों की जरूरत है। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि 848 स्वीकृत पदों में से 62 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 155 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और 85 विशेष शिक्षकों की स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होने का अवसर दिया जाए। दंतेवाड़ा में कल

पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम पंजीयन शिविर माय भारत और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस शिविर में दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बस्तर जिले के 450 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। युवाओं ने एनएमडीसी की किरंदुल और बचेली परियोजनाओं के 142 इंटर्नशिप पदों के लिए आवेदन किया। चयनित युवाओं को एनएमडीसी में 9 महीने के इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। इसके तहत 6,000 रुपये ज्वाइनिंग बोनस और 9,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा। बिटकॉइन में निवेश पर मुनाफा दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 7.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में दुर्ग पुलिस ने आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए और यूपीएससी की सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा आज 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

यह आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का पहला गीत कयामत से कयामत तक फिल्म से आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की, गीत मजरूह का, संगीत आनंद मलिंद का।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

कभी हाँ कभी ना, आइए सुने इस फिल्म का गाना कुमार सानू की आवाज में। शब्द रचना मजरूह की, संगीत जतन ललित का।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अकेले हम अकेले तुम। आइए सुने इस फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में, संगीत अनु मलिक का, गीत मजरूह का।

श्रोतों, अब एक सूचना सुनिए। आगामी मंगलवार 26 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसान वाणी कार्यक्रम का विषय होगा खरीफ पूर्व कृषि यंत्रों का रखरखाव एवं संबंधित योजनाएं विषय पर। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विनय कुमार नायक, सहायक प्राध्यापक कृषि अभियांत्रिकी कृषि विज्ञान केंद्र पांडा दुर्ग। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का STD कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 26 मई 2026 को सुबह 11:30 से दोपहर 12 तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से। कार्यक्रम का अगला गीत यारा दिलदारा फिल्म से। आवाज़ी हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की। गीत मजरू का, संगीत जतन ललित का।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए खामोशी फिल्म का गाना, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाजों में, शब्द रचना मजरूह की, संगीत जतन ललित का।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए नाटक इस बार नहीं। लेखक श्री रेवती शरण शर्मा, निर्देशक सत्येंद्र शरत।
1: इस बार नहीं। आज प्रस्तुत है श्री रेवती शरण शर्मा का लिखा यह नाटक। तो सुनिए नाटक इस बार नहीं।

0: भैया भैया
1: क्या है शीला?
0: एक बात पूछो।
1: पूछो।
0: आपकी कोई बात हुई है?
1: किससे? तुम्हारी भाभी से?
0: हाँ।
1: नहीं, क्यों?
0: नई नई शादी होती है तो ऐसा होता है, पर ऐसा नहीं।
1: कैसा?
0: भाभी ब्याह कर आई हैं तो न किसी से बोलती हैं न खाती हैं, छूट मूट को दो कौर तोड़ती हैं और उठ खड़ी होती हैं, ज्यादा कहो तो रोने लगती हैं।
1: घर की याद आती होगी।
0: बहू ससुराल में आती है तो पहले पहल पिहर की याद आती है, लेकिन भाभी तो घुटनों में सर दिए बैठी रहती हैं। औरतें आती हैं, माँ कहती हैं, फिर भी वही कपड़े पहने बैठी रहती हैं। सुनो भैया।
1: क्या?
0: मैं भाभी को भेजती हूँ, आप उन्हें कहीं घुमाने ले जाइए।
1: कहाँ?
0: सिनेमा।
1: माँ
0: कुछ नहीं कहेंगी, बस आप उन्हें ले जाइए, मैं भेजती हूँ।
1: भेज दो।
0: अच्छा, कहिए।
1: सुन राधा
2: जी,
1: सिनेमा चलते हैं। चुप क्यों हो, बोलो। तुम्हें किसी की पिक्चर अच्छी लगती है?
2: किसी की नहीं।
1: तुम पिक्चर नहीं देखती? अच्छा, प्रेम कथा देखने चलें?
2: नहीं।
1: क्यों?
2: मेरे सिर में दर्द है।
1: कोई बात नहीं, पार्क में घूमने चलेंगे।
2: मुझे नहीं जाना।
1: क्यों?
2: जी नहीं कर रहा।
1: खाना क्यों नहीं खाया?
2: जी ठीक नहीं है।
1: राधा, ये ठीक है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, लेकिन
2: अगर इतना जानते हैं तो मुझे मेरे घर जाने दीजिए।
1: क्यों?
2: मैं यहां रहना नहीं चाहती।
1: ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है।
2: मैं कुछ कहना नहीं चाहती।
1: तुम जाना चाहती हो?
2: हाँ।
1: एक बात पूछूं?
2: नहीं, मैं किसी बात का जवाब देना नहीं चाहती, बस मुझे मेरे घर जाने दीजिए।
1: तुम्हें यहाँ कुछ भी पसंद नहीं?
2: नहीं, मैं अंदर जा रही हूँ।
0: भैया, आप कहाँ जा रहे हैं?
1: नरेंद्र के यहाँ।
0: क्या हुआ?
1: कुछ नहीं,

0: कर दिया।
1: बक्को मत। अरे नहीं बताना तो न बता कि शादी की पहली रात कैसे गुजरी, या बीवी ने कैसे बलाएं ली थी, नौशे मियां कैसे कुर्बान हुए।
2: तुझे चलना है या नहीं?
1: बेटे ये रौब डालने की रिहर्सल हम पर ना करो। चलना कहाँ है?
2: जहां जाते हैं।
1: सिमेट्री?
2: हाँ।
1: वहां जाने की बात अब क्यों?
2: पनाह वहीं मिलेगी।
1: चल फिर।
2: चलो।

0: नरेंद्र।
1: दिनेश आइए आइए, दूल्हे साहब तशरीफ लाइए, वो आए हमारे घर।
0: सुनिए यार, कहीं बाहर चलेंगे।
1: कमाल है, आज भी ये गमे दिल क्या करूं, वहशत दिल क्या करूं। क्यों, क्या बीवी ने रिजेक्ट

0: दिनेश, पनाह मिल गई?
1: हाँ।
0: सचमुच तुझे यहां आने की जरूरत महसूस हुई? क्यों?
1: यहां तो दुनिया की नजरों से बचा जा सकता है।
0: जिंदगी से भाग कर आया हूं मैं, जिंदगी मेरे लिए एक खूनी भेड़िए से कम नहीं।
1: ठीक कहा। वो घर, वो मोहल्ला, वो गंदगी, वो चीखते माँ बाप, रोते बच्चे और कभी भी खत्म न होने वाली जहालत का सिलसिला, भेड़िया की मां थी तो है,
0: लेकिन अब तो नहीं।
1: अब क्यों नहीं?
0: शादी हो गई, बीवी खूबसूरत मिल गई, जिंदगी का फ्रस्ट्रेशन दूर हो गया।
1: जिंदगी का फ्रस्ट्रेशन दूर नहीं होता मेरे दोस्त, वो नसीब है।
0: हुआ क्या है?
1: कुछ नहीं, नसीब से पीछा छुड़ाने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है।
0: और यहां?
1: यहां? यहां आकर नसीब से छुटकारा मिल जाता है। लोगों को पार्क में, हमें कब्रिस्तान में, यहां भूत पीछा नहीं करते।
0: अजीब बात है, जहां भूत बसने चाहिए हमारे लिए नहीं बसते,
1: और जहां नहीं बसने चाहिए वहां बसते हैं। खाने वाले, नोचने वाले, आदमी को बे आदमी बनाने वाले।
0: भाभी से बनी?
1: हाँ।
0: फिर यहां क्यों आए?
1: कहा था।
0: किसने?
1: मैंने तुझसे।
0: क्या?
1: तू नहीं माना
0: क्या?
1: खोटे सिक्के कोई नहीं लेता। बचपन में खेलते थे, अक्सर जीत जाते थे, स्कूल में भी अच्छे नंबर लाते थे, फिर भी कोई नहीं मानता था। लंगड़ा, काना, कुब्जा, यही कहते थे।
0: भाभी ने?
1: बात उसकी नहीं, मेरी है।
0: कुछ कहा?
1: हमें या तो लोगों ने बींध डालने वाली नजरों से देखा है या नहीं देखा है।
0: बातें नहीं हुई?
1: बातें की हैं।
0: क्या?
1: जो कहा है जवाब पाया है।
0: यानी?
1: यानी तू और मैं, हम ही ने एक दूसरे को ज्यादा देखा है।
0: वो किसी अफलातून की बेटी है?
1: उसके माँ बाप ने उसे वो कज नहीं दिया जो मेरे माँ बाप ने दिया।
0: बस रूप ही सब कुछ होता है, गुण नहीं।
1: गुण भी क्या है?
0: तुझमें गुण नहीं
1: है? पढ़ लिख गया, नौकरी मिल गई, इसके आगे कुछ नहीं।
0: ये कज है आज के जमाने में, लोग अच्छी सूरत लिए मारे मारे फिरते हैं।
1: तू ही कहता है दिल के बहलाने को यह ख्याल अच्छा है।
0: नहीं है।
1: है, तभी हम और तू यहां हैं।
0: दिनेश, तू इतना दुखी क्यों होता है?
1: तू होता तो जानता।

0: दिनेश।
1: हाँ माँ।
0: तू कहाँ गया था?
1: नरेश के साथ घूमने।
0: देख, तुझे कसम है जो उसके यहाँ जाए।
1: किसके यहाँ?
0: जो मेरे लाख समझाने बुझाने और मनाने पर भी अपने भाई के साथ चली गई।
1: कौन?
0: तेरी महारानी। अरे अपने रूप का घमंड है तो हम भी गए गुजरे नहीं हैं। उसके बाप से कई अच्छे खाते पीते हैं।
1: लेकिन हुआ क्या? शीला तू ही बता।
2: भाभी के भैया मिलने आए। भाभी रोने लगी। अभी जाऊंगी।
1: वो कह रही थी कि दिल नहीं लगा।
0: हाँ हाँ, दूध पीती बच्ची थी और ससुराल आए 10 बरस हो गए थे। देख दिनेश, साफ साफ कह देती हूँ, ईंट का घर मिट्टी हो जाए, तू लेने नहीं जाएगा। हाँ
2: तुम चुप भी रहो माँ।
0: तू चुप रहे। अगर राजकुमार चाहिए था और मैल दुमैले चाहिए थे तो उसका बाप यहाँ क्यों नाक रगड़ने आया? हम खरीद के नहीं लाए।
1: अरे धीरे बोलो माँ, दुनिया सुनेगी।
0: सुन ले, घर घर मटियाले चूल्हे हैं। अरे मैं क्या नहीं जानती कि किसकी छुट्टी पड़ी है, किसकी भाग गई? मुझे किसी की परवाह नहीं है। हाँ
1: माँ, मुझे तो परवाह है, मुझे तो जीने दो।
2: माँ भैया का दिल खट्टा ना करो, राम राम करके किसी तरह उनका ब्याह हुआ है।
0: अरे मैं उसके लक्षण जानू हूँ। वो जो भाग के गई है ऐसे नहीं

0: वो इस घर में हमारे साथ रहना नहीं चाहती। मियाँ चार पैसे कमाता है, उसे अलग ले जाकर हमारे पेट पे लात मारना चाहती है।
1: दिनेश की माँ,
0: तुम भी सुन लो जी, ब्याह के लाए थे कि बड़े शरीफ घर की है, अरे हमें लात मार के चली गई वो तो।
2: अरे उस लात को नहीं, उस लात को नहीं, इस लात को से जो भगवान ने मारी है।
3: क्या हुआ पिताजी?
2: बेटे तेरी बड़ी बहन की माँ पूछ गई। परसादी लाल नहीं रहे।
3: माँ
4: मेरी कांता का क्या होगा?
2: भाग्य ने जो कुछ दिया है उसे तो सहना ही होगा।
3: नहीं।

0: राधा, सुना है तेरे नंदोई नहीं रहे?
1: हाँ, सुना तो मैंने भी है लता।
0: क्यों, ऐसे क्यों बोल रही है?
1: मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं।
0: राधा, बीच में कोई बात जरूर है, तू बता नहीं रही।
1: जानना चाहती है लता तो सुन, जो इतने भोले और सीधे बनते हैं उन्होंने हमें ठग लिया।
0: क्या?
1: यहां सब कहते हैं बेटी पर पैसा लेकर ऐसे को ब्याह दी जिसकी आंख में दोष है।
0: कौन कहता है?
1: बन मत लता, मेरे पिताजी लाख गरीब हैं, पर उन्होंने पैसा नहीं लिया लता, वो ठगे गए।
0: ठगे गए?
1: हाँ, उन्होंने अपने बेटे को नहीं दिखाया, मुझे किसी को दिखाकर रिश्ता पक्का कर लिया।
0: नहीं, मैं नहीं मानती।
1: माना मेरे माँ बाप के पास देने को नहीं था, पर मैं ऐसी गई गुजरी तो न थी कि उसके सिवा मेरे लिए कोई ना जुड़ता।
0: अब तू वहां नहीं जाएगी?
1: तू मेरी जगह होती तो
0: क्या पता क्या करती। भगवान किसी को बेटी ना बनाए, और बनाए तो गरीब के घर में ना दे।
1: और गरीब के घर में भी दे तो चार चार बेटियों वाले घर में ना दे। मेरी ये दुर्गत इसलिए हुई कि इस घर में जन्मी। उन्होंने लड़का दूसरा दिखाया पर घर दूसरा नहीं दिखाया।
0: क्या उनके घर में कुछ भी नहीं है?
1: हमारे घर में 5 का पुराना पड़ता था, वहां तो 7-7 हैं।
0: जीजा जी कमाते भी हैं या?
1: कमाते हैं।
0: स्वभाव कैसा है?
1: अरे, जिसने ब्याह में धोखा दिया अंदर से सोने का हो मेरे लिए लोहे का है।
0: क्या कह रही है तू?
1: हाँ लता, ठीक कह रही हूँ।
2: दिनेश, मैं समझता हूँ बहन का गम कितना होता है, लेकिन इसे दिल से लगाने से हासिल कुछ नहीं। तो फिर क्यों हर वक्त ये उदासी, ये चुप्पी?
3: नरेंद्र, दिमाग से एक बात नहीं जाती।
2: क्या?
3: मैं चाहता तो दीदी का रिश्ता वहां होने से रुक जाता।
2: लेकिन दिनेश, देने को पास ना हो
3: बात तो... देने की नहीं, झगड़े की है। हाँ, हम सब भाई बहनों का, खासकर दीदी का मेरा बहुत झगड़ा होता था। वो मुझे ऐसी ऐसी गालियां देती थी, मैं उन्हें ऐसी ऐसी बुरी बातें कहता था। हम ऊपर तले के थे और घर में हर बात की तंगी थी। रिश्ते से एक दिन पहले हमारा बहुत सख्त झगड़ा हुआ था। सुबह जाते हुए पिताजी बहुत चाह रहे थे मैं ही ज्यादा उम्र वाले से रिश्ते को मना कर दूं। मैंने नहीं किया।
2: कोई दूसरा रिश्ता था?
3: बात इसकी नहीं है, बुरा चाहने की है। दीदी मर जाए, किसी के साथ भी ब्याह कर घर से टल जाए, मैं बुरा चाहने लगा था उसका। जब से जीजा जी गुजरे बार बार दिमाग में यही बात आ रही है।
2: दिनेश देख, हमारे साथ जो भी हुआ है हमारे चाहने से हुआ है।
3: जानता हूं, घर में खाने को ना हो भाई बहन जानवरों की तरह लड़ते हैं।
2: फिर अपने को कसूरवार क्यों समझता है? शुक्र कर खाते पीते घर गई, लौट कर घर तो नहीं आएगी मेरी बहन की तरह। इस ख्याल को दिल से निकाल और आगे की सोच।
3: क्या सोचूं?
2: तेरे ससुराल वालों में से कोई आया?
3: ससुर आए थे।
2: फिर?
3: पिताजी ने गाली देकर निकाल दिया।
2: मैं आज तक नहीं समझ सका कि आखिर बात क्या हुई।
3: जिसकी एक आंख चली गई हो, मुंह पर माता के दाग हो, और क्या बात होगी।
2: लेकिन पहले जब सब पता था।
3: क्या पता था, कितना पता था?
2: कितना क्या?
3: कि आदमी ही नहीं, सास ससुर झगड़ालू, ननद देवर कुत्तों की तरह लड़ने वाले, घर में हर चीज की तंगी तुरशी।
2: ये सब घरों में होता है।
3: बात हद की होती है, आदी होने की होती है। मैं आदी हो गया हूं। फिर भी कभी कभी जी चाहता है कि कपड़े फाड़ कर घर से निकल जाऊं।
2: अलग होना चाहेगा?

0: और नहीं चाहेगा।
1: लेकिन
0: फिर पूछता क्यों है?
1: यानी कोई रास्ता नहीं?
0: आदमी पिछले जन्म के पाप नहीं, इस जन्म की परिस्थितियां भोगता है।
1: एक बात मानेगा
0: क्या?
1: मैं एक बारात में तेरी ससुराल जा रहा हूं, उनसे मिलो।
0: किससे?
1: तेरे ससुर या भाभी जी से नहीं, तेरे साले से।
0: मेरे साले से?
1: वो जवान है, वो ज्यादा अच्छी तरह समझ सकता है।
0: लेकिन बात कैसे बदलेगी?
1: बात वही रहती है, लेकिन दिमाग बदल जाए फिर।
0: मैं कुछ नहीं कहता, जो जी में आए कर।

0: कहिए, किनसे मिलना है?
1: तुम राधा जी के भाई हो?
0: जी हाँ।
1: मैं तुम्हारे जीजा जी दिनेश का दोस्त नरेंद्र हूँ, कुछ बात कर सकता हूँ?
0: क्या
1: बाहर आएंगे आप? नहीं, मैं झगड़ा नहीं करूँगा, बस दो बातें करूँगा, चला जाऊँगा।
0: अच्छा चलिए
1: आइए। आप काम क्या करते हैं?
0: कचहरी में अर्जियां टाइप करने का काम शुरू किया है।
1: शादी हो गई?
0: हाँ।
1: कब?
0: पिछले बरस।
1: अच्छा अच्छा। भाई बहन?
0: भाई मैं और बहनें चार।
1: देखिए, इतना पूछने आया कि क्या आपकी बहन के साथ कुछ ज्यादती हुई?
0: कुछ हमारे साथ सरासर बेईमानी हुई।
1: क्या?
0: हमसे धोखा किया गया।
1: धोखा?
0: दिखाया दूसरा लड़का गया, शादी इनसे की गई।
1: अरे, आपको नहीं पता था कि दिनेश की आंख?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: यानी आपको धोखे में रखा गया?
0: हाँ।
1: सुनिए, आपके पिताजी जब लड़का देखने आए थे, मैं वहीं था।
0: क्या?
1: उन्होंने न सिर्फ दिनेश को अच्छी तरह देखा था, उससे बातें भी की थी।
0: क्या?
1: मुझ तक से पूछा था। आंख का कज तो भगवान के हाथ की बात है, लेकिन इसके अलावा आदत का तो कोई ऐब नहीं।
0: आप ये
1: सच कह रहा हूं, एक एक अक्षर।
0: फिर उन्होंने हमें ये बात क्यों कही?
1: तुम लोग शायद ना मानते, पर उन्हें बेटी बिना दहेज की उठती दिख रही थी।
0: क्या?
1: हाँ, ये लालच जरूर दिया गया था कि दहेज नहीं चाहिए।
0: आप सच कहते हैं?
1: मैं एक दिन यहां हूं, अपने पिताजी से पूछकर देख लीजिए।
0: अगर जरूरत हुई उनके सामने आएंगे?
1: अभी अभी चलने को तैयार हूं।
0: अभी नहीं, पहले मैं पूछ लूं। अगर आपकी बात सच हुई तो मैं अपनी बहन को लेकर खुद वहां पहुंचाऊंगा।
1: एक बात मानोगे? अगर मेरी बात सच निकले तो जैसे कहूं वैसे करना।
0: अच्छा।
2: वाह, घर वो छोड़कर जाए और लेने मेरा बेटा जाए। कान खोलकर सुन लो नरेंद्र, वो और उसका भाई 10 दफे नाक रगड़ेंगे तब घुसने दूंगा घर में।
1: लेकिन चाचा जी, उन्हें मालूम नहीं
2: था। सबको मालूम था, सब थाने झूठ बोलते हैं। अरे, हाथी पालना आसान है, बेटी पालना नहीं। अब जब बेटी भारी पड़ने लगी, बहाने बनाते हैं।
1: ये बहाना नहीं है चाचा जी, भाभी जी और उनके भाई को बिल्कुल मालूम नहीं था।
2: अरे, लेकिन बाद में तो हो गया था, तब क्यों गई?
1: वक्त पर मालूम ना हो तो आदमी क्या
2: उसकी वकालत ना करो। उसे ये ना दिखा कि गोरी चाम है तो क्या हुआ? अरे, बाप के पास बहाने को देना नहीं था। साले ने मुझे और बारात को एकदम सूखा डाला।
1: लेकिन चाचा जी, ये तो आप जानते थे।
2: पर उसने क्यों जाना? अरे, मैंने ठग लिया दरवेश, मेरे ठूठ ही तो देख। उसने अपने बाप का ठूठ नहीं देखा, मेरे बेटे का कहीं देखा।
1: लेकिन अब तो सब बीत गया ना चाचा जी, वो आने को तैयार है।
2: तो जिस भाई के घोड़े पे सवार होकर गई थी उस पे क्यों नहीं आ जाते? मेरे बेटे का प्यादा क्यों चाहिए?
1: वो दामाद को बुलाकर खुश करना चाहते
2: हैं। वो अपनी नाक ऊंची रखना चाहते हैं। मैं नहीं रखने दूंगा, दिनेश नहीं जाएगा। हाँ,
1: तूने क्या सोचा?
3: तूने पिताजी से बात करके तो देख ली।
1: उन्होंने अपनी कौन सी सुलझाई जो तेरी सुलझाएंगे? दिनेश, तुम्हारे या हमारे साथ जो कुछ हुआ उनके इस आंख बंद करके चलने की वजह से हुआ।
3: लेकिन वो कौन सा आंख खोलकर चली?
1: अगर तू लड़की होता, तुझे बताया ना जाता, फेरे होने के बाद पता चलता, तुझे सदमा ना होता, गुस्सा ना आता अगर तुझे बताया जाता कि लड़के वालों ने दूसरा

0: का दिखाया, लेकिन जब पता चल गया तो अब क्यों नहीं आई?
1: अब बताता हूं, तेरा साला लाने को तैयार था, मैंने मना कर दिया।
0: तूने?
1: हाँ, बात इतनी नहीं है, सारे घर की है। जब तक स्थिति समझ नहीं लेगी, तुझे जान नहीं लेगी, आए दिन किसी ना किसी बात पर झगड़ा होगा, आना ना आना बेकार हो जाएगा।
0: मेरे वहां जाने से क्या होगा?
1: यहां लाने से पहले उन्हें सब बातें बता दे, सुनकर समझकर तेरा दिल देखकर आ जाए तो आ जाए, वरना छोड़ दे, जो होता है होने दे।
0: फिर बिना बताए जाऊं?
1: नहीं नहीं, वहां भी किसी को पता नहीं चलेगा, तू भी उनके नहीं जाएगा, कहीं और ठहरेगा। भाभी अपने भाई के साथ आएंगी, तुम दोनों अकेले में अलग बात करोगे। बात बन गई तो बाद में उनका भाई ही उनको लेकर आ जाएगा।
0: कब जाऊं?
1: किसी भी दिन, वो कचहरी में होता है, सीधे उसके पास चले जाना।
0: ठीक है।

0: जीजा जी आप यहां बैठे।
1: हाँ
0: राधा।
2: गलती
0: पिताजी से हुई, ये तुम्हें मालूम हो गया। अब ये जैसे हैं, इनका जैसा घर है, तुम्हारे सामने है, तुम जो चाहो फैसला करो। जीजा जी आप दोनों अकेले में बात कर लें, मैं अभी आता हूं।
1: अच्छा राधा, तुम्हें पता चल गया कि हमारी तरफ से कोई धोखा नहीं हुआ। ठीक है मैं बदसूरत हूं, मेरी आंख में दोष है, लेकिन मुझे पता होता कि तुम्हें नहीं मालूम है तो बारात आने पर भी मैं फेरों पर नहीं बैठता। मुझे मालूम है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, पर मेरा क्या दोष है? मैं तो अब भी वो करने को तैयार हूं जो तुम चाहती हो। राधा, आदमी जहां पैदा होता है वहीं की पापिष्ठाएं भोगता है। ऐसे घर में जन्मा जिसमें 11 भाई बहन हुए, 4 मर गए, जो हैं जिए नहीं बस बच गए। न अच्छा खाने को मिला न पहनने को, सब आए दिन बीमार रहते। इलाज न होता या होता तो उस खैराती अस्पताल में जिसमें घंटों के बाद 4 पुड़ियां मिलती, न जाने किस चीज की। जानती हो मेरी आंख कैसे गई? मैं जन्म से ऐसा नहीं हूं, मेरी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। मेरी मां कहा करती थी मेरे बेटे की आंखें कटोरे सी हैं, उसमें मोती का पानी तैरता है। लेकिन गंदा रहने की वजह से मेरी आंखें दुखने लगी, उनमें रोहे पड़ गए। और फिर एक दिन जब दिवाली पर मेरी मां तेजाब से किवाड़ साफ कर रही थी, तेजाब की एक बूंद मेरी आंख में गिर पड़ी। मैं दर्द से चिल्ला उठा, आंख सूज गई। महीने भर तक मैं दवा खाने जाता रहा और अपने गालों पर दवा की पीली धारी पड़वा कर आता रहा। ठीक होने के बजाय मेरी आंख में पस पड़ गया। मैं उस रात को कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं।
3: सुनिए।
4: क्या है?
3: दिनेश की आंख ठीक नहीं हो रही।
4: अरे तो मैं क्या करूं?
3: उसकी आंख से पस आने लगा है।
4: अरे तो आज थैले क्यों नहीं जाकर मरता है?
3: एक महीना हो गया जाते जाते, कोई फायदा नहीं हो रहा।
4: तो
3: किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो ना, डॉक्टर मिर्धा को।
4: डॉक्टर मिर्धा को, जो आंख में टॉर्च जला कर देखने के 20 रुपए ले लेता है।
3: ये लड़के की आंख का सवाल है, कहीं उसकी आंख ना चली जाए।
4: चली जाए, एक तो बचेगी।
3: क्या कह रही हो?
4: हाँ, नहीं है मेरे पास सालों पर लुटाने के लिए रुपए, आए दिन बीमार पड़े रहते।
3: बच्चों को ढंग का खाने को नहीं मिलेगा, उनकी परवाह नहीं होगी, बीमार पड़ेंगे, मर जाने दोगे क्या?
4: मर जाए, 4 मर गए कुछ फर्क पड़ा? एक जाता है दूसरा आ जाता
3: तो क्यों आने देते हो?
4: जबान बंद रख, बकवास मत कर, चुप।
1: जब मेरा मुंह नीला पड़ने लगा तो मुझे डॉक्टर मिर्धा को दिखलाया गया। तब तक देर हो चुकी थी, मेरी आंख का तारा गल चुका था, मैं एक आंख खो चुका था।
2: बस मुझे मत बताइए।
1: जिन हालात में शादी हुई उसके बाद ये तुम्हारी मर्जी पर है कि अब तुम हमारे घर आओ या ना आओ।

0: तुम्हें जानना होगा उस घर को जिसमें मैं रहता हूं। मां जैसी चिड़चिड़ी हैं पहले ना थी, पिताजी भी इतने गुस्सैल ना थे, लेकिन जैसे जैसे हम पैदा होते गए मां की सेहत खराब होती चली गई। हम चीखते चिल्लाते उनकी जान का रोग बन गए।
1: मैंने देखा है।
0: क्या?
1: मेरी भी ऊपर तले की चार बहनें हैं। जब तक पांचवा हमारा भाई नहीं हुआ था, मां की क्या दुर्गति हुई, और फिर हम पांचों की क्या दुर्गति हुई, मैंने देखा है। ऐसा नहीं हुआ जैसा आपके साथ हुआ, पर हमारे साथ भी कम नहीं हुआ।
0: मैंने माँ बाप का नर्म रूप ना देखा होता तो मैं भी अपने दोस्त नरेंद्र की तरह कहता कि माँ बाप नहीं दुश्मन है। लेकिन लेकिन आदमी पढ़ा लिखा ना हो, बीवी को कुछ कहने करने ना दे, जो नया रास्ता निकले उसे अपनाने को तैयार ना हो, ना चाहने पर भी घर को बिगाड़ बैठता है।
2: आज जी कैसा है तेरा?
1: ठीक हूँ।
2: बुखार तो नहीं है?
1: नहीं।
2: ये क्या है?
1: कुछ नहीं।
2: लिफाफे बनाने का कागज?
1: गुस्सा नहीं करना, तुम नहीं देखोगे तो मुझे देखना होगा।
2: क्या?
1: कि जिसके बिना बच्चे नहीं रह सकते वो उनको मिले। दिनेश किताब मांगता है, तुम पुरानी न मिलने के चक्कर में 6-6 महीने तक नई किताबें लाकर नहीं देते। ड्राइंग के बक्स ऐसे लाकर देते हो जो 2 दिन में ही टूट जाते हैं। बच्चों को एक दूसरे के छोटे कपड़े पहनाती हूँ फिर भी नंगे फिरते हैं।
2: चुप कमाता हूँ, छिपा कर रखता हूँ तुझसे।
1: मैं कब कहती हूँ, पर तुमसे कितना कहा कि जितने हैं वो ही नहीं संभलते, कुछ ना कुछ करो, हमें और नहीं चाहिए, पर तुमने नहीं सुनी। अब जब आज भी कहती हूँ तो भी नहीं सुनते।
2: क्या नहीं सुनते?
1: लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाते?
3: अम्मा, अम्मा मैं ले आई।
4: क्या ले आई?
3: कुछ नहीं।
4: दिखा क्या लाई? ओह, ये इतना बढ़िया वाला ड्राइंग बॉक्स?
1: हाँ।
4: कहाँ से आया?
1: मैंने मंगाया है।
4: इसके लिए रुपए कहाँ से लाए?
1: शीला तू जा।
3: अच्छा माँ।
1: मैंने और लड़कियों ने पापड़ की लोहियां बेली,
4: इसीलिए बीमार पड़ी है।
1: बेटा तो क्लास में नहीं पिटेगा, इसके लिए उसके नंबर तो नहीं कटेंगे।
4: तू समझती है मैं दुश्मन हूँ?
1: बिल्ली अपने जनों में से एक दो को खा जाती है। मैं भी जब दिनेश की आंख देखती हूँ लगता है मैं भी।
0: आज भी माँ के ये बोल याद आते हैं तो उसका सारा दर्द आंखों के सामने आ जाता है। माँ ने इतना सहा है कि उसकी शक्ल बिगड़ गई है। माँ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए लड़ रही है। राधा, तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, पर एक वचन देता हूं, जो मेरे मां बाप ने किया हमारी जिंदगी में नहीं होगा। हमारी बेटी तुम्हारी तरह जबरदस्ती नहीं ब्याही जाएगी। हमारा बेटा मेरी तरह कटघरे में खड़ा होकर हमारे किसी गुनाह की सफाई नहीं देगा।
1: हाँ, वो सब इस बार नहीं होगा।
0: हाँ हाँ राधा, इस बार नहीं होगा।

0: निरीक्षक थे सत्येंद्र शरद, प्रस्तुतिकरण सहायक प्रकाश चंद जैन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री नीरज शर्मा, सुरेंद्र वर्मा, ललित पारिमु, रजनीश शर्मा।
1: इस बार नहीं, ये नाटक अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को ही आइए समाचार सुनिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे।
3: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका की विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। 5वें चरण में ताजा समाचार मिलने तक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने बड़ी बढ़त बना ली है। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास आज गोलीबारी हुई। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध को मार गिराया। इस दौरान एक नागरिक भी घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य खोलना भी शामिल है। श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है और शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी। समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाखाई ने अमेरिका पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। उधर महिला वर्ग में अमरीका की कोको गॉफ मौजूदा चैंपियन है। आईपीएल क्रिकेट में

0: पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फोन इन फरमाइश। प्रस्तुत करता है प्रवीणा त्रिपाठी।

0: तपती गर्मी और गर्म हवाओं के बीच आज का फोन इन फरमाइश कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त प्रवीणा त्रिपाठी। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार और चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। लेते हैं आज का पहला फोन कॉल। हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हेलो,
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी, मैं सुनील विश्वकर्मा बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से बोल रहे हैं सुनील विश्वकर्मा जी?
1: सिवनी से बोल रहे हैं जी, मध्य प्रदेश।
0: सिवनी मध्य प्रदेश से सुनील विश्वकर्मा का हम इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं
1: जी। गाना सुनना है?
0: गाना जरूर सुनवाएंगे आपको। कौन सा गाना सुनना है?
1: वो कच्चे धागे का चाहिए, तेरे बिना नहीं जीना मर जाना डोलना।
0: जरूर सुनवाएंगे आपको आपकी पसंद का गाना। बताइए क्या करते हैं आप?
1: मैं तबला प्ले करता हूँ मैम जी। आज जगह पे जैसे भागवत है, भजन संध्या है, जागरण है, इसमें कार्यक्रम में जाते रहते हैं
0: जी। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा जानकर। तो रेडियो कब सुनते हैं आप?
1: जैसे गाड़ी में भी लगा ही रहता है आकाशवाणी का, तो हर हमेशा अच्छे अच्छे मीठे मीठे भजन आप लोगों के द्वारा सुनते रहते हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो सुनील विश्वकर्मा जी आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।

0: हेलो, फोन इन
1: हेलो। हाँ,
0: फरमाइश।
1: फोन इन फरमाइश। मैं लोचन देवांगन बोल रहा था मैडम।
0: लोचन देवांगन
1: अच्छा
0: कहाँ से
1: अच्छा
0: बोल रहे हैं?
1: उससे
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: कपड़ा पर ही काम करते हैं मैडम।
0: अच्छा, तो रेडियो कब कब सुनते हैं?
1: रेडियो दिन भर सुनते हैं मैडम। हम लोग सभी परिवार एक जगह सुनते हैं बैठ करके। चौपाल
0: जी, कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
1: है, किसान वाणी है, फोन इन फरमाइश, आप मन के गीत बहुत अच्छा लगता है मैडम।
0: जी, तो अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, आपके इलाके में किस तरह है मौसम?
1: बहुत गर्मी है मैडम यहाँ भी।
0: जी, तो पेड़ वगैरह कुछ लगाए हैं आप लोगों ने?
1: हाँ लगाए ना मैडम, आसपास में पेड़ लगा है, वहां से ठंडा हवा मिलता है।
0: जी, तो इस वाली जो अभी आने वाली बारिश है, इसमें आपने कुछ सोचा है कि और कितने पेड़ आप लोग लगाएंगे कि मौसम थोड़ा ठंडा रहे?
1: हर साल लगाते हैं मैडम, दो चार पौधा हर साल लगाते हैं।
0: बड़ी अच्छी बात है। तो बताइए कि आज के कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जय संतोषी माता का गाना सुनना है मैडम। करती हूँ तुम्हारी व्रत में

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हेलो, फोन इन फरमाइश। दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं दीदी भागवत प्रसाद सिन्हा, ग्राम नारजी पोस्ट ओंधी, भिलाई पिंग, जिला दुर्ग से।
0: तो भागवत प्रसाद सिन्हा जी, आपका इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद दीदी, धन्यवाद।
0: क्या काम चल रहा है इस समय?
1: मैं दीदी क्या है, किराना व्यापारी हूँ। दुकान में बैठ रहे थे, गीत सुनना, रेडियो सुनना, यही मेरी दिनचर्या है।
0: ठीक है ठीक है, तो बताएं कि आज के कार्यक्रम में कौन सा गाना आपको सुनवा दें।
1: आज के कार्यक्रम में दीदी कर्ज फिल्म का एक गीत है, गीत गा के सुनाता हूँ दीदी।
0: जी बिल्कुल।
1: तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का, तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का, मिल जाए नैना एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना, तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का। ये गीत है दीदी।
0: वाह वाह, आप तो गाते भी बड़ा अच्छा है।
1: मैं सिर्फ गाना, गीत गाना सीखा हूँ दीदी।

0: मिल जाए लेना, एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का। यही गीत है दीदी।
1: वाह वाह, आप तो गाते भी बड़ा अच्छा हैं।
0: मैं सिर्फ गाना गीत गाना सिखाऊं दीदी, सिर्फ गीत गाता हूँ मैं।
1: बड़ी अच्छी आवाज है आपकी और बहुत ही अच्छा गाया आपने। तो चलिए आपको
0: जी जी
1: सुनवाते हैं
0: धन्यवाद।
1: आपकी पसंद का ये गीत। फोन करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हाँ जी प्रणाम, मैं ताबिर बोल रहा हूँ रायपुर से।
0: ताबिर जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: जी जी, बहुत धन्यवाद आपका।
0: क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, और अभी मैं बीते कुछ हफ्ते से लगातार ट्राई कर रहा था, लेकिन आज संयोग देखिए एक ही बार में कॉल लग गया।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: पिछले हफ्ते में उससे पहले कंटिन्यू पूरे आधे घंटे मैं ट्राई कर रहा था।
0: अरे अरे,
1: अजीब लग रहा है, मेरे को भी खुशी भी हो रही है।
0: जी जी, असल में हमारे बहुत सारे श्रोता लगातार प्रयास करते हैं कि उनका फोन लग जाए, तो ये कहीं ना कहीं थोड़े बहुत किस्मत की भी बात होती है जिनका फोन लग जाता है। कुछ टेक्निकल भी बात होती है कि किसी का जल्दी लग जाता है फोन और कोई बहुत दिनों तक ट्राई करता है।
1: किस्मत और शिद्दत दोनों की बात होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो बताइए क्या करते हैं आप?
1: मैं तो चूंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो करियर है मुझे आकाशवाणी के जरिए ही मिला है।
0: अच्छा।
1: उस दौर में मैं युवाणी सुना करता था, तो पारितोष चक्रवर्ती जी की एक वो आई थी वार्ता।
0: अच्छा।
1: उसमें उन्होंने इस करियर के बारे में बताया था, तो उसकी मैंने कोशिश की। और तो जब फोरिन फरमाइश उस समय आता था, तो एक मैडम थी शारदा मैडम, मेरे ख्याल से बोल रही
0: शारदा पांडे जी,
1: तो उस समय की जो, हाँ जी जी सॉरी, तो उस समय क्या होता था कि वो जो, क्योंकि अभी भी

0: हमारे जो गोशा थे, हमारे सुपरस्टार तो वही रहे हैं
1: जी।
0: तो जब वो कुछ बोलते थे, जब फोन लगाते थे अपन, तो वो बहुत अप्रिशिएट करते थे।
1: अच्छा अच्छा,
0: अप्रिशिएट की वजह से हम अपने काम में और आगे बढ़ते थे। नतीजा ये रहा कि आज मोती क्षेत्र में हूँ।
1: बहुत बढ़िया,
0: आकाशवाणी की देन है। तो आज एक मौका मिला मेरे को कि भाई मैं उनको क्रेडिट दे दूँ, इसलिए मैंने फोन भी लगा लिया।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपकी आपके बारे में जानकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आकाशवाणी को सुनकर कोई अपना भविष्य बनाता है, करियर बनाता है, तो आकाशवाणी के लिए इससे बेहतर बात और कोई हो नहीं सकती है। तो बताइए ताबिर जी, आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
0: जी, मुझे फिल्म का नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक गीत है, एक दिन तुम बहुत बड़े बनोगे इस गीत।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: मैं महेश कुमार वर्मा बोल रहा हूँ,
0: कहाँ से बोल रहे हैं महेश कुमार जी?
1: ये ग्राम मोहारा गंगागढ़ से बोल रहा हूँ।
0: आपका हम इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद।
0: बताइए, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हूँ मैडम। अब गर्मी चल रहा है, गर्मी बहुत बढ़ गया है,
0: तो कैसा
1: ज्यादा
0: है
1: काम भी
0: आपके
1: नहीं कर
0: यहाँ
1: रहा
0: का
1: है। क्या
0: मौसम अभी मोहारा का?
1: मोहारा में बहुत बहुत गर्मी है मैडम, 9-10 बजे से बहुत गर्म
0: अच्छा,
1: हवाएं चलना चालू हो जाता है।
0: तो आपके यहाँ पेड़ पौधे जंगल नहीं है?
1: नहीं मैडम, जंगल नहीं है,
0: जंगल
1: यहाँ
0: नहीं है
1: से
0: वहाँ?
1: 6-7 किलोमीटर, 6-7 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ से चालू हो जाता है
0: अच्छा, तो
1: जंगल
0: आप लोगों के
1: जंगल।
0: जो गांव है वहाँ पर पेड़ पौधे

0: कम है क्या?
1: हाँ जी कम है।
0: हाँ हाँ तो कभी आप लोगों ने सोचा कि बारिश का मौसम जब आता है तो थोड़े और पेड़ लगाए जाएं?
1: हाँ जी, वृक्षारोपण तो होता नहीं रहा पंचायत के माध्यम से।
0: जी, मतलब वृक्षारोपण किसी माध्यम से हो रहा है वो तो एक अच्छी पहल है, एक अच्छी बात है, लेकिन क्या हमारा खुद से ये कर्तव्य नहीं बनता है कि हमारे घर के आसपास या हमारे खेतों के किनारों में जो जगहें बची हैं वहां पे हम कुछ पेड़ लगा दें ताकि ऑक्सीजन हमें मिलती रहे?
1: 6 सदस्य है मैडम मेरे मिला के, तो मैं जिसका भी जन्मदिन आता है ना उसके अवसर पर मैं एक पेड़ लगाता हूँ।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, जानकर अच्छा लगा। तो बताइए कि आज के कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत सुनवा दें?
1: जी मोहरा का गीत है मैडम, कुछ भी बढ़िया मस्त।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हाँ मैडम जी, नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: मैं रोहित कुमार साहू बोल रहा हूँ मैडम, नगर पंचायत समोदा जिला रायपुर से। मैडम
0: रोहित कुमार जी, आपका हम इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद। मैडम
0: क्या करते हैं आप?
1: मैं शिक्षक हूँ। मैडम
0: अच्छा, कहाँ पर पढ़ाते हैं?
1: मैं कसडोल ब्लॉक में पढ़ाता हूँ, चेचरापाली गांव में।
0: जी, तो कौन सी क्लास तक के बच्चों को शिक्षा?

0: देते हैं आप?
1: मैं प्राइमरी में हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो
1: हाँ
0: अभी तो आपके स्कूल की छुट्टियां लग गई होंगी।
1: हाँ गर्मी छुट्टी में घर आया हूँ मैडम। हाँ
0: अच्छा, तो बताइए कि किस तरह का माहौल है? अभी आप वापस अपने गांव आए हैं, कैसा लग रहा है?
1: गांव आना तो बढ़िया लगता है मैडम, जन्मभूमि है,
0: जी,
1: गर्मी बहुत है मैडम इधर।
0: गर्मी इस वर्ष सभी जगह बहुत ज्यादा है।
1: हाँ
0: पानी पानी
1: बहुत
0: कैसा है
1: दिनों बाद।
0: आपके क्षेत्र में? पानी की कमी तो नहीं है?
1: नहीं इधर क्या है, ट्यूबवेल है मैडम, डबल फसल होता है, और महानदी के किनारे लगा है मैडम हमारा गांव जो है। हाँ
0: अच्छा, तो पानी आप लोगों को मिलता रहता है?
1: हाँ प्राय प्राय सभी के यहाँ लगभग 80% ट्यूबवेल है, घर में भी है, खेतों में भी है।
0: तो
1: हाँ
0: आपके यहाँ हरियाली किस तरह की है? वन संपदा कैसी है आपके क्षेत्र में?
1: नहीं है मैडम इधर क्या है, वन संपदा की कमी है, खेतों में भी वृक्ष कम है।
0: जी,
1: हाँ
0: तो क्या आपको नहीं लगता है कि यही वजह है गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने की?
1: बिल्कुल मैडम, पर्यावरण का संरक्षण तो करना ही पड़ेगा, वृक्ष लगाना पड़ेगा, तभी ग्रीष्म से हमें राहत मिल सकती है मैडम।
0: जी, तो आप किस
1: हाँ
0: तरह से अपना योगदान दे सकते हैं कि आप खुद ही वृक्ष लगाएं और लोगों को भी प्रेरित करें?
1: हाँ मैडम, हम लोग अपने स्कूल में भी बच्चों के द्वारा वृक्ष लगाते हैं, और गांव में भी बोलते हैं कि नदी किनारे हैं, जहाँ भी जगह है वृक्ष लगाना जरूरी है, ऐसा करके बोलते हैं।
0: जी, क्योंकि अभी जो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि हमारे जीवन का सवाल इसमें खड़ा हो गया है, क्योंकि अगर हम लोग वृक्ष नहीं लगाएंगे, हमारे पास वन नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हमें, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जीवन संकट में पड़ जाएगा।
1: बिल्कुल मैडम,
0: तो बताइए रोहित कुमार जी, आज के कार्यक्रम में आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: और मोहम्मद रफी का गाया हुआ है आने से उसके आए बहार, बड़ी
0: जी,
1: मस्तानी है तो अलग ही।
0: तो रोहित कुमार जी आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। फोन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हाँ, मैं टेसुराम साहू बहुत मुमकिन में लगाए मैडम, ग्राम फागुन दास से।
0: जी, आपका इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: जी, धन्यवाद।
0: क्या करते हैं आप?
1: अब क्या है, अभी तो गारंटी का काम कर रहा है मैडम, तालाब गहरीकरण वाला।
0: अच्छा अच्छा
1: उसमें पानी भरेगा फिर बरसात में।
0: जी
1: जी जी, यही काम कर रहा है अभी, हफ्ता भर हो गया है।
0: हम्म,
1: फिलहाल अभी तालाब को दिन गहरीकरण करा है, उसी में अभी पानी पीने के लिए बैठे हैं, तो लगाए तो लग गए।
0: अच्छा, चलिए, अच्छा लगा आपका फोन लग गया। तो बताइए कि आज के कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: कविता सुनाओ का मैं दो तीन था।
0: कविता सुनाना चाहते हैं?
1: जी जी,
0: जरूर सुनाएं।
1: जान है तो जहान है, आकाशवाणी तो महान है, जल है तो कल है, आकाशवाणी तो अमर है, नींबू को काटा तो रुआसा आ गया, आकाशवाणी को सुना तो मजा आ गया, प्याज को काटा तो आंसू आ गया, आकाश ने सुना तो खुशहाली सा गया।
0: अरे वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया कविताएं हैं आप। जी,
1: हम तो सभी कार्यक्रम को सुनते हैं, सुबह से शाम तक से चिंतन वंदना चित्रपट संगीत है, हमारे हाथ है हमारे गोट है सुगम संगीत, सभी का लाभ लेते हैं और चौपाल भी सुनते हैं सुनाते हैं मैडम, हम उसी उसके द्वारा हमारा खेती भी होता है, तभी नूरी बोल लगाए मैडम 2 एकड़ में।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ जी जी, मुझे को बहुत खुशी लग रहा है।
0: मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि ये जान करके आप आकाशवाणी को इतना ज़्यादा सुनते हैं, हमसे इतने जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यक्रमों का लाभ उठा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो टेसुराम जी, बताइए कि अब आज के कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत सुनवा दें?
1: एक है, मैं दोस्त है मैडम लेना चाहूंगा मैं, जो मेरे संग में है मोहित राम साहू।
0: अच्छा,
1: राम साहू,
0: ठीक है।
1: तम्मा तम्मा ले ले वाला थानेदार का मिलेगा कमें।
0: तो टेसुराम साहू जी आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। फोन करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मोतीलाल भीमटे बोल रहा हूँ।
0: मोतीलाल भीमटे जी का इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप तो हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं।
1: जी जी, और मैं यह फोन बहुत दिनों बाद लगा रहा हूँ। अच्छा, मेरे को समय नहीं मिलता, अभी अवकाश चल रहा है हम लोगों का।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: तो रेडियो सुनना होता है और आपके कार्यक्रम को आनंद लेते हैं और समय मिल जाता है तो फोन भी लगा लेते हैं।
0: वाह वाह, तो बताइए कि करते क्या हैं आप?
1: मैं प्रधान पाठक हूँ, शासकीय प्राथमिक शाला।
0: अच्छा,
1: चितगुड़ा में मैं प्रधान पाठक हूँ
0: जी। तो मोतीलाल जी, बताइए कि आज के कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: हम आज के कार्यक्रम में चंदन की कसम के गीत है
0: जी,
1: चिमकी हुई ये घड़ियां फिर से न सिमट जाए, इसी को आप सुना दीजिए।

0: श्रोताओं, ये था आज का फोन इन फरमाइश। आपको कैसा लगा हमें अपने ईमेल्स और पत्रों द्वारा अवश्य बताइएगा। और अब आज के कार्यक्रम से दीजिए अनुमति अपनी दोस्त प्रवीणा त्रिपाठी को। नमस्कार।
1: फोन इन फरमाइश कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थी प्रवीणा त्रिपाठी। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने को हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में ही। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। डीजीसीए ने नई गाइडलाइन जारी की। अब एयरपोर्ट पर रेल बनाने पर

प्रतिबंध। प्रदेश के सभी डाकघरों में कल और परसों अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और मौसम विभाग ने प्रदेश के अनेक जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान लू चलने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने नियमों में सख्ती करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार अब हवाई यात्री एयरपोर्ट के सुरक्षा होल्ड एरिया पर रील बनाना पूरी तरह से बैन रहेगा। साथ ही हवाई जहाज के खड़े होने वाली जगह और बस से यात्रियों को विमान ले जाने तक वाले स्थान पर रुक रुक कर रील बनाने, फोटो या वीडियो बनाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल नई दिल्ली प्रवास पर रवाना हो गए हैं। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान वे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विकास और समन्वय से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी 7 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में देशभर के साथ छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ शासन को विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 2 महीने में पूरे करने के लिए निर्देश दिए हैं। एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि राज्य में 49,000 से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए करीब 4,000 विशेष शिक्षकों की जरूरत है। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि 848 स्वीकृत पदों में से 62 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 155 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और 85 विशेष शिक्षकों को स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होने का अवसर दिया जाए। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल द्वारा प्रदेश के सभी डाकघरों में कल और परसों यानी 25 और 26 मई को अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कोई भी नागरिक अपने नजदीकी डाकघर जाकर या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत एजेंटों के माध्यम से अल्प बचत योजनाएं जैसे मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि में निवेश कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव कार्यक्रम का आज ऐलान होगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, युवा कांग्रेस के प्रभारी अमित पठानिया सहित युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद सहित प्रदेश के 18 जिलों में 1-2 स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान गर्म हवा चलने और अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कल प्रदेश में सबसे अधिक 46 डिग्री सेल्सियस तापमान राजनांदगांव में दर्ज किया गया। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और आम लोगों को घबराकर अतिरिक्त खरीदी करने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। रायपुर पुलिस ने पंजाब से ड्रग की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 56 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। जांजगीर के करही गांव में करीब 1 महीने पहले हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और बलौदाबाजार भाटापारा जिले में जिला शिक्षा अधिकारी ने 2 सहायक शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। दोनों पर कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतने का आरोप है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। डीजीसीए ने नई गाइडलाइन जारी की, अब एयरपोर्ट पर रील बनाने पर प्रतिबंध। प्रदेश के सभी डाकघरों में कल और परसों अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और मौसम विभाग ने प्रदेश के अनेक जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान लू चलने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12 बजे हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार हैं जगजीत सिंह। पहले सुनिए नदीम परमार की रचना जगजीत सिंह की।

सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे जगजीत सिंह। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आप मन के गीत।

आप मन के गीत सुनैया जम्मो श्रोता संगवारी मनला राजकुमार के नमस्कार। संगवारी हो कार्यक्रम में पहले आपला सुनावतन झालाराम साहू और साथी मन के गाय ए गीत जेकर बर हमला फरमाइश भेजे हवे हमर ए श्रोता संगवारी मन। चरडोंगरी पिपरियाले दुर्गाराम साहू अजय कुमार साहू किशन जय कुमार कुमारी साहू इंद्राणी माया साहू। नर्मदा धाम सुरसुलीले कैलाश यादव सुरेश यादव डिकेन्द्र यादव योगेश यादव। कोरदाले कलीराम यादव छतराम शेषराम यादव। सांकरा भूमिया तिलदाले मनोज निषाद प्रतिभा निषाद पूर्वी खुशांत निषाद। रोहासीले डगेसा राम साहू घनश्याम साहू नूतन गौरव साहू। मोहाली चंडीगढ़ ले टी डी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा। कालका ले शुभचंद्र बजाज बिट्टा बजाज साहिल। भाटापारा ले नारायण यदु पुनिया यदु राकेश आरती यदु। भाटापारा ले मिलाउदास कुलदीप संतोष संदीप लक्की यश कुलदीप। अमली पदर देव भोगले निकुंज तिवारी लाची तिवारी ममता तिवारी। गेंदलाल मिश्रा चंद्रकांति मिश्रा अर्चना मिश्रा धनंजय मिश्रा धवलपुर गलिया बनले। तो आवो सुनो आप सबके फरमाइश भेजें एक गीतला।

कल्याण सिंह गायकवाड़ और किरण सोनवानी की आवाज़ में सुनथन ए गीत और ये गीत सुने भर फरमाइश भेजे हवाए हमारे श्रोता संगवारी मन। ग्राम चना गाँव ले कोमल शोरी गजानन नेताम जैनू राम शोरी नंदलाल मरकाम भागवत देवांगन पदुम देवांगन सुनैना पिंकी यश शीतल प्रियांश तन्वी नीता चंद्रवती युवराज सिंह रामजी देवांगन कोष्टापारा जुड़वा चौक सरंगपाल ले अरबरी खुर्द बटरेल दुर्ग ले चूरामन लाल वार्डे जैनी वार्डे विवेक कुमार वार्डे नेहा वार्डे भिलाई जामुल ले विकास वर्मा खुशी वर्मा ग्रंथ वर्मा संजय प्रधान पूजा प्रधान मन रामनगर रायपुर ले राजेश अंबादे शशिकला अंबादे पूजा अंबादे बठेना ले बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति वर्मा रेखा धनेश्वरी वर्मा चटौद सारागांव ले सुजान वर्मा सोहद्रा वर्मा आयुषी कृत वर्मा मन कोटा रायपुर ले अरुण वर्मा अनिल वर्मा ईश्वर वर्मा दिनेश सेन कोटा रायपुर ले योगिता वर्मा रुचि खुशी ओजल वर्मा देवरी भाटापारा ले गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्वनी वर्मा गणेश मिस्त्री भाटापारा ले राधेश्याम टेलर और जितेंद्र साहू मन।

संगवारी हो आप मन के गीत कार्यक्रम में अब आप मन ला सुनावत हन गोरेलाल भरवन और रतन सबिहा के गाए ए गीत जो ला सुने बर पाती औ ईमेल पठोय हवे हमार ए श्रोता संगवारी मन। महासमुंद ले भीषमदास मानिकपुरी साधुराम यादव रामकली यादव किरण यादव आशा यादव मंकू यादव संजय यादव डाली यादव। डोंगरगांव राजनांदगांव ले राष्ट्रपाल गजभिये राधिका गजभिये अनिष्का तन्मय गजभिये झूलेलाल चौक तिलदा ले हरीश कमल सेतपाल भूमिका सुशीला दादी। खैरागढ़ ले रविन्द्र अग्रवाल के एल यादव दरचूरा ले ददुआ साहू भूरी साहू रेखा मोतीलाल साहू पिपरिया ले कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता। शिक्षक नगर दुर्ग ले राकेश वर्मा सचिन वर्मा वाणी वर्मा। सिरमुंदा ले सूरज कुमार दामले हेमा दामले कांतिबाई दामले राजेंद्र कुमार दामले। रामानिया चौक भाटापारा ले मोहम्मद सलीम मोहम्मद नईम अबू मोहम्मद ताहिर। शंकर नगर दुर्ग ले मानिक सिंह बैस कावेरी नितिन बैस लल्ली लेखमणि बैस। बुड़गहन छत्तीसगढ़ ले राम दुलारी प्रजापति रामशरण चंद्रेश कुमार चंद्रकला शशिकांता प्रजापति। चार मीनार चौक गंडई पंडरिया ले दरियानामल अनीता मोटवानी राजेश रेशम अनिल राज मोटवानी। गर्रापार बांधा बाजार ले गंगाराम साहू सुलोचना साहू और राकेश साहू मन।

साधराम मरावी औ शैल बाला ध्रुव के आवाज में आवव सुनाने गीत औ ए गीत पर फरमाइश करे हवे हमारे श्रोता संगवारी मन। भर्री टोला डोंडी बालोद ले नमित कुमार गौतम पीहू प्रियंका नीतू मुरली गौतम। बंगला मटिया बालोद ले शिव कुमार अंगारे अंजनी अंगारे लीना त्र्यंबिका अंशुमाला आशुतोष अंगारे। हथनीपारा भाटापारा ले चौवाराम वर्मा मुकेश वर्मा दुलारी वर्मा दुर्गा दुर्गेश्वरी वर्मा। रिंगनी रिंगनी ले दिनेश वर्मा करुणा वर्मा। बेलरगांव ले मिथिलेश देवांगन मधु देवांगन हिमांशु अंकित देवांगन। शीतलानगर दुर्ग ले शिवचंद्राकर भगवान चंद्राकर। शांतिनगर भाटापारा ले रमजान खान सिकंदर असरफ खान अयाज अल्फेज खान हजीरुन निशा बिलहाले शेख नासिर महजबीन बानो। भाटापारा ले बचकामल मोतीलाल यादव डॉक्टर बसंत भृगु विनय ठाकुर सोनाडी ले सुब्रत चौधरी। इंदिरा नगर भंवरपुर ले राधेश्याम देवांगन चंपा देवांगन राजू जगदीश गोविंदा देवांगन विशाल पायल अक्षय कुमार। बिलाईगढ़ ले जगदीश देवांगन पुष्पांजलि जया जानवी तृप्तेश देवांगन। जवाहर नगर दुर्ग ले आर सी कामड़े वैभव विशाल विपुल कामड़े। पटपर डोंगरगढ़ ले राम गोपाल ध्रुव नरेंद्र कुमार कविता जयंती ध्रुव। तो अब आप सुनन आप सबके फरमाइश करेगे ए गीतला।

कार्यक्रम के आखिरी में अब सुनथन ए गीत जे लगाए हवे प्रहलाद सिंह कश्यप अउ संगवारी मन। अउ ए गीत भर पाती अउ ईमेल पठोए हवे हमारे श्रोता संगवारी मन। चूड़ी लाइन भाटापारा ले अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम, मोहम्मद साजिद। बाजार पारा बेमेतरा ले भरतलाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा, मुरली मनोहर पटेल। सिरी गाता पारा ले धनेश्वरी साहू, ओम प्रभा, बिंदेश्वरी, नागेश्वरी, चमेली, भूमिका, मोनिका, पूनम साहू मन। सिरी गाता पारले लावण्या साहू, उपासना, देवराज, ओम कुमार, पुष्पराज, प्रभुराम साहू। गंडई टिकरी पारले जगेश्वर देवांगन, कचरी देवांगन, दीपक कुमार, जयश्री देवांगन, ऋषभ, ऋचा देवांगन। महासमुंद ले सुभाष शर्मा, छाया शर्मा, कुमुदनी शर्मा, ओंकार शर्मा। धरसीवाले छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा यादव, अनुराधा, अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर ले छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव यादव, रानू, खुशी, प्रवीण साहू, सीएल यादव। गांव पनेका लिटीपुर ले सीमाबाई चंद्राकर, निर्मलाबाई, नंदनी चंद्राकर। बेरला सीमार ले जीवनलाल सिन्हा, निर्मलाबाई, देवेन कुमार, अंबा सिन्हा, सुधा सिन्हा।

0: छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आप मन के गीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1 बजने को है, समाचार दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद डॉ जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित

0: रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में उनकी चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वाड की बैठक शीघ्र होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 11वें दौर की मतगणना के बाद भाजपा के उम्मीदवार दिवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 44,891 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। श्री सिंह 32 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांसी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने शांसी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना, सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में अब तक 82 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज रेलवे लाइन पर हुए एक धमाके में 30 लोग मारे गए और कई घायल हुए। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले साल होना है। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहले सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। कयामत से कयामत तक इस फिल्म के इस गीत की धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

AIR at 90. चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए इंग्लिश बाबू देसी मेम फिल्म का गीत। योगेश की रचना है, निखिल विनय का संगीत है और आवाज है कुमार सानू और अलका याग्निक की।

जमीर काजमी का लिखा और अनु मलिक के संगीत से सजा गीत सुनिए अलका याग्निक और कुमार सानू के स्वर में। फिल्म का नाम है विजय पथ।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुने गुलाम फिल्म का गीत। समीर की रचना है, जतिन ललित का संगीत है और आवाज है कुमार सानू और अलका याग्निक की।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:25 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

आइए पहले आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। आज रात 8:15 पर होगा कार्यक्रम स्वर धरोहर। स्पोर्ट्स स्कैन रात 8:30 पर। रात 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10:00 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। इसमें आज रात आप सुनेंगे पंडित हरशंकर भट्टाचार्य से सितार वादन। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

होगा खुद को महत्व दें। वार्ता, समाज में महिलाओं की बदलती भूमिका। वार्ताकार होंगी मोनिका बागरेचा। इसके अलावा सुनिएगा युगल गीत।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट शाम 5 बजे, युवाओं का कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर। इसमें आजकल का विषय होगा आभार व्यक्त करना। क्रम राग नंदिनी में सुनिएगा राग धानी का परिचय और फिल्म गीत और पंडित जसराज के बारे में जानकारी। वाचन पायल विशाल का होगा, आलेख और संपादन वीरभान साहू का और प्रस्तुति सुमिता रॉय बर्मन की होगी। साथ ही सुनिएगा क्रम सवालों के आईने में और फिल्म संगीत।

जिले की चिट्ठी कार्यक्रम में शाम 6:05 पर सुनिएगा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की चिट्ठी, आलेख हरीश मांडवा का। कानून की बात, इस कार्यक्रम में आज शाम 6:30 पर सुनिएगा निशुल्क विधिक सहायता योजना, लोक अदालत, नए आपराधिक कानून में भरण पोषण के प्रावधान विषय पर असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री रविंद्र कुमार साव से जानकारी। प्रस्तुति आकाशवाणी रायगढ़ की होगी।

चौपाल कार्यक्रम में शाम 7:21 पर आज की बात सेहत बनावन मौसमी फल खावन विषय पर। आज की सलाह में सुनिएगा मछली पालन एवं प्रबंधन विषय पर मत्स्यिकी महाविद्यालय कवर्धा के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सोइबम नासुत्तर से जानकारी। इसके अलावा सुनिएगा गीत संगीत और कल के कार्यक्रम। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया।

बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इन पंक्तियों के साथ मैं हूँ आपकी सखी प्रीतम कौर। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोतमैनो, तपती गर्मी के बीच आप सभी के साथ वक्त सुकून भरा और राहत देने वाला बन जाता है। बहनों, इस बेहद गर्म मौसम में हमें अपना ख्याल खुद रखना है। गर्मी से बचाव के साथ अपनी सेहत का ध्यान भी हमें ही रखना है। और श्रोता बहनों, हम अक्सर सुनते हैं, दूसरों के लिए जियो,

परिवार सबसे पहले है, समाज की सेवा करो, यह बातें बिल्कुल सही है, लेकिन इन सब के बीच हम सबसे ज़रूरी इंसान को भूल जाते हैं, यानी खुद को। खुद को महत्व देना बहुत ज़रूरी है, और यह स्वार्थ नहीं बल्कि समझदारी है, क्योंकि अगर हम खुद शारीरिक और मानसिक रूप से टूटे हुए होंगे तो हम दूसरों का सहारा कैसे बनेंगे। खुद को महत्व देना, खुद को तराशना, दूसरों को नज़रअंदाज करना नहीं है बल्कि खुद को मजबूत और सशक्त बनाना है। कई बार हम खुद को भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और यह सोचते हैं कि यदि हमने खुद के लिए समय निकाला तो लोग हमें स्वार्थी कहेंगे। जिम्मेदारियों का बोझ, घर, नौकरी, रिश्ते, सबकी उम्मीदों को पूरा करते करते हम अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर देते हैं। अपराध बोध, खुद के लिए कुछ करने पर हमें लगता है हमने कहीं कोई गलती तो नहीं की। तो श्रोता बहनों, इन सब बातों को त्याग कर हमें अपने लिए समय निकालना है, अपने लिए जीना है और खुश रहना है। खुद को महत्व हम कैसे दें? ना कहना सीखे। जी हाँ श्रोता बहनों, हर बार हाँ कहना ज़रूरी नहीं होता। जब आप थकी हो तो आराम के लिए उन्हें ना कहें। खुद के लिए समय निकालें। दिन भर के 24 घंटे में कम से कम एक घंटा अपने लिए आप ज़रूर तय करें, जिसमें आप अपनी पसंद के कार्य करें, गीत सुने, नृत्य करें, किताबें पढ़ें, पेंटिंग करें, टहलें या फिर योग, जो कुछ आपको मन करे वो आप ज़रूर करें। और ख़ास तौर पर अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। समय पर खाना खाएं और कम से कम 7 घंटे की नींद अवश्य लें, और साथ में थोड़ा कसरत भी ज़रूर करें। और सबसे ख़ास, अपने सपनों को ज़िंदा रखें। उम्र कोई भी हो, सीखना बंद ना करें, चाहे वो डांस हो, पेंटिंग हो, संगीत हो, या फिर जो आपका मन करे वो आप ज़रूर कीजिए। खुश रहिए और अपने साथ आसपास के लोगों में भी खुशियां बांटते रहिए। आपके अंदर की खुशी आपको नया उत्साह देगी और आप सफलता की ओर आगे बढ़ती जाएंगी। और श्रोता बहनों, इन बातों के साथ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं युगल गीत, और इसका क्रम में हम सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म द ग्रेट गैम्बलर का गीत, आशा भोसले और किशोर कुमार की मधुर आवाज़ में। और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने। तेरे नाम से दिन गुजरे, तेरे नाम से शाम मेरी, लंबी उम्र जीने का नहीं सोचती हूँ मैं, बस एक पल तेरे साथ जीने की चाहत है मेरी।

0: इस मधुर गीत के बाद आइए सुनते हैं वार्ता, जिसका विषय है समाज में महिलाओं की बदलती भूमिका। वार्ताकार हैं श्रीमती मोनिका बागरेचा।
1: सभी सखियों को नमस्कार। बहनों, जैसा कि आप सभी जानती हैं, 21वीं सदी की नारी ने केवल घर की चार दीवारी के अंदर की दुनिया को ही नहीं सहेजा है, बल्कि उस दहलीज से बाहर निकलकर पूरे आसमान को अपनी मुट्ठी में समेटा है। यह बात भी सच है कि बदलाव एक दिन में नहीं आया है, अपितु कई दशकों की मेहनत के बाद इस पायदान तक हम पहुंच पाए हैं। हमें कृतज्ञ होना पड़ेगा अपनी नानी, दादी और माँ का, जिन्होंने कदम कदम पर हमारा साथ दिया है और इस बदलाव की नींव को अपने व्यक्तित्व से पल्लवित किया है, उसको पोषण दिया है। यह बदलाव केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि व्यापक सामाजिक क्रांति का उद्गम है। सखियों, जब हम समाज में महिलाओं की बदलती भूमिका की बात करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां भी हमारे सामने आती हैं, परंतु हमारी सखियों ने इन बाधाओं को अपनी कामयाबी का हिस्सा मानकर उनसे सीखकर पूरी दुनिया में अपनी सफलता का परचम लहराया है। मुश्किलें नहीं आएंगी तो सीखोगे कैसे, मुश्किलें नहीं आएंगी तो सीखोगे कैसे, और तपोगे नहीं तो हीरे सा चमकोगे कैसे, हीरे सा चमकोगे कैसे। बहनों, एक समय था जब पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ सीमित अवसर हमको मिलते थे। हम भी माँ की, पत्नी की, बहन की, बेटी की भूमिका में भी खुश रहते थे, क्योंकि उस चारदीवारी को ही हमने अपनी दुनिया मान लिया था। ठीक उस पंछी की तरह जो पिंजरे को ही अपना संसार मान लेता है और खुले आसमान में उड़ान के सुख से वंचित रह जाता है। आप भी मानते होंगे कि शिक्षा का क्षेत्र बहुत बड़ी क्रांति लेकर आया है हम महिलाओं के जीवन में। आपको पता है, श्रीमती सावित्रीबाई फुले भारत की पहली शिक्षिका थीं जिन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। क्या आपको लगता है यह काम आसानी से हो गया होगा? नहीं, जब बहन जी पढ़ाने जाती थीं तो लोग उन पर गोबर और पत्थर तक फेंकते थे, फिर भी उन्होंने

निडरता से शिक्षा की मशाल को जलाए रखा। आज उसी का परिणाम है कि हमारे लिए शिक्षा सहजता से उपलब्ध है। अबला अबला कहकर तुमने मुझे बहुत सताया है, अबला अबला कहकर तुमने मुझे बहुत सताया है, पर पढ़ लिख कर मैंने भी अब तेरा यह भ्रम ठुकराया है। एक नहीं, दो नहीं, अनेक ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अदम साहस और कठिन परिश्रम से ऐसे ऐसे क्षेत्रों में सफलता हासिल की है जहां सिर्फ पुरुषों का आधिपत्य था। आइए जानते हैं कुछ ऐसी प्रभावशाली महिलाओं के बारे में जिन्होंने साधारण परिस्थितियों में रहकर असाधारण काम किए हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। देश की प्रथम राष्ट्रपति माननीय प्रतिभा पाटिल जी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिनको लोह महिला आयरन लेडी ऑफ इंडिया की उपाधि से भी संबोधित किया जाता है। जानते हैं प्रथम आईपीएस अधिकारी श्रीमती किरण बेदी जी को, जो कि बहुत सारी लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई और उनकी राह पर चलते हुए आज भी बहुत सारी लड़कियां आईपीएस में अपनी जगह बनाती हैं। कल्पना चावला जी को कौन नहीं जानता, जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से तो सभी जानते हैं, पर सखियों क्या आपको पता है मिस टेसी थॉमस भारत की पहली महिला वैज्ञानिक थी जिनको मिसाइल वुमेन के नाम से संबोधित किया जाता है। हमारे बीच में हर क्षेत्र में अनेकों सफल महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया है और पुरुषों के साथ में या उनसे भी आगे निकलकर अपनी योग्यता को साबित किया है। योगिता रघुवंशी जी भारत की पहली महिला ट्रक ड्राइवर हैं जिन्होंने रूढ़ियों को तोड़कर एक मिसाल कायम की है और ट्रक ड्राइविंग के क्षेत्र में महिलाओं के लिए नया रास्ता भी बनाया है। सखियों, ऐसा नहीं है जो महिलाएं कामयाब होती हैं उनके जीवन में हर चीज आसान होती है। बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनको। परिवार में दोहरी जिम्मेदारियों का दायित्व निभाना पड़ता है। आज भी मध्यम वर्गीय परिवार में किसी भी महिला को अपनी रसोई का काम खुद ही करना पड़ता है, चाहे कितनी भी थक कर आई हो। इस दोहरी जिम्मेदारी के भार से कभी कभी चिड़चिड़ापन भी आ जाता है और घर के लोग समझते हैं कि वह गुस्सैल हो गई है। बहनों, आपके घर में भी ऐसा कुछ होता है तो आपस में बातचीत करके छोटी छोटी जिम्मेदारी परिवार के दूसरे सदस्यों में बांट दें ताकि आपको थोड़ी राहत मिल जाए। जब आप घर से बाहर निकलती हैं तो एक और चुनौती होती है आपकी अपनी सुरक्षा। आए दिन हमें समाचार पत्रों के माध्यम से, खबरों के माध्यम से अनहोनी सुनने को मिल ही जाती है। अपनी सखियों से यही अनुरोध करूंगी, गलत व्यवहार को कभी सहना नहीं, अपनी आत्मरक्षा के दो चार उपाय जरूर सीखना। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास बना रहेगा और डर आप पर हावी नहीं होगा। वो कहते हैं ना, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो भगवान भी आपकी सहायता करते हैं। कई बार परिस्थितियों से भागना भी बहुत अच्छा निर्णय होता है और आपके अंदर का साहस ही आपको बचाता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां और कैरियर चुनने का विकल्प हम महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, खास करके उस समय जब आपने बहुत मेहनत से अपने काम को आगे बढ़ाया है। सखियों, घबराना नहीं, ठंडे दिमाग से सोच समझ कर निर्णय लेना। अगर घर की आर्थिक स्थिति आपके ऊपर निर्भर है तो आप अपने काम को चुनना, अपनी सुविधा के अनुसार काम के समय को कम कर सकते हैं। घर से काम करने के विकल्प को चुन सकते हैं ताकि दोनों जिम्मेदारियों को बिना आत्मग्लानि के निभा सके। फिर भी आपको लगे कि आप सही निर्णय नहीं ले पा रही हैं तो किसी सलाहकार, काउंसलर से मिलकर अपना विकल्प चुनें। चूंकि आपके अंदर बहुत कुछ करने का जज्बा है तो बहुत सारे रास्ते आपको मिल जाएंगे, जो आपको ठीक लगे उसमें आगे बढ़िए। बहनों, यह तो आप सभी मानती होंगी कि शिक्षा ने हमारे अंदर वह विश्वास पैदा किया है कि हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। आर्थिक उन्नति ने हमारे जीवन की काया को पलट दिया है। अब हम सिर्फ उपभोक्ता नहीं, उत्पादक भी हैं। फलस्वरूप हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। छोटे छोटे काम को अपने घर से

0: चालू करके हमने बहुत बड़े ब्रांड तक पहुंचाया है और घर से काम करने के तो कई फायदे हैं। आत्मसंतुष्टि है कि हम भी पैसा कमा रहे हैं, बच्चों को समय दे पा रहे हैं, उनको अपनी आंखों के सामने बड़ा होता देख पा रहे हैं। वरना कॉरपोरेट जगत में तो कई ऐसी माँ भी हैं जो सिर्फ रविवार को ही अपने बच्चों से मिल पाती हैं, बाकी सारा दिन आयाबाई ही संभालती हैं। हर भूमिका से सबसे बड़ी होती है एक माँ की भूमिका, जो बच्चों के अंदर संस्कार डालती है, अच्छे बुरे का फर्क समझाती है, अनुशासन का पाठ पढ़ाती है। तभी तो कहते हैं कि बच्चों के व्यवहार में माता पिता की झलक दिखती है। अपनी सभी जिम्मेदारियों के साथ आर्थिक रूप से महिलाओं की समाज में भागीदारी बढ़ी है। घर, समाज, संस्थान में जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं, वह सब उनसे पूछ कर लिए जाते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। हम बहनें भी बहुत जवाबदारी के साथ बराबरी की भूमिका को निभा रहे हैं और संतुष्टि पा रहे हैं। यहाँ पर चार लाइनें मैं जरूर कहना चाहूँगी अपनी बहनों के लिए कि मेरे परिवार ने साथ देकर मेरा हौसला हर कदम बढ़ाया है, मेरे परिवार के साथ ने मेरा हौसला हर कदम बढ़ाया है, मेरी शिक्षा ने मुझे कॉरपोरेट जगत का हिस्सा बनाया है, मेरे जुनून ने मुझे सागर की गहराइयों में गोता लगवाया है, मेरी हिम्मत ने मुझे एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचाया है, हर क्षेत्र में हर हुनर में विकास की डगर में कामयाबी को अपना सहचर बनाया है।
1: सच है बहनों, आज महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना परचम फैलाया है, यह हमारे लिए गर्व का विषय है। बहनों, हमें अपने आप को कम नहीं आंकना है, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाकर समाज में बदलाव लाना है। समाज में महिलाओं की बदलती भूमिका, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे वार्ता। वार्ताकार थी श्रीमती मोनिका बागरेचा। और आइए फिर से चलते हैं युगल गीत की ओर और आपको सुनवाते हैं फिल्म दर्द का गीत। आशा भोसले और किशोर कुमार की मधुर आवाज़ में गीत लिखा है नक्श लॉयलपुरी ने और संगीतबद्ध किया है खयाम ने। कितनी अजीब है मेरे अंदर की तन्हाई, हजारों अपने हैं राह में, मगर याद तुम ही आते हो।

शरीफ बदमाश, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने। आंखों के सहारे तुम दिल में उतरने लगे, हर पल तेरे प्यार में हम सवरने लगे, ख्याल भी मीठे से आने लगे जब तुम मेरी नींद को चुराने लगे।

0: अंतिम गीत सुनते हैं सिलसिला फिल्म का, लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की आवाज़ में। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीतबद्ध किया है शिव हरी ने।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

श्रोता बहनों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अगली मुलाकात के वादे के साथ आपकी सखी प्रीतम कौर को दे इजाज़त। नमस्कार।

महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2 बजे हैं, आइए सुने चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहले सुनिए एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज में समीर का लिखा गीत। साजन फिल्म के इस गीत की धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: Akashwani at 90.
1: अभिजीत और अलका याग्निक के स्वर में सुनिए अनवर सागर का लिखा गीत। खिलाड़ी फिल्म के इस गीत की धुन बनाई है जतिन ललित ने।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए बरसात फिल्म का गीत। समीर की रचना है, नदीम श्रवण का संगीत है, आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका

0: के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
0: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ. जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
2: These would be the principles with which we would approach that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है। ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से

ने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करसियोंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करसियोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करसियोंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी।

0: होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानशी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले

0: मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच तीन बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के युकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल विनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो जमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। आइए सुने चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहले सुनिए दरार फिल्म का गीत। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें हैं। राहत इंदौरी की रचना है और संगीत अनु मलिक का है।

0: हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
1: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए
2: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को भीग गया कोई।
2: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादे।
2: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
2: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए पर पढ़ते फिर पढ़ के भुला जाते।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब थोड़ी ना बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: तो काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान में वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी माँ तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग माँ माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तेहा मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: इस संदेश के पहले आप सुन रहे थे दलाल फिल्म का गीत। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें थी, अनजान की रचना थी और संगीत बप्पी लहरी ने दिया था। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए बाजीगर फिल्म का गीत। गौहर कानपुरी की रचना है, धुन बनाई है अनु मलिक ने और आवाज विनोद राठौर की है।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए इंदिवर का लिखा और एमएम करीम के संगीत से सजा गीत अलका याग्निक और कुमार सानू के स्वरों में। फिल्म का नाम है क्रिमिनल।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी इस सभा के प्रसारण अब समाप्त होते हैं। सांध्यकालीन सभा के स्थानीय प्रसारणों के साथ शाम 5 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: महत्वपूर्ण बताया उन्होंने, कहा कि भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
2: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
1: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की

0: कीमतें कम रहें। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
1: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री चार दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में हो रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा शुल्क लिया गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। महिला वर्ग में अमेरिका की कोको गॉफ मौजूदा चैंपियन के रूप में हिस्सा ले रही हैं। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भामरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सिलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बिल्कुल, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं गीत फिल्म बातों बातों में से। इसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने, और गीत के बाद ठीक 3:30 से सुनिएगा प्रोग्राम रेडियो किड्स।

0: किया था वादा तो आ गए हम। प्रस्तुत है एपिसोड 2 और आइए चलते हैं आज के सफर रेडियो किड्स पर। शुरुआत करते हैं रोमांचक मनोरंजन की।
1: मैं वंश दलाल और मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त।
2: मैं काशवी आहूजा।
0: मैं आशना पुरी।
3: मैं शिवांश राय।
4: मैं रिद्या शाह।
5: मैं सौम्या सिंह।
6: मैं आराध्या शर्मा।
7: मैं नविता छेत्री।
8: मेरा नाम तुषार अत्री है।
9: मैं लक्षिता शर्मा।
10: मैं अनाया जैन।
11: मैं सौम्या।
12: मेरा नाम काविड शर्मा है।
13: मेरा नाम अयान जैन है।
14: मेरा नाम चिराग गुप्ता है।
15: मेरा नाम आर्यन कुमार है।
16: मेरा नाम अतिक्ष राजपूत है।
17: मेरा नाम खुशी शर्मा है।
18: मेरा नाम अव्युक्त अग्रवाल है।
19: मेरा नाम अंशपाल है।
2: आज हम आपको बताएंगे उस महान पल की कहानी जिसका नाम हम गर्व से अपने स्कूल के साथ जोड़ते हैं।
0: रिद्या, क्या तुम्हें पता है कि जिसे आज हम CRPF कहते हैं उसका जन्म आजादी से पहले ही हो गया था। 27 जुलाई 1939 को इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में निमंच में बनाया गया था।
15: सही कहा नव्यता। आजादी के बाद हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम दिया, यानी इस फोर्स की नींव में

0: प्रति एकता और अनुशासन का पत्थर लगा है।
1: दोस्तों, एक और अमेजिंग फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली ऑल वुमेन पैरामेडिकल बटालियन, महिला बटालियन भी सीआरपीएफ ने ही बनाई थी। 1986 में इसकी शुरुआत हुई और आज हमारी महिला अधिकारी पूरी दुनिया में शांति और संदेश दे रही हैं।
2: सिर्फ इतना ही नहीं, जब 2001 में हमारी संसद पर हमला हुआ था तब सीआरपीएफ की महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी जी ने अपनी जान पर खेलकर आतंकियों को रोका था। उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया।
3: वाकई सौम्या, हम ऐसे वीर जवानों की छत्र छाया में शिक्षा पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। चाहे वो लद्दाख की कड़ाके की ठंड हो या जंगलों की गर्मी, सीआरपीएफ जवान हमेशा तेज यशस्वी के मंत्र के साथ खड़े हैं।
4: बातें तो बहुत सारी हो गई, अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जिसे प्रस्तुत किया है हमारे स्कूल के सीआरपीएफ मेलोडियस कोर ग्रुप ने।

0: योगः कर्मसु कौशलम्। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कर्मों में निपुणता होना, चाहे होमवर्क हो, स्पीच हो, स्पोर्ट्स हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मस्ती। काम का साइज नहीं, काम की क्वालिटी मैटर करती है, यही हमारा मोटो है। हमें सिखाता है कंसिस्टेंसी डेली हैबिट से बनती है। क्यों अनाया?
1: हाँ, ऐसे ही हम CRPF स्कूल के छात्र ना ही केवल शौर्य और साहस से भरे हैं, बल्कि हम शौर्य और साहस को जगाना भी जानते हैं। तो अब हमारे अंदर के राम, हमारे अंदर के पुरुषार्थ को जगाने के लिए आ रहे हैं वंश।
2: सादर अभिवादन, मैं वंश दलाल। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी रचना लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो केवल शब्द नहीं बल्कि हर भारतीय की सोई हुई चेतना को झकझोर देने वाला शंखनाद है। आदरणीय आशुतोष राणा जी की लेखनी से निकली यह कविता हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति और संकल्प छिपा है। तो आइए इस वीर रस की धारा में डूबते हैं। हे भारत के राम जगो, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के।

माता तुम्हें पुकार रही, रण की भेरी बज रही। उठो मोहन द्रत्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के कनकन पहने हैं वो राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर जागो। रक्त के भक्त लाडलो जागो, सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा। और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी, और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। और कौरव शीश न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे। यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। छोटी वाला चाणक जागे, पुरुष महान जगे। और सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हठी हमीर जगे, जिसने झुकना कभी ना जाना। जागे पद्मनी का जौहर, जागे के सरिया बाना। देशभक्त का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना। और वह प्रताप का सिंह जगे, वो हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून साहजी का ताजा। मरने की हट्ठाना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपाण जगे। और दो दिन जिया शेर के माफिक, वो टीपू सुल्तान जगे। कलवाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे। जगे भगत सिंह की फांसी, और राजगुरु के प्राण जगे। और जिसकी छोटी सी लकुटी से संगी ने भी हार गई, कौन बापू? और जिसकी छोटी सी लकुटी से संगी ने भी हार गई। हिटलर को जीता वो फौजे, सात समुंदर पार गई। मानवता का प्राण जगे, और भारत का अभिमान जगे। उस लुट्टी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया। स्वयं कफन की गांठ बांध कर सातों भावर घूम गया। उस सुभाष की आन जगे, और उस सुभाष की शान जगे। ये भारत देश महान जगे, इस भारत की तान जगे। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अरे इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं हर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ।

0: अब तुम बताओ सौम्या, तुम क्या बताना चाहती हो?
1: मैं सौम्या और मेरी मित्र सौम्या सिंह फ्रॉम CRPF पब्लिक स्कूल आपको आज एक सफर पर लेके जा रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया।
2: बिल्कुल सही कहा। आज बात हो रही है एशिया के ज्योतिपुंज यानी महात्मा बुद्ध की।
1: दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा राजकुमार जिसके पास दुनिया के हर सुख सुविधा, महल, नौकर चाकर और सुख ऐश्वर्य, लेकिन फिर भी उसके मन में एक ही सवाल, दुनिया में दुख क्यों है?
2: और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सिद्धार्थ ने आधी रात को अपने परिवार और राजपाट को छोड़ दिया। सालों की तपस्या के बाद बिहार के गया में एक वट के पेड़ के नीचे उन्हें बोध प्राप्त हुआ और वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए।
1: बुद्ध ने हमें क्या सिखाया? उन्होंने कहा कि नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से जीता जा सकता है। उन्होंने मध्यम मार्ग की बात की, ना ही बहुत अधिक विलासिता और ना ही बहुत अधिक क्रूरता।
2: आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में बुद्ध की शिक्षाएं और भी जरूरी हो गई हैं। उन्होंने कहा था, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगर हमारा मन शांत हो तो हमारे चारों ओर की दुनिया भी शांत होगी।
1: दोस्तों, हम CRPF स्कूल के छात्र होने के नाते यह समझते हैं कि अनुशासन और शक्ति जरूरी है, लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि उस शक्ति का उपयोग शांति और करुणा के लिए होना चाहिए।
3: अब समय है एक शांतिमय और मन को सुकून देने वाली प्रस्तुति का। अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं CRPF पब्लिक स्कूल रोहिणी क्वायर, मधुर स्वरों में बुद्धम शरणम गच्छामी गीत के साथ।

0: दोस्तों, जब मंजिल बड़ी हो, साथ देने वाला कोई ना मिले, तो अक्सर हिम्मत जवाब दे जाती है। ऐसे में याद आता है रविंद्रनाथ जी का, ज्योति तुर दक्षिणी क्यों नाशे, तो वे अकला चलो रे।
1: क्या आप जानते हैं, यह गीत महात्मा गांधी के दिल के सबसे करीब था। साल 1947 के मुश्किल दौर में, जब चारों ओर अंधेरा था, तब गांधी जी ने इस गीत को अपना सहारा बनाया और अकेले चलने का साहस दिखाया।
2: दिलचस्प बात यह है कि इस गीत का संदेश आज भी उतना ही ताजा है, चाहे वो AR रहमान का म्यूजिक हो या आज के स्टार्टअप का संघर्ष। यह गीत हमें सिखाता है कि अगर आपका रास्ता सही हो तो भीड़ का इंतजार मत कीजिए। तो अगर आज आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं तो मुस्कुराइए, क्योंकि इतिहास अकेले चलने वाले ही रचते हैं। मैं हूँ रिद्या, चलते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि जोश हाई है।
3: ऐसे ही 8 जून 1936 को आकाशवाणी की शुरुआत हुई और फिर कोई भी सफर अकेला नहीं रहा।
4: अब एक और गीत सुनते हैं, एकला चालो, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं तुषार अत्री, खुशी शर्मा।

मैं वंश दलाल अब बात करूंगा भारत की आजादी पर। भारत की आजादी के लिए नरम दल के क्रांतिकारियों ने जहां अनशन सत्याग्रह असहयोग आंदोलन किए, वही गर्म दल ने अंग्रेजों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा रखा था। गर्म दल का नाम सुनते ही आंखों के सामने बिस्मिल, अशफाक, भगत सिंह और राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारियों का चेहरा आ जाता है और याद आता है ये गजल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमें लगता है कि ये शब्द महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखे थे, क्योंकि उन्होंने ही इसे फांसी के तख्त तक मशहूर किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका एक ऐसा सच है जो बहुत कम लोग जानते हैं? असल में ये गजल राम प्रसाद बिस्मिल ने नहीं लिखी थी। जी हाँ, आपने सही सुना, इस कालजयी गजल को साल 1921 में पटना के एक शायर बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। उनका असली नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। उन्होंने ये गजल उस वक्त के असहयोग आंदोलन के जोश में लिखी थी, जब राम प्रसाद बिस्मिल ने इसे काकोरी कांड के बाद जेल के सलाखों के पीछे और अदालत जाते समय गाया तो ये देश की धड़कन बन गई। अजीब इत्तेफाक देखिए, लिखने वाले का नाम भी बिस्मिल और अमर करने वाले का नाम भी बिस्मिल। तो अगली बार जब आप ये लाइन गुनगुनाएं तो पटना के उस शायर और वतन के उन मतवालों को जरूर याद कीजिएगा जिन्होंने शब्द को शोला बना दिया। बने रहिए हमारे।

एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं फिल्म कारवां से गीत आशा भोसले मोहम्मद रफी और साथियों के स्वरों में, और ठीक 4 बजे आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों को पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण है और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से एक है।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की

0: रूपरेखा तय करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। यह समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा शुल्क लिया गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। बोर्ड के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी गई है जाएगी। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन क्वांटम AI नाम की एक निवेश योजना को बढ़ावा दे रही हैं, जिसमें नागरिकों को 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश के बदले प्रति महीने 3,00,000 रुपए की आमदनी का वादा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वायरल वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से तैयार किया गया है। और खेलों में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 5 ओवर में 2 विकेट पर 39 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में कोलकाता में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio today held wide-ranging discussions in New Delhi. Both leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlining key areas of cooperation including trade, energy, mobility and regional security. Dr. Jaishankar said India and the U.S. share a comprehensive global strategic partnership with deep and broad-based cooperation. He also highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
3: Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India. We devoted some time to nuclear energy cooperation as well. The passage of the Shanti Act has opened up new possibilities.
2: In West Bengal, Bharatiya Janata Party candidate Dibangshu Pandya has secured a massive lead in 19th round of counting of votes for the repolling on Falta Assembly seat. Counting is underway at Diamond Harbour Women's University. Dibangshu Pandya of BJP was leading by 99,433 votes when the reports last came in. Shambhunath Kurmi of the Communist Party of India, Marxist, was in second position, followed by Abdul Razak Mola of Indian National Congress, while Jahangir Khan of the All India Trinamool Congress was in fourth position. The counting is being conducted across 14 tables and will span a total of 21 rounds of the Falta constituency. The government has advised all Indian citizens to avoid non-essential travel to the Democratic Republic of the Congo, Uganda and South Sudan until further notice in view of the evolving Ebola outbreak situation. It also directed Indian citizens currently residing

0: by 31st May 2026. Complete details and the prescribed format and the updates available on the Institute's website. Do refer to www.rims.edu.in. The Gujarat Vidyapeeth, founded by Mahatma Gandhi in 1920, has invited online applications for the post of a finance officer on a five-year tenure basis. The post carries pay level 14. The university is seeking experienced and institution-oriented professionals with strong administrative and financial management expertise. The printed application form must reach the registrar, Gujarat Vidyapeeth, Ashram Marg, Ahmedabad, by 29th May 2026. Detailed eligibility conditions, qualifications and application guidelines available on the university's website. Do refer to www.gujaratvidyapeeth.org. And now we have the employment news in Hindi.
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता। आइए कुछ जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संबलपुर, यूजीसी पात्रता मानदंड यूजीसी अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई 2018 के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों से बीबीए वाणिज्य, साइबर सुरक्षा, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास, उड़िया और राजनीति विज्ञान विभागों में सहायक प्रोफेसर के नियमित पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। पद है सहायक प्रोफेसर का, बीबीए विभाग है, यहाँ पर तीन रिक्ति है, वाणिज्य में तीन रिक्ति हैं, साइबर सुरक्षा में दो स्थान रिक्त हैं, अर्थशास्त्र में तीन स्थान रिक्त हैं, अंग्रेजी में तीन स्थान रिक्त हैं, इतिहास में तीन स्थान, उड़िया में तीन, राजनीति विज्ञान में तीन, कुल मिलाकर 23 रिक्तियां हैं। पूर्ण आवेदन आप ऑनलाइन भर सकते हैं। हार्ड कॉपी पोस्ट करने के लिए आपको हम पता बता दें, कुल सचिव ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय एट बड़सिंघारी पीओ गौशाला चौक संबलपुर, पिन संख्या 768024 ओडिशा, 22 जून 2026 5:30 बजे शाम तक पहुंच जाना चाहिए। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय खतरनाक पदार्थ प्रबंधन प्रभाग पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिसंकटमय पदार्थ प्रबंधन प्रभाग के 24/7 संकट नियंत्रण कक्ष में संविदा के आधार पर चार अनुसंधान सहयोगियों की नियुक्ति के लिए ये विज्ञापन है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के परिसंकटमय पदार्थ प्रबंधन प्रभाग के 24/7 संकट नियंत्रण कक्ष CCR में अनुसंधान सहयोगी के चार पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। चयनित अभ्यर्थियों को मंत्रालय के दिनांक 15 अप्रैल के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रति अनुसंधान सहयोगी को ₹40,000 प्रतिमाह समेकित मानदेय देय होगा। और इससे संबंधित जानकारी अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट विजिट कर लें www.moef.nic.in। आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो है इस विज्ञापन के प्रसारण के 21 दिनों के अंदर। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान शिक्षण एवं गैर शिक्षण पदों के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है। फैकल्टी पदों के लिए ये विज्ञापन है, एसोसिएट प्रोफेसर, इनके लिए SC ST NC OBC EWS PWBD इन सब के लिए विशेष भर्ती अभियान के लिए ये विज्ञापन है। सहायक प्रोफेसर के लिए भी नियमित और संविदा विजिटिंग के लिए भी विशेषज्ञता होनी चाहिए, उनके पास कॉरपोरेट फाइनेंस, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक थ्योरी, टाइम सीरीज इकोनॉमिक्स, साथ में ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन, राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर डिग्री होनी चाहिए। गैर शिक्षण की बात अगर करें तो पद का नाम हम आपको बता देते हैं, निदेशक के निजी सचिव पे लेवल 7 के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर रिक्ति है 1 और अधिकतम आयु सीमा है 35 वर्ष। मानव संसाधन अधिकारी पे लेवल 10 के अंतर्गत ये आते हैं और कुल रिक्ति यहाँ पर भी एक ही है, 40 वर्ष इसमें अधिकतम आयु सीमा है। शैक्षणिक एवं छात्र मामलों के अधिकारी पे लेवल 10 के अंतर्गत एक स्थान यहाँ पर रिक्त है, 40 वर्ष यहाँ अधिकतम आयु सीमा है। सहायक सिस्टम विश्लेषक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे लेवल 10 के अंतर्गत आते हैं, एक स्थान रिक्त है 40 वर्ष के लिए। सहायक प्रशासनिक अधिकारी मानव संसाधन एवं प्रशासन के लिए जो कि

0: लेवल 7 के अंतर्गत आते हैं। कुल रिक्तियां यहां पर भी एक है और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष। लेखा सहायक के लिए भी 35 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है, एक स्थान रिक्त है। और सहायक मानव संसाधन पे लेवल 6 के अंतर्गत आते हैं, एक स्थान रिक्त है, 35 वर्ष, इसमें अधिकतम आयु सीमा है। संविदा आधार पर प्रतिनियुक्ति आधार पर पद जो है उसकी जानकारी आपको दें, अनुसंधान अनुदान एवं परियोजना अधिकारी पे लेवल 10 के अंतर्गत आते हैं, कुल रिक्तियां हैं एक, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी छात्र एवं शैक्षणिक मामले के लिए पे लेवल 7 है और कुल रिक्तियां यहां पर एक है, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। प्लेसमेंट अधिकारी पे लेवल 7 के अंतर्गत आते हैं, कुल रिक्तियां एक है और 35 वर्ष यहां अधिकतम आयु सीमा है। सहायक विद्युत अभियंता पे लेवल 7 है, 35 वर्ष यहां अधिकतम आयु सीमा है। पुस्तकालय सहायक के लिए पे लेवल 4 है, कुल रिक्तियां एक है, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। आवेदन विंडो खुल चुका है, 8 जून 2026 तक अपने आवेदन दे देने हैं। संस्थान का वेबसाइट पर भी समस्त जानकारी अपलोडेड है, www.igidr.ac.in/careers पर जाएं और वहां से समस्त जानकारी आप ले सकते हैं। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही, कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो के घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संग के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी तन्वी खुराना। तन्वी, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार करिश्मा, गुड इवनिंग एंड अ वेरी हैप्पी संडे टू यू एंड ऑल आवर लिसनर्स। यू ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड लाइक करिश्मा मेंशन्ड, वी हैव अ लॉट इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ यू, बी इट अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच more, all these over the next 30 minutes. Let's begin our news magazine program with the news headlines first. India and the United States reaffirm strength of strategic partnership between the two countries. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls for early trade deal, stresses on diversified energy supplies for the country.
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार में से एक बताया।
2: बीजेपी कैंडिडेट दिबांशु पांडा सिक्योर्स मैसिव लीड इन वेस्ट बंगाल्स फलता असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी रीपोलिंग।
1: सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी।
2: 24 पीपल किल्ड इन अ ब्लास्ट नियर रेलवे ट्रैक इन क्वेटा इन पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस।
1: और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू।
2: And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about jaggery, India's traditional superfood sweetener. Jaggery, or as we lovingly call it, gud, has always held a special place in Indian homes, isn't it? A small piece of jaggery after a meal, or grandmothers adding it to winter laddus, and the aroma of gud melting into homemade sweets during Diwali or Holi or any other festive season. These are moments many Indians have grown up with.
1: बिल्कुल, और इसके साथ ही, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यह साधारण सा मीठा पदार्थ न केवल हमारी रसोई में बल्कि लाखों लोगों के जीवन में भी इतना

0: महत्वपूर्ण कैसे बन गया है, क्योंकि गुड़ सिर्फ एक पारंपरिक सामग्री से कहीं बढ़कर है। यह संस्कृति, आजीविका और दुनिया के साथ भारत के जुड़ाव की एक कहानी है। आज भारत दुनिया के 70% से ज्यादा गुड़ का उत्पादन करता है। जरा एक पल के लिए सोचिए इस बारे में कि दुनिया भर में बनने वाला कुल गुड़ में से ज्यादातर हिस्सा भारत के खेतों, भारत के किसानों और भारत के गांव से आता है।
1: एब्सोल्युटली, नियरली 2.5 मिलियन लाइवलीहुड्स इन इंडिया आर कनेक्टेड टू जैगरी प्रोडक्शन एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट एट अ टाइम व्हेन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड आर बिकमिंग मोर हेल्थ कॉन्शियस, मेनी आर स्लोली टर्निंग अवे फ्रॉम हेविली रिफाइंड शुगर एंड लुकिंग फॉर नेचुरल alternatives. And suddenly, jaggery, something Indian households have trusted for centuries, is gaining global attention.
0: बिल्कुल, और पिछले एक दशक में भारतीय गुड़ का निर्यात दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। अमेरिका, इंडोनेशिया, यूएई, नाइजीरिया और नेपाल जैसे देश भारतीय गुड़ का आयात बढ़ती मात्रा में कर रहे हैं। तो आखिर गुड़ में ऐसी क्या खासियत है, अब इसे भी समझना जरूरी है। रिफाइंड चीनी के विपरीत गुड़ बिना किसी भारी केमिकल प्रोसेसिंग के बनाया जाता है। गन्ने के रस को धीरे धीरे उबाला और गाढ़ा किया जाता है, जिससे इसमें मौजूद कई प्राकृतिक खनिज और सूक्ष्म पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं, और यही वजह है कि बहुत से लोग इसे औषधीय चीनी भी कहते हैं।
1: Absolutely true. In many Indian homes, gud was never seen as only a sweet treat. A child returning from school might receive it with roasted chana, while laborers often ate it during winter mornings for sustained energy. These customs reflected generations of practical wisdom and experience. And jaggery contains iron, potassium, magnesium, calcium and several micronutrients that are mostly lost when white sugar is heavily refined. In fact, iron-rich jaggery has been long used in many homes to help improve hemoglobin levels.
0: और तन्वी, शायद यही वजह है कि बचपन से भी हमने भी सुनी होगी और कई भारतीयों ने सुनी होगी कि खांसी हो तो गुड़ खा लो, ठंड में गुड़ अच्छा होता है। सदियों से आयुर्वेद गुड़ को पाचन, श्वसन संबंधी समस्याओं से राहत और शरीर की सफाई करने वाले गुड़ों से जोड़ता आया है। अब आधुनिक उपभोक्ता उस पारंपरिक ज्ञान को फिर से खोज रहे हैं जो पहले से ही ज्ञात था।
1: राइट, बट द स्टोरी ऑफ जैगरी बिकम्स इवन मोर फैसिनेटिंग व्हेन वी लुक एट इट्स रूट्स। डू यू know that the word sugar itself comes from the Sanskrit word sarkar. It's India's connection with sugarcane and jaggery goes back thousands of years all the way to the Vedic period. Historical accounts even mention that in 647 AD, a Chinese mission traveled to India to learn sugar processing techniques.
0: तो कई मायनों में हम कह सकते हैं कि गुड़ सिर्फ एक खाने की चीज नहीं है, यह भारत की सभ्यतागत यादों का एक हिस्सा है और आज यह पुरानी परंपरा एक आधुनिक ग्रामीण उद्यम का रूप ले रही है। तमिलनाडु के एक किसान मुरलीधरन का ही अगर उदाहरण ले लिया जाए तो आम गन्ने को बेचने की बजाय उन्होंने ऑर्गेनिक गुड़ का पाउडर बनाना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे इसकी मांग बढ़ने लगी और उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट आसपास के राज्यों और यहां तक कि विदेशी बाजारों तक पहुंचने लगा है। आखिर क्या बदला? वैल्यू एडिशन। उनका ऑर्गेनिक गुड़ अब आम गुड़ के मुकाबले कहीं ज्यादा ऊंचे दाम पर बिकता है, जिससे उनके परिवार, उनके साथ काम करने वालों के लिए कमाई के बेहतर मौके भी पैदा हो रहे हैं।
1: One thoughtful shift transformed a traditional activity into a profitable business. And this is exactly where government initiatives are stepping in. Schemes like Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana, Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme, and One District, One Product are helping strengthen food processing infrastructure, support small enterprises, and improve branding and also marketing. Thousands of jaggery-based micro food processing units have already received support. Because when rural products receive better technology, better packaging and better market access, entire local economies begin to grow.
0: और इसी कहानी का एक और भी खूबसूरत पहलू है तमिलनाडु के पोषण कार्यक्रमों में। बच्चों और परिवारों को दिए जाने वाले सप्लीमेंट फूड मिक्स में गुड़ भी शामिल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पोषण का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं होता, इसका मतलब है जिंदगी को पोषित करना। और कभी कभी पारंपरिक खाद्य पदार्थों में ठीक वैसे ही पोषण संबंधी समझ छिपी होती है, जिसे आज के आधुनिक सिस्टम फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

0: Day-long event featured stalls selling local vegetables, fruits, spices, wild honey, pickled bamboo shoots, millets and other locally sourced products.
1: मेघालय सरकार के कृषि विभाग के पूर्व निदेशक कैनिंग एस शाबोंग ने कहा कि किसान बाजार किसान मिशन की पहलों में से एक है। इसका उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना है, विशेष रूप से प्रत्यक्ष विपणन के क्षेत्र में। इसके माध्यम से किसान बिचौलियों को दरकिनार कर सकते हैं और इस तरह अपनी उपज का बेहतर हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। यह किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी ताजे कृषि उत्पाद उपलब्ध कराने में मदद करने वाला एक मंच है।
0: Farmers from Khasi Hills and Jaintia Hills also showcased their produce at the farmers market.
1: और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
0: In IPL cricket, Rajasthan Royals were 119 for 5 in 13 overs against hosts Mumbai Indians at Wankhede Stadium when the reports last came in. Earlier, Mumbai Indians won the toss and opted to bowl. In another fixture to be held later this evening, hosts Kolkata Knight Riders will face Delhi Capitals at Eden Gardens. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m.
1: और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
2: आज की कड़ी में हम महान क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी करतार सिंह सराभा को स्मरण कर रहे हैं। करतार सिंह का जन्म 24 मई 1896 को पंजाब के सराभा गांव में हुआ था।
3: केवल 19 वर्ष की उम्र में ही करतार सिंह को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। वो भगत सिंह सहित अनेक स्वाधीनता सेनानियों के लिए साहस और प्रेरणा के स्रोत बन गए थे।
2: करतार सिंह का गांव कई बार पड़े सूखे से तबाह हो गया था और बेहतर अवसरों की खोज में सराभा जुलाई 1912 में सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। वे बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में शिक्षा पूरी करना चाहते थे।
3: अमेरिका में विशेष रूप से उपनिवेशों के प्रवासी लोगों के साथ अमरीकियों की शत्रुता पर उन्हें बहुत क्रोध आया। कैलिफोर्निया में सराभा को उपनिवेश भूमि से आने वाले लोगों के अपमान का पूरा एहसास हुआ। उन्होंने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के बारे में आक्रोश प्रकट करना शुरू किया। 1913 में ओरेगॉन में गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर पार्टी का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़कर अपने लोगों की प्रतिष्ठा बहाल करना था।
2: गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। सराभा ने गदर पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। उन्होंने गदर अखबार के पंजाबी संस्करण की पहल की जिम्मेदारी संभाली और वहां रह रहे भारतीयों को जागरूक करने के लिए उसका प्रकाशन शुरू कर दिया।
3: जुलाई 1914 में यूरोप प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया तो गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे ब्रिटिश सत्ता पर आक्रमण का अवसर समझा। गदर पार्टी ने भारतीयों को संगठित करने की योजना बनाई। करतार सिंह गदर पार्टी के उन कार्यकर्ताओं में शामिल थे जो 1914 में भारत वापस आ गए।
2: भारत आते ही अंग्रेजों ने गदर पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इससे विचलित हुए बिना करतार सिंह और रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों ने पंजाब में छावनियों में घुसपैठ करके सैनिकों को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करना शुरू कर दिया। लेकिन गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं की विद्रोह की योजना पर अमल होने से पहले ही अंग्रेजों को भनक लग गई और करतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।
3: लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध इस मुकदमे के तहत लाहौर में कई सुनवाई हुई और पकड़े गए कार्यकर्ताओं पर विद्रोह में शामिल होने के आरोप लगाए गए। करतार सिंह सराभा ने अदालत में माफी नहीं मांगी और गर्व से कहा, अंग्रेजों के विरुद्ध अपने लोगों को एकजुट करना मेरा कर्तव्य है। उनकी अटल देशभक्ति ने जजों को बेहद नाराज कर दिया। 16 नवंबर 1915 को लाहौर सेंट्रल जेल में 19 वर्ष के सराभा और उनके साथी विष्णु गणेश पिंगले को फांसी दे दी गई।
2: करतार सिंह सराभा की बहादुरी, देशभक्ति के कार्य और भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्धता अतुलनीय है और उनका बलिदान आज भी सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी को भावभीनी श्रद्धांजलि।
0: एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट तपन चैटर्जी। इट इज हिज डेथ एनिवर्सरी। अ बंगाली

0: हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। और श्रोताओं, इसके साथ ही आज हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बिछेंद्री पाल का भी जन्मदिन मना रहे हैं। बिछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर इतिहास रच दिया था। इस उपलब्धि के साथ ही वे एवरेस्ट पर फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उनके सफलता ने देश की अनेक महिलाओं और युवाओं को साहसिक खेलों के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने कई पर्वतारोहण अभियानों का नेतृत्व भी किया और युवाओं को साहसिक गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण भी दिया। पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया।
1: And we are talking about today Bob Dylan. It's his birthday, and an American singer-songwriter described as one of the greatest songwriters of all time, Bob Dylan has been a major figure in popular culture over his 69-year career. With an estimated 125 million records sold worldwide, he's one of the best-selling musicians. He added increasingly sophisticated lyrical techniques to the folk music of the early 1960s, infusing it with the intellectualism of classical literature and also poetry. His lyrics incorporated political, social, and philosophical influences, defying pop music conventions and appealing to the bourgeois counterculture. So let's enjoy one of his classics titled Blowing in the Wind.

0: एग्जिस्ट।
1: और इसके साथ ही श्रोताओं, आज हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार राजेश रोशन का भी जन्मदिन है। वे हिंदी सिनेमा के जाने माने संगीतकार हैं। राजेश रोशन ने अपने संगीत करियर की शुरुआत फिल्म जूली से की थी, जिसके संगीत ने उन्हें खास पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने याराना, खून भरी बांग, करण अर्जुन, कोई मिल गया, कृष और कहो ना प्यार है जैसी अनेक सफल फिल्मों में संगीत दिया।

0: उनके संगीत की विशेषता मधुर धुने, भावपूर्ण गीत और आधुनिकता तथा भारतीय संगीत का सुंदर समन्वय रहा। उनके कई गीत आज भी संगीत प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं और हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। चला है आपसे अनुमति लेने का, तो हमें इजाजत दीजिए करिश्मा राय और तन्वी खुराना को। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: मीडियम व्यू 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज, वाड्रफ नगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनकपुर, टकिया, मेंढारी, करमडीहा, भगवानपुर, नवापारा, कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, जवाखाड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 20 है। ये पूर्णपा, घंघरी, सकालो, सरगवा, गुल्हाड़ी, पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मिर्गाडांड, मनोहरपुर, पंडरीपानी, डांडगांव, बरवाली, बरडांड, दांतीढाप, कंडराजा, बैगहवा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, तपकरा और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 35 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, रानी कोम्बो, कुंजारा, लोटापानी, मयूर चूंदी, बरटोली, खड़ामाचा, राजा आमा, झिमकी, चट्टान पारा, महुआडीह, खुटसेरा, पतेबहाल, झिक्की, खंताडांड, परसाडांड, पेटा, सामरबार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 137

0: ये गिरसा पोटिया आमगांव रुपुंगा तेजपुर बेहरामार बनहर औरानारा पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के एतमानगर जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कुदवारी सलिहाभाठा बांधापारा लालडी झुनकीडी जुनवानी कुकरी कादर डंगबोरा खड़पड़ी फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये बंगूरसिया नवागांव चक्रधरपुर जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ वनमंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी नवापारा सरायपाली गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के रवान और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये मुरुमडी गुड़ागढ़ फुरफुंदी दलदली तालाझर झालपानी कौहा बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़ अमलोर ताराजय डडई पानी बुडार सिंहार छिंदौला लूठापारा नारीपानी डूमरघाट कोदोमाली मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए हम आपको बताएं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष कार्यक्रम स्वर धरोहर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:15 पर। रात 8:30 पर होगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में रात 10 सुनिएगा पंडित हरशंकर भट्टाचार्य का सितार वादन। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। जिले की चिट्ठी में 6:05 पर आप सुनेंगे गौरेला पिंडरा मरवाही जिले की चिट्ठी कानून की बात। इस कार्यक्रम में 6:30 पर आप सुनेंगे निशुल्क विधिक सहायता योजना लोक अदालत नए आपराधिक कानून में भरण पोषण के प्रावधान। इस विषय पर असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल श्री रविंद्र कुमार साव से ली गई भेंट वार्ता। यह आकाशवाणी रायगढ़ की प्रस्तुति होगी। अब से कुछ देर बाद 5:10 पर कार्यक्रम युववाणी में आप सुनेंगे आजकल। विषय होगा आभार व्यक्त करना। राग नंदनी में आप सुनेंगे राग धानी का परिचय और संबंधित फिल्मी गीत। साथ ही सुनेंगे एक परिचय पंडित जसराज। आलेख और संपादन बीरभान साहू का। प्रस्तुति होगी सुमिता राय बर्मन की। इसके अलावा होगा क्रम सवालों के आईने में और फिल्म संगीत। सात बजकर 21 पर होगा कार्यक्रम चौपाल। इसमें आप सुनेंगे आज की बात सेहत बनावन मौसमी फल खावन। क्रम आज की सलाह में आप सुनेंगे मछली पालन एवं

बंधन विषय पर डॉक्टर सोयबम नासुत्तर द्वारा दी गई जानकारी। चित्रपट संगीत आप सुनेंगे 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर। और अब कल के प्रमुख कार्यक्रम। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार वितरण का सजीव प्रसारण आप सुनेंगे कल शाम 5 बजे। स्पोर्ट्स स्कैन, ये कार्यक्रम होगा कल रात 8:30 पर। कल रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। नमस्कार रायपुर, ये कार्यक्रम सुनिएगा रोज की तरह सुबह 7:05 पर। कल सुबह 8:30 पर साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम पल्लवी में आप सुनेंगे कहानी एक्वेरियम। कहानीकार होंगे श्रीमती मीना गुप्ता, साथ ही सुनेंगे श्रीमती शुचि लिखा का कविता पाठ। संपादक हैं प्रकाश उदय। कल सुबह 9 बजे कार्यक्रम विज्ञान लोक में आप सुनेंगे वार्ता जैव विविधता। वार्ताकार होंगी रेणु माहेश्वरी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवावाणी।

0: हौसलों की आग दिलों में जलाए रखते हैं, नई सोच से दुनिया सजाए रखते हैं। युवाओं की आवाज उनकी निशानी लेकर आए हैं हम कार्यक्रम युववाणी।
1: इस सुहानी सी शाम में आगाज करते हैं आज की युववाणी का। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त कैरल
0: और मैं काजल साहू। तो स्वीकार है हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी छोटी सी और खूबसूरत भावना की जो रिश्तों को और भी मजबूत बना देती है, आभार व्यक्त करना।
1: काजल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आजकल लोग धन्यवाद करना और सॉरी कहना बहुत कम कर चुके हैं?
0: बिल्कुल कैरल, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि छोटी छोटी भावनाओं को व्यक्त करना भूलते जा रहे हैं।
1: ये तो शत प्रतिशत सही बात है काजल।
0: दोस्तों, हम रोज किसी न किसी से मदद लेते हैं, घर में माँ से, स्कूल में शिक्षकों से, ऑफिस में सहकर्मियों से या रास्ते में किसी अनजान से, लेकिन कई बार हम धन्यवाद कहना जरूरी नहीं समझते। जबकि सच तो ये है कि एक छोटा सा शुक्रिया रिश्तों में मिठास घोल देता है और दिलों को जोड़ने का काम करता है।
1: बिल्कुल सही कहा, आभार व्यक्त करना केवल एक शब्द नहीं है बल्कि सामने वाले के प्रति सम्मान, अपनापन और प्रेम की भावना है। जब हम किसी को दिल से धन्यवाद कहते हैं तो उसे ये महसूस होता है कि उसकी मेहनत और सहयोग की कद्र की जा रही है।
0: बिल्कुल। दोस्तों, जरा सोचिए, हमारे माता पिता दिन रात हमारी खुशियों के लिए मेहनत करते हैं, वे अपनी जरूरतों से पहले हमारी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, गुरु हमें शिक्षा देकर सही रास्ता दिखाते हैं और दोस्त

0: मुश्किल समय में हमारा साथ निभाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी खुलकर उन्हें धन्यवाद कहा है? क्या हमने कभी अपने माता पिता से कहा कि आप हमारे लिए इतना करते हैं, उसके लिए धन्यवाद?
1: और कई बार तो हम ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि उन्हें तो पता ही है कि हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हर इंसान अपने प्रयास की सराहना सुनना चाहता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, एक प्यारा सा धन्यवाद किसी के मन की थकान मिटा सकता है और उसे कई नई खुशियां दे सकता है। एक छोटा सा धन्यवाद किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है और उसका पूरा दिन बना सकता है। दोस्तों, मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है। एक बार एक बच्चा स्कूल से घर लौटा और अपनी माँ से बोला कि माँ, आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, धन्यवाद। उसकी माँ कुछ पल के लिए मुस्कुराई और फिर भावुक हो गई, क्योंकि शायद पहली बार किसी ने उसके रोज के प्रयास को इतने प्यार से महसूस किया था।
1: वाह काजल, मुझे यकीन है कि उस माँ को बहुत खुशी हुई होगी। सच में कई बार हम अपनों के काम को इतना सामान्य मान लेते हैं कि उनकी मेहनत हमें दिखाई ही नहीं देती, लेकिन जब हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो उन्हें सम्मान और अपनापन महसूस होता है।
0: बिल्कुल कैरल, दोस्तों आभार केवल लोगों के लिए नहीं होता, बल्कि प्रकृति के प्रति भी हमें होना चाहिए। ये धरती, ये पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ और ये शुद्ध हवा, ये सभी हमें जीवन देती है। यही प्रकृति ना हो तो हमारा अस्तित्व भी संभव नहीं है।
1: बिल्कुल सही कहा काजल, हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। जल बचाना, पेड़ लगाना और सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण की रक्षा करना, यही हमारा सच्चा आभार है, क्योंकि केवल शब्दों से नहीं अच्छे कार्यों से भी आभार व्यक्त किया जा सकता है।
0: बिल्कुल साथियों, वैज्ञानिकों का भी ये मानना है कि जो लोग कृतज्ञ रहते हैं वे अधिक खुश, शांत और सकारात्मक होते हैं, उनके रिश्ते बेहतर होते हैं और जीवन के प्रति उनका नजरिया भी सुंदर बन जाता है, क्योंकि आभार व्यक्त करने से मन में संतोष आता है और रिश्ते मजबूत बनते हैं।
1: तो दोस्तों, आज से हम एक छोटी सी आदत अपनाएंगे। हर उस व्यक्ति को धन्यवाद कहिए जिसने हमारे जीवन में थोड़ा सा भी योगदान दिया है, चाहे वो कोई भी हो।
0: साथियों याद रखिए, धन्यवाद कहना छोटा हो सकता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। एक सच्चा आभार दिलों के बीच की दूरियां कम कर देता है।
2: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य, भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: जब सुरों में खुल जाए भावों की रवानी, तब जन्म लेती है संगीत की कहानी।
0: सुरों की मिठास और संगीत की मधुर कहानी लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम राग नंदनी। आज होगी चर्चा राग धानी की। वाचन स्वर है पायल विशाल का, आलेख और संपादन है बीरभान साहू का, और प्रस्तुत करता है सुमिता रॉय बर्मन।

कोई भी संगीत सीखने के लिए गुरु परंपरा ही सर्वोत्तम है, चाहे वो कंठ संगीत हो या वाद्य संगीत। गुरु के साथ रहकर उनकी सेवा करके एवं गुरुकुल संस्कृति और परंपरा का निर्वाह करते हुए संगीत सीखना चाहिए, यही आदर्श तरीका रहा है और है भी। संगीत सीखने की इच्छा रखने वालों के लिए पंडित राजन साजन मिश्र जी की इस संदेश के साथ राग नंदनी के इस अंक में आप सुधीजनों का स्वागत करते हैं। नमस्कार। आज हमने चर्चा का विषय लिया है राग धानी का और सुनवाएंगे इस राग पर तैयार कुछ फिल्मी गीत। साथ ही परिचय प्राप्त करेंगे स्वर साधक पंडित जसराज जी का। आइए सबसे पहले चर्चा करें राग धानी के विषय में। राग चंद्रिका सार में राग धानी का काव्यात्मक परिचय इस प्रकार दिया गया है। वादी गा संवादिनी गनी सुर कोमल जान रिध वर्जित कर गाइये और डुव धानी मान।

रागधानी काफी अंग का राग है। इस राग में गांधार तथा निषाद स्वर कोमल प्रयोग होते हैं। ऋषभ तथा धैवत स्वर वर्जित होने के कारण रागधानी की जाति ऑडुव ऑडुव है। संगीत पारिजात ग्रंथ में इस राग को ऑडुव धनाश्री तथा अन्य ग्रंथों में शाडव धनाश्री लिखा गया है। प्रचार में धनाश्री राग से अलग करने के लिए विद्वानों ने इस राग का नाम धानी रख लिया है। राग धानी एक चंचल प्रकृति का राग है जिसमें ख्याल और अति विलंबित रचनाएं नहीं गाई जाती। इस राग में चपलता है, इसीलिए इसे मध्य लय अथवा द्रुत लय की श्रृंगारिक अथवा भक्ति रस की बंदिशें ही अधिक उपयुक्त लगती है। इस राग को शुद्र राग की श्रेणी में रखा गया है। इस राग में कोमल गांधार एक अत्यंत प्रभावशाली तथा न्यास का स्वर है जिसको केंद्र में रखकर इस राग को सजाया जाता है। चर्चा और आगे करेंगे, इससे पहले आइए सुनते हैं राग धानी पर तैयार फिल्म नवरंग का यह

ये थे फिल्म नवरंग का यह प्यारा सा गीत। राग धानी में गांधार व निषाद स्वर कोमल तथा शेष स्वर शुद्ध लगते हैं। षडज, मध्यम और पंचम स्वर कुछ दुर्बल लगते हैं, इसीलिए इसकी प्रकृति स्थिर नहीं कही जा सकती। राग धानी में वादी स्वर गांधार और संवादी स्वर निषाद हैं। तो ही धानी कहो समझाए सखी, ऑडो सम्मत धनाश्री सखी, खरहर प्रिया अहो बल कहे, सुंदर गानिश रहित धरी मान सखी। राग धानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक पेंटाटोनिक राग है। ये एक तेज तरार राग है जिसे अक्सर भीम पलासी के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें ध और रे के नोट नहीं होते हैं। कुछ लोग इसे मालकौस का रोमानी संस्करण भी कहते हैं। सिवाय इसके आरोह व अवरोह में कोमल धा को पा में बदल दिया गया है। चर्चा को आगे विस्तार दें इससे पहले आपको एक और प्यारा सा गीत सुनवाते हैं।

अभी आपने सुना फिल्म चितचोर का यह प्यारा सा गीत। रागधानी का गायन वादन का समय सर्वकालिक होता है, पर प्रायः इसे फसल काटने के समय ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ये राग गुजरात प्रांत के गीतों में बहुतायत में प्रयोग करते देखा जा सकता है। हिंदी सिनेमा के गीतों में रागधानी बहुत लोकप्रिय राग है। इस राग पर तैयार गीतों की चर्चा करें तो फिल्म मेरे जीवन साथी के गीत ओ मेरे दिल के चैन, फिल्म अनुपमा के गीत कुछ दिल ने कहा, फिल्म हम दोनों के प्रिय भजन अल्लाह तेरो नाम, फिल्म प्रिंस के गीत बदन पे सितारे लपेटे हुए आदि प्रमुख हैं। आइए सुनते हैं फिल्म फकीरा का यह प्यारा सा गीत।

ये तो था रागधानी का संक्षिप्त परिचय। और आइए अब परिचय प्राप्त करते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक महान स्वर साधक, जिन्हें भावपूर्ण गायकी का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, पंडित जसराज जी के संबंध में।

पंडित जसराज जिनके गायन में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो श्रोताओं को भाव विभोर कर देती है। उनके आलाप से श्रोता जैसे स्वर समाधि में चले जाते हैं, उन्हें आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। 20 जनवरी 1930 को हिसार हरियाणा में जन्मे पंडित जसराज के पिता पंडित मोतीराम कश्मीर राज दरबार में राज गायक थे। जसराज जी अपने बड़े भाई पंडित मणिराम और पंडित प्रताप नारायण से गायन और तबले की शिक्षा ली। एक महान गायक होने के साथ पंडित जसराज तबला वादन में भी पारंगत थे। मूल रूप से मेवाती घराने के गायक होने के साथ आप पर ग्वालियर, पटियाला और इंदौर घराने की छाप भी पंडित जी के गायन में दिखाई पड़ती है।

शास्त्रीय रागों, वल्लभ संप्रदाय के लीला गीतों और गीत गोविंद के पदों के गायन में पंडित जसराज जी की भावपूर्ण गायन शैली श्रोताओं को मुग्ध कर देती है। रागों की शुद्धता के साथ साथ राग और शब्दों में निहित भावों की अभिव्यक्ति इनके गायन की विशेषता है। पंडित जसराज भक्ति गीतों पर आधारित हवेली संगीत के अन्यतम संवाहक है, इसीलिए इनके गायन में भैरव, विहाग, सुघराई, सौरठ, मल्हार, नट, पूर्वी, भीमपलासी, घनाश्री तथा मानव जैसे रागों को प्राथमिकता दी जाती है। 1952 में महाराजा त्रिभुवन वीर विक्रम के समक्ष नेपाल में अपना प्रथम सार्वजनिक कार्यक्रम आरंभ करने के पश्चात जीवन भर देश विदेश में संगीत सेवा करने वाले महान पंडित जसराज जी को स्वामी हरिदास संगीत रत्न, हरियाणा सरकार द्वारा संगीत मारतंड, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे सम्मान से नवाजे गए। गायन को सर्वोत्तम ऊंचाई तक पहुंचाने वाले ये महान स्वर साधक पंडित जसराज 17 अगस्त 2020 को इस नश्वर शरीर को त्याग कर परम ब्रह्म में विलीन हो गए।

एक अच्छा कलाकार बनने के लिए संवेदना, समर्पण, स्मरण और अच्छी सूझबूझ बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, संगीत से सच्चा प्यार और नियमित कठोर साधना भी आवश्यक है। संगीत साधकों का मार्गदर्शन करता पंडित जसराज जी के इस प्रेरणादायक संदेश के साथ अब अनुमति दे। वाचन पायल विशाल, आलेख एवं संपादन बीरभान साहू, प्रस्तुति सुमिता रॉय बर्मन।

0: था पायल विशाल का, आलेख और संपादन बीरभान साहू का और प्रस्तुतकर्ता थी सुमिता रॉय बर्मन।
1: साथियों, आज है रविवार और केरल आज क्या खास होता है?
0: मुझे बहुत अच्छे से पता है काजल, आज क्या है? चलो चलो चलो जल्दी बताओ, आज पक्का से कोई नया क्रम आने वाला है ना?
1: बिल्कुल आने वाला है, लेकिन क्रम से पहले एक विज्ञापन के लिए रुकते हैं।
2: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
3: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
3: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
3: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
4: 10वीं या BSc पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
1: तो कैरल, पता है आज क्या खास क्रम है? बता दूं?
0: बताओ बताओ।
1: आज है क्रम सवालों के आईने में और आज हम देने वाले हैं अंक 101 के पूछे गए सवालों के जवाब। तो हमारा पहला प्रश्न था, वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, जिसका सही उत्तर है गोदावरी नदी।
0: दूसरा प्रश्न है, एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है, जिसका जवाब है चेस।
1: और हमारा तीसरा प्रश्न था, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया।
0: चौथा प्रश्न था, भारतीय संगीत का मूल किस वेद को माना जाता है, जवाब है सामवेद।
1: और हमारा पांचवा और आखिरी प्रश्न था, सत्यमेव जयते कहां से लिखा गया है, जिसका सही जवाब है मुंडक उपनिषद। तो आइए साथियों, अब जान लेते हैं पांच सही सवाल के जवाब देने वाले श्रोता साथियों के नाम। अमगढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी तुषारणी, कुमेंद्र मसिया, मोतीलाल भीमटे, सुशील मेघा, नेहा यशु भीमटे, यह है खैरागढ़ छुई खदान से। सौंगा मगरलोड से फणेश्वर, सावित्री, मोहित, देविका, गजेंद्र, हेयांश, चंदन, चिरमरी से इंद्रभान, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण, दिनेश, कालिंद्री, लहरे, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल, राधिका, बेबी अंशिका और तन्मय गजभिये, पोटियाकला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता, शशांक, सीमा, पथरिया भरेवा से चंदुलाल, नारायणी, नोमेश, नेहा और वानिया सिंगरौल, कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीना, विनय, शंकर, नयन, शोमांशु पांडे, हजन नंबर दो से कमलेश, जितेंद्र, दिलीप, प्रवीण, पायल, लक्षी, गीतांजलि, आकांक्षा, पार्वती, टिकेश्वरी, नागेश्वरी, लक्ष्मी, तुलसाराम साहू, चरडोंगरी पिपरिया कबीरधाम से दुर्गाराम, अजय, जय, किशन, कुम्हारी, कुमारी, इंद्राणी, माया साहू, नांदघाट से माखन चंद्रानी, राहुल, गोपी, भूपेश, दीपेश वर्मा,
0: कोका भिलाई से उत्तम सिंह, जंघेल, मोरस, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल, नंदिनी जंघेल, बालामुड़ा कोमा खान से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी, प्रकाश, गायत्री, यशवर्धन, यशस्वी देवांगन, इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस, गंगा देवी विश्वकर्मा, गुड़ारात से मनोज साहू, श्रीमती चित्रेखा साहू, देवेंद्र, लवीना, चंचल, वासनी और गरिमा साहू, देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री, बाजार वार्ड महासमुंद से भीष्मदास, नर्मदा, हिरमनी, दीपक, लक्ष्यदास, खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से मेघा भीमटे, नेहा येशु भीमटे, सुशील मोतीलाल, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी, विपुल कामड़े, पाहरा हिवारा से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति अयु, छाया बंछोर, वाघामुड़ा कोमा खान से प्रज्ञा नंदीवांगन, नंदी देवांगन, प्रज्ञा देवांगन, गायत्री, यशवर्धन, यशस्वी देवांगन,
1: बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, बिलाईगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल देवांगन, महासमुंद से भीष्मदास, नर्मदा, पलारी से नितेश, दुर्गा, लखनलाल, ईशान, तनुजा, सावित्री बाई देवांगन, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश,

0: साहू, सिमगा से रमेश, माया, रिंकू, सनी, कमल यादव, कबीरधाम से दुर्गा साहू, अजय कुमार, जयकिशन, कुमारी, इंद्राणी, माया साहू।
1: बंगाल मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारी, अंजनी, त्रयंबिका, लीना, अंशु माला, आशुतोष अंगारे। बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, कमलकांत वीरेंद्र रिजकांत सारथी। भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चेवाराम वर्मा, अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम। देवरी भाटापारा से मुकेश कुमार रजक, युवान, काव्या, तन्नु, टानिया, नित्या रजक। ग्राम गोंदा टोला बाजार चौक से बीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि गुप्ता, योगिता गजेंद्र। सालहे भाटा महासमुंद से जीतू ध्रुव, केवल, किरण, दिव्यांशी, खेमू ध्रुव। खमार मुड़ा से सतीश गिरी गोस्वामी, श्रेयांश गिरी, शिवाय गिरी, एकांशी गोस्वामी। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, जीत वर्मा। भीमखोज तरपोंगी से संतोष गुप्ता, हितेश, होमेश, लक्ष्मी, प्रतिभा, शीतल गुप्ता। आवरा डबरी से श्यामलाल साहू, मोंगरा, संगीता, केशरी, चिंकी साहू। बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजलि, नीरा, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र, मोघा वर्मा। बागबहारा भदरसी से पन्ना लाल सेन, खुशबू, तारा, कौशल सेन।
0: लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी। कवर्धा से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद, पूर्णेंद्र, साहिल चंद्राकर। दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, मोखेलाल वर्मा। नरगोड़ छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी, मीनाक्षी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल गोस्वामी। रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश करुणा वर्मा। कर्मा चौक कवर्धा से अशोक कुमार, लीलेश्वरी, खुशांत, निशांत साहू। कुमरदा गांव से ताराचंद, ओम, माही, धामेंद्र साहू। भड़गा कोदवा गुड़ान से श्याम सिंह मरावी, राजकुमारी, रानी रजनी, राहुल, पूजा मरावी। भंगी टोला कुई ग्राम भंगी टोला से ननका राम धुर्वे, जमुनाबाई, फीरत राम, मालती धुर्वे। डोंडी लोहारा से डोमन नेताम, गंगेश्वरी, चंचल, कामेश, माहिर नेताम। गंडई पारा टिकरी पारा से जागेश्वर कचरी, दीपक, जयश्री, ऋषभ, रिचा देवांगन। खलारी भीमखोद से जीएल साहू, सरोज, छोटी, पिंकी साहू। मुंगेली से दीपेश, पूनम, ज्योति, शिवांशी वर्मा। चचेड़ी छत्तीसगढ़ से शंकर कोलाम, संतोषी, संजय, संध्या, शिवम कोलाम। सहसपुर कवर्धा से गुनाराम राजपूत, संतोषी, हेमप्रभा, पुष्पराज, सूरज राजपूत। अमलीडी से संतोष राजपूत, हेमप्रभा पूर्वी, गौरव कवर्धा छत्तीसगढ़ से।
1: साथियों, चार सही जवाब देने वाले श्रोताओं के नाम कुछ इस प्रकार हैं। अंडार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश, दीपेश वर्मा। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से चन्नूलाल यादव, पुष्पलता, अर्पिता, अभिनव, बलदाऊ, राजेश्वरी, आस्था, अनुराग, अभिषेक, डुगू, कान्हा यादव। फुलझर घटारानी से योगेश्वर साहू, डोमेश्वरी, यामिनी, मुस्कान, हर्षिता साहू। मोहला मानपुर से महेश कुमार निषाद, रंभा रानी, निखिल नैतिक, कुमारी पुष्पांजलि, स्वप्निल कुमार निषाद।
0: तो ये थे सही सभी श्रोता साथियों के नाम जिन्होंने सही जवाब लिखकर हमें भेजे हैं। आइए अब जान लेते हैं अंक 102 के सवालों के बारे में। अंक 102 का पहला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? सवाल एक बार फिर से सुनिए,
1: भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं?
0: हमारा अगला सवाल है, कौन सा पौधा मेंढक और कीटों को फंसाकर खाता है?
1: साथियों, कौन सा पौधा मेंढक और कीटों को फंसाकर खाता है?
0: हमारा अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है?
1: जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है?
0: हमारा अगला सवाल है, रात्रि अंधकार यानी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है?
1: दोबारा से सुनिए, रात्रि अंधकार यानी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है?
0: हमारा अगला सवाल है, ओलंपिक्स खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है?
1: ओलंपिक्स खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है?
0: हमारा आखिरी सवाल, कंप्यूटर भाषा में www का

0: क्या अर्थ है?
1: कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है?
0: साथियों, सही जवाब लिखकर आप हमें जरूर भेजिए। अंक 102 के सवाल ये थे और जवाब लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है आकाशवाणी रायपुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, युवाणी अनुभाग, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी रायपुर, और हमारा पिन कोड है 492001। इसी के साथ साथियों, आप हमारा ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है airyouth9@gmail.com। साथियों, ईमेल एड्रेस एक बार फिर नोट कर लीजिए। हमारा पता है ईमेल का airyouth9@gmail.com। साथियों, इसी के साथ आप सब्जेक्ट बॉक्स में सब्जेक्ट कोड Y1 लिखना ना भूले। क्रम सवालों के आईने में यहीं तक।
1: संगीत की दुनिया में कुछ धुनें ऐसी होती हैं जो सीधे दिल को छू जाती हैं और मन के हर एहसास को जगा देती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा कैरल। प्यार, जज्बात और रूहानी एहसास से भरी एक ऐसी ही मधुर प्रस्तुति अब हम आपके लिए लेकर आए हैं।
1: तो आइए खो जाएं सुरों की इस खूबसूरत दुनिया में और महसूस करें दिल को छू जाने वाले एहसासों को।
2: कभी उसे नूर नूर कहता हूँ,
3: कभी मैं हूर हूर कहता हूँ।

0: साथियों, वक्त का इशारा हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले जान लेते हैं कल के कार्यक्रम। कल की युवाणी होगी हिंदी में, जिसमें आप सुनेंगे क्रम हेलो युवाणी और दृष्टिकोण। तो साथियों, आपसे विदा लेने का समय हो चला है। आपकी रेडियो दोस्त काजल
1: और कैरल पांडे का
0: स्वीकार करिए इजाजत और स्वीकारे हमारा नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, आइए समाचार सुने।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक मतों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता में मतदान में धांधली होने के बाद इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। यहाँ इस महीने की 21 तारीख को मतदान कराया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 33 वर्षीय त्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप

0: टकराया है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के साथ 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की चेतावनी दी है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। और खेलों में मुंबई में IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने तीसरे ओवर में 2 विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। वहीं कोलकाता में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। लीजिए सुनिए गौरेला पिंडरा मरवाही जिले की चिट्ठी। आलेख हरीश मांडवा का है।
3: श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं गौरेला पिंडरा मरवाही जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में डायल 112 सेवा के तहत 7 अत्याधुनिक इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल और 2 हाईवे पेट्रोलिंग वाहन प्रदान किए गए हैं। पिछले दिनों पिंडरा स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मरवाही विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची ने हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया। इस अवसर पर श्री मरपच्ची ने बताया कि डायल 112 सेवा से जिलेवासियों को किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता मिल सकेगी। वहीं पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खिलारी ने बताया कि डायल 112 सेवा पहले राज्य के 16 जिलों में संचालित थी, अब इस सेवा का विस्तार प्रदेश के सभी 33 जिलों में कर दिया गया है। श्रोताओं जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा कर गौरेला पिंडरा मरवाही जिला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। इस उपलब्धि पर कलेक्टर और प्रमुख जनगणना अधिकारी डॉ संतोष कुमार देवांगन ने जनगणना कार्य में लगे 600 से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि प्रदेश में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 1 मई से शुरू हुआ है जो 30 मई तक चलेगा। श्रोताओं जिले में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को सुचारू और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए कलेक्टर डॉ संतोष कुमार देवांगन ने पेट्रोल पंप संचालकों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत बड़े वाहनों में अधिकतम 100 लीटर, कार में 20 लीटर और दोपहिया वाहन में 2 लीटर तक पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि आदेशों का पालन नहीं करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस बीच राज्य शासन ने सभी पेट्रोल डीजल पंपों पर ड्रम, बोतल और जेरिकेन में ईंधन की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। हालांकि रबी खरीफ सीजन के लिए किसानों, कलेक्टर द्वारा चिन्हांकित शासकीय निर्माण कार्यों और अस्पताल, मोबाइल टावर जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी के परीक्षण के बाद सुरक्षा मानकों के अनुरूप बिक्री की अनुमति होगी। श्रोताओं जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 22 मई को जिला स्तरीय मूल्यांकन और निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में जिले के 3 नगरीय निकाय से प्राप्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का अनुमोदन राज्य स्तरीय समिति के लिए किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर पालिका परिषद गौरेला के 21 और पेंड्रा के 38 तथा नगर पंचायत मरवाही के 68 हितग्राहियों के आवेदन अंतिम स्वीकृति के लिए राज्य स्तरीय समिति को भेजे गए हैं। समिति से मंजूरी मिल जाने के बाद इन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सकेगा। श्रोताओं खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों को एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिले में 800 से अधिक किसानों का एग्रीस्टेक पोर्टल में अभी तक पंजीयन नहीं हुआ है। ये किसान आदिम जाति सेवा सहकारी समिति अथवा

0: लोक सेवा केंद्र में जाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पोर्टल में बिना पंजीयन के किसानों से धान खरीदी नहीं की जाएगी। श्रोताओं, जिले के आमाडोब और केवची गांव के जंगलों से संग्रहित प्राकृतिक शहद को अब बेंगलुरु भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत गठित स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा संग्रहित इस शहद की ब्रांडिंग और पैकेजिंग का कार्य एक निजी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। कलेक्टर डॉ संतोष देवांगन ने कहा कि स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को राज्य से बाहर नई पहचान दिलाने और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की दिशा में ये पहल महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। श्रोताओं, गौरेला स्थित जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में 26 मई को सुबह 10 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, फील्ड ऑफिसर और ट्रेनिंग ऑफिसर सहित 72 पदों पर भर्ती की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे गौरेला पिंडरा मरवाही जिले की चिट्ठी। आलेख हरीश मांडवा का था। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अनुरिमा शर्मा की जय जोहार। आप सुनो आज के प्रमुख समाचार। राज्य सरकार हा खरीफ बछर 2026 बर सहकारी क्षेत्र में खातु बांटे संबंधी जारी करिस नवा दिशा निर्देश। नई दिल्ली में होइया नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति बछर 2026 बर काली देही पद्म पुरस्कार औ कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती जगह में सुरक्षा बल मन दू ठीन आने आने जगह ले बरामद करे है नक्सल डंप। अब समाचार विस्तार ले। राज्य सरकार हा खरीफ बछर 2026 बर सहकारी क्षेत्र में खातु बांटे संबंधी नवा दिशा निर्देश जारी करे है। एकर मुताबिक पाछू बछर किसान मन ला बांटे गे खातु के मात्रा के आधार में ए बछर के कोटा तय करे गे है। एकर चलत ए बछर किसान मन ला यूरिया के 80% मात्रा ही पारंपरिक यूरिया के रूप में दे जाही, बांचे 20% मात्रा ला उपलब्ध आधार में दे जाही या फिर एकर बदला नैनो यूरिया दे जाही। डीएपी बांटे के काम घलो पाछू बछर के मुकाबला 60% करेगे है। बांचे 4% ला वैकल्पिक एनपीके उर्वरक या नैनो डीएपी दे जाही। शासन ने स्पष्ट करे है कि कोनो भी किसान ला नैनो खातु लेबर मजबूर नहीं करे जाही, यह ऑप्शन रूप में रही। यहाँ बता दन कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय हालत और खाड़ी क्षेत्र में चलत तनाव ला देखत राज्य सरकार हा किसान मन ला बेरमा खातु दे के निर्णय ले है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काली 25 मई के नई दिल्ली में होइया नागरिक अलंकरण समारोह में बछर 2026 बर पद्म पुरस्कार देही। ए मौका में आकाशवाणी है अपन श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के तहत 16 ठिन कार्यक्रम प्रस्तुत करत है। ए एपिसोड में पद्म पुरस्कार विजेता मन के काम और जीवन के बारे में जानकारी दे जाही। एकर प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल में करी जाही। एला न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में घलो सुने जा सकत है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी हा नियम कानून में सख्ती राखत नवा गाइडलाइन जारी करी है, जेखर मुताबिक अब हवाई यात्री मन एयरपोर्ट के सुरक्षा होल्ड एरिया में मोबाइल ले रील बनाना पूरी तरह ले बैन रही। संगे जउन जगह में हवाई जहाज खड़े रही और बस ले यात्री मन ला विमान ले जाए जाही वहां तक वाली जगह में रुक के रील फोटो या वीडियो बनाए ऊपर घलो रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार हा जन परामर्श बर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत मसौदा नियम प्रकाशित करे है। ग्रामीण विकास मंत्रालय हा कहे है कि कोनो भी मनखे हितधारक संगठन या संस्था अवैया महीना के 21 तारीख तक ए मसौदा नियम मन ऊपर आपत्ति या सुझाव दे सकत है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ए बछर 1 जुलाई ले सबो राज्य मन मा लागू हो जही। छत्तीसगढ़ सरकार हा कहे है कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के कोनो कमी नहीं है और आम लोगन ला घबरा के उपरहायला बिसाए के जरूरत नहीं है। सरकार के मुताबिक राज्य में करीबन 3,94,00,000 लीटर पेट्रोल और 8,08,00,000 लीटर ले ज्यादा डीजल के भंडार उपलब्ध है। किसान और जरूरी सेवा मन ला प्राथमिकता देवत ईंधन के रोजिना आपूर्ति जारी है। राज्य में

0: महीले ड्रम अउ जरीकेन म पेट्रोल डीजल दे ऊपर रोक लगाए गए हे। सरकार ह लोगन मन ला अफवाह ले बांचे के अपील करे हे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा आज दू पाली में राखे गे रहीस। ए दरी परीक्षा देवैया मन ला पहली घाव फेस स्कैन सिस्टम ले गुजरे ला पड़ीस हे। चेहरा मैच होए के बादे ओमन ला परीक्षा केंद्र भीतरी जाए के परमिशन देगीस। परीक्षा ला लेके कड़ा सुरक्षा व्यवस्था रहीस। ए परीक्षा बर रायपुर जिला मा 22 ठिन केंद्र बनाए गए रहीस। सुप्रीम कोर्ट हा विशेष आवश्यकता वाले लइका मन के पढ़े लिखाई ला लेके छत्तीसगढ़ शासन ला विशेष शिक्षक मन के भर्ती प्रक्रिया ला 2 महीना भीतरी पूरा करे के निर्देश दे हे। एक ठिन याचिका के सुनवाई बेरा अदालत हा कहिस कि राज्य मा 49,000 ले ज्यादा विशेष आवश्यकता वाले लइका मन बर करीबन 4,000 विशेष शिक्षक के जरूरत है। राज्य सरकार हा अदालत ला बताइस कि 848 स्वीकृत पद मिले 48 स्वीकृत पद में ले 62 जिन शिक्षक मन के नियुक्ति हो चुके हे। सुप्रीम कोर्ट हा कहिस कि 155 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और 85 जिन विशेष शिक्षक मन ला स्क्रीनिंग कमेटी के आगू मा प्रस्तुत होए के मौका दे जाए। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हाओ।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल मा घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बांचे समाचार डहार। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल डहार ले प्रदेश के सबो डाकघर मन मा काली और परंदिन यानी 25 और 26 मई के अल्प बचत खाता खोले बर विशेष अभियान चलाया जाही। ए दौरान कोनो भी नागरिक अपन तीर तखार के पोस्ट ऑफिस जाके या राज्य सरकार डहार ले नियुक्त अधिकृत एजेंट मन के माध्यम ले अल्प बचत योजना जैसे मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना ये सब मा निवेश कर सकी। नक्सल उन्मूलन अभियान के चलत कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती जगह मा सुरक्षा बल मन दू ठिन आने आने जगह ले डंप बरामद करे है। DRG, BSF और BDS के संग्रह टीम हा कांकेर जिला के कोयलीबेड़ा के थाना जगह के गांव पल्लाहूर और जपमरका तीर जंगल भित्री लुका के रखे गए नक्सल डंप बरामद करे है। एमा BGL लॉन्चर, BGL सेल, फायर कार्टिज, AK-47 और SLR के खाली कार्टेज समेत बड़कन विस्फोटक जिनिस घलो है। इस तरह सुरक्षा बल मन कांकेर नारायणपुर सीमावर्ती जगह के गांव मरका बेड़ा आदनार और एलूर के जंगल भित्री ले घलो नक्सल जिनिस बरामद करे है। एमा 3 ठीन 12 बोर के राइफल, BGL लॉन्चर, बारूद और इलेक्ट्रिक डेटोनेटर समेत विस्फोटक जिनिस शामिल है। उथी राजनांदगांव जिला के बॉर्डर ले लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली माओवादी विरोधी अभियान के चलत पुलिस ला भारी सफलता मिली है। पुलिस का सर्चिंग ऑपरेशन बेरा इहों ले नक्सली डंप बरामद करे है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के सरिया पुलिस धान खरीदी मा फर्जीवाड़ा के खुलासा करत साले ओना उपार्जन केंद्र के समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर ला गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड मा भेज दे है। एक बन ऊपर आरोप है कि बिना धान के वास्तविक आवक के ऑनलाइन एंट्री करके करीबन 99 लाख रुपया के गबन करेगे है। ये मामला मा सहायक खाद अधिकारी के रिपोर्ट पर मामला दर्ज करेगी। अब पेशे मौसम के हाल। प्रदेश में ए बेरा जोरदार गर्मी पड़त है जेखर ले जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग का चेताया है कि अवैया 24 घंटे के दौरान रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और महासमुंद समेत प्रदेश के 18 ठिन जिला में ले एक दू जगह में लू चल सकत है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम ले अवैया शुष्क और तापता हवा के सेती तापमान बढ़ गए हवे और एक स्थिति फिलहाल गर्मी ले राहत नहीं मिला थे। वही आज रायपुर में 43.6, बिलासपुर में 43.4 और जगदलपुर में 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज करेगी। इसी बीच विशेषज्ञ मन लू ले बांचे बर सावधानी बरते के अपील करे है। लोगन मन ला भरपूर पानी और तरल पदार्थ पिए के संगे हल्का रंग के सूती कपड़ा पहने और पूरा शरीर ला तोप के राखे के सलाह दे है। संगे बिना काम के बाहर नहीं जाए के अपील करे है। अब थोरकुन समाचार सार मा। बलौदाबाजार भाटापारा जिला मा जिला शिक्षा अधिकारी हा दू जिन सहायक शिक्षक ला सस्पेंड कर दे है। ए दोनों ऊपर कर्तव्य पालन मा

0: अपरवाही बढ़ते के आरोप है। रायपुर पुलिस पंजाब ले नशा के तस्करी करिया एक ठिन गिरोह के पर्दाफाश करत 3 जिन आरोपी ला गिरफ्तार करी है। एकर मंतिर ले करीबन 56 ग्राम हेरोइन जब्त करे गए है। औ बिटकॉइन मा निवेश करके मुनाफा देवाए के झांसा दे के एक झिन मनखे ले 7.5 लाख रूपया के धोखाधड़ी के मामला में दुर्ग पुलिस एक झिन आरोपी ला रायपुर ले गिरफ्तार करी है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। राज्य सरकार खरीफ बछर 2026 बर सहकारी क्षेत्र में खातू बांटे संबंधी जारी करी नवा दिशा निर्देश। नई दिल्ली में हुवैया नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति बछर 2026 बर काली देही पद्म पुरस्कार औ कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती जगह में सुरक्षा बलमन 2 ठिन आनियानी जगह ले बरामद करे है नक्सल डंप। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:20 होने को हैं। संस्कृत समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: विरुद्धं गांधिनः वक्तव्यं सर्वैः विपक्षिदलैः सह कांग्रेस दलस्य प्रमुखं षड्यंत्रं सूचयति। अन्ते क्रीडावार्तायां, आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां अद्य प्रथमे द्वन्द्वे मुंबई इंडियंस राजस्थान रॉयल्स दलयोः मध्ये स्पर्धा प्रचलति। प्रथमं क्रीडता राजस्थान रॉयल्स दलेन अष्ट क्रीडकानां हानि पुरस्सरं 75 धावनांकाः विनिर्मिताः। अपरतः द्वितीये द्वन्द्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। कार्यक्रम कानून की बात में लीजिए सुनिए। निशुल्क सहायता योजना, लोक अदालत, नए आपराधिक कानून में भरण पोषण के प्रावधान विषय पर असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल रायगढ़ श्री रविंद्र कुमार साव से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता है प्रतिमा अजमानी। यह आकाशवाणी रायगढ़ की प्रस्तुति है।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं प्रतिमा अजमानी स्वागत करती हूं आप सभी का कार्यक्रम कानून की बात में। श्रोताओं, जीवन में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वो जीवन भर के लिए होते हैं, जैसे माता पिता और संतान का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता। कई बार समय का चक्र कुछ इस तरह घूमता है कि इन रिश्तों के बीच कानून को मदद के लिए आगे आना पड़ता है ताकि हर एक व्यक्ति को जीवन की बुनियादी सुविधाएं मिल सके। आज कार्यक्रम कानून की बात में जानकारी लेंगे नए आपराधिक कानून में भरण पोषण के प्रावधान, निशुल्क विधिक सहायता योजना और लोक अदालत की। स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है श्री रविंद्र कुमार साव जी को, जो असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के पद पर रायगढ़ छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। नमस्कार सर।
1: नमस्कार मैडम,
0: स्वागत है आपका।
1: जी धन्यवाद।
0: रविंद्र जी, सबसे पहले हम चाहेंगे आप हमें बताएं कि निशुल्क विधिक सहायता योजना क्या है।
1: जी देखिए, अक्सर हम सुनते हैं कि कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत महंगा होता है
0: जी,
1: और हमारे देश में आज भी समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा जो पूंजीपति वर्ग का है या जिनके पास पर्याप्त पैसे हैं, वो आसानी से अपने लिए बड़े से बड़ा और महंगा से महंगा वकील खड़े कर लेते हैं, जिससे उनको आसानी से न्याय मिल जाता है। पर आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिन लोग आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हैं, गरीब हैं, शोषण का शिकार हैं, बेसहारा हैं, या कई अन्य ऐसे कारण हैं जिसके वजह से वो कोर्ट नहीं जा पाते, अपने लिए वकील नहीं रख पाते। तो ये विधिक सहायता योजना उन्हीं लोगों के लिए है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी नागरिक केवल गरीब होने या किसी अन्य कारणों से अक्षम होने के कारण न्याय से वंचित न रह जाए।
0: बिल्कुल सर, विधिक सहायता योजना के क्या क्या लाभ आम जनता प्राप्त कर सकती है?
1: देखिए, इसमें मुख्य रूप से इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता के लिए वकील उपलब्ध कराना है। पर यह योजना यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इस योजना के अंतर्गत न सिर्फ वकील उपलब्ध कराए जाते हैं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान जो भी इसमें शुल्क आता है वो सारे शुल्क विधिक सहायता के द्वारा ही दिया जाता है। साथ ही उनके आवेदनों की जो ड्राफ्टिंग होती है, वो सारे आवेदन तैयार किए जाते हैं, सलाह सहायता दिए जाते हैं। इसके साथ ही और भी अनेक
0: अलग तरीके की मदद भी दी जाती है लोगों को,
1: अन्य तरीके की मदद भी लोगों को दी जाती है
0: जी।
1: अभी वर्तमान में विधिक सहायता शिविर के माध्यम से भी आम जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, और लोक अदालत के माध्यम से भी आपसी समझौते से लोगों के विवादों का निराकरण किया जा रहा है। ये भी विधिक सहायता योजना का ही एक अंग है
0: जी। रविंद्र जी, कौन कौन विधिक सहायता योजना प्राप्त कर सकते हैं?
1: विधिक सहायता योजना के लिए क्राइटेरिया बना हुआ है कि जैसे महिलाएं हैं एवं बच्चे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के कोई भी सदस्य प्राप्त कर सकते हैं, औद्योगिक श्रमिक या कर्मकार इसके अंतर्गत आते हैं, यदि कोई व्यक्ति जेल में बंद है और उसकी तरफ से

0: अधिवक्ता पैरवी के लिए उपलब्ध नहीं है तो वह भी विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। कोई
1: जी
0: दिव्यांग व्यक्ति है या आपदा पीड़ित व्यक्ति है, जैसे कि बाढ़, सूखा, भूकंप या दंगों का शिकार कोई व्यक्ति है, या गरीब वर्ग के लोग हैं जिनका आय एक निर्धारित सीमा जो कि निर्धारित किया गया है विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिनियम में, यदि उस आय से वो कम आय रखते हैं तो उन्हें भी विधिक सहायता दिया जा सकता है।
1: जी रविंद्र जी, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
0: जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे यदि कोई भी व्यक्ति इन सेवाओं का लाभ लेना चाहता है तो अपने स्थानीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में जाकर एक साधारण सा आवेदन दे सकता है।
1: जी
0: यदि उसे आवेदन भरना नहीं आता है तो कार्यालय में जो भी कर्मचारी हैं या पैरालीगल वॉलंटियर हैं वो पूरी तरह से सहायता करते
1: जी
0: हैं।
1: ये बहुत सही है, क्योंकि
0: जी
1: जो कानून के शब्दों में जिस तरीके का आवेदन किया जाता है वो लोगों के लिए उतना सरल नहीं होता।
0: जी जी मैडम, अक्सर विधिक सहायता के लिए ऐसे लोग आते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं
1: जी
0: होते, गरीब
1: बिल्कुल।
0: वर्ग के होते हैं और कानूनी बातों को वो समझ नहीं पाते।
1: जी
0: तो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर या विधिक सहायता के कर्मचारी आवेदन फॉर्म भरने में उनका पूरा सहायता करते हैं। इसमें कुछ बेसिक डिटेल और बहुत ही कम दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड या आय प्रमाण पत्र जैसे सामान्य दस्तावेज ही लगते हैं।
1: जी
0: तो उन दस्तावेजों के आधार पर वो उनकी जानकारियाँ पूरी खुद से भर देते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सके।
1: जी तो रविंद्र जी, ये तो हो गया कि हम वहाँ जाकर मिल सकते हैं वकील से,
0: जी
1: पर इसके अलावा कोई और भी तरीका है जिससे हम इस विधिक सहायता केंद्र से संपर्क कर सकें?
0: जी मैडम, बिल्कुल। यदि कोई व्यक्ति घर बैठे ही विधिक सहायता का फॉर्म भरना चाहे
1: जी
0: तो नालसा के द्वारा nalsa.gov.in
1: जी
0: एक वेबसाइट का संचालन किया जा रहा है, जिसमें जो व्यक्ति कंप्यूटर के जानकार हैं या घर बैठे मोबाइल से भी अगर फॉर्म भरना चाहें तो ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से वे आवेदन कर सकते हैं।
1: जी
0: इसके अलावा जैसे आवेदन फॉर्म भरने में या ऑनलाइन पोर्टल में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या यदि उनको कोई कानूनी सलाह चाहिए तो उसके लिए नालसा के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर का भी संचालन किया जा रहा है जो कि nalsa1510 है।
1: जी
0: इसमें पूरे देश भर के वकीलों को और जो लॉ में एक्सपर्ट हैं उनको जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से यदि उनका कोई भी कानूनी दिक्कत उस समय आता है
1: जी
0: तो तत्काल उसका समाधान उसमें किया जाता है।
1: बिल्कुल
0: ये पूरी तरह से निःशुल्क है मैडम, इसमें किसी प्रकार की कोई फीस देनी नहीं पड़ती है
1: जी
0: और हमेशा एक्सपर्ट अवेलेबल रहते हैं। जैसे
1: बिल्कुल
0: किसी समय यदि कोई एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है या कोई प्रॉब्लम होती है
1: जी
0: तो कॉल तत्काल ही किसी दूसरे एक्सपर्ट को ट्रांसफर हो जाता है। या
1: अच्छा
0: इसमें एक सुविधा और भी है मैडम कि यदि तुरंत जवाब नहीं दे पाते हैं कोई एक्सपर्ट
1: जी
0: तो आपका नंबर ऑटोमेटिकली उनके आईडी पे चले जाता है
1: जी
0: और वे तुरंत जिस भी समय वो अवेलेबल हो तुरंत ही कॉल बैक करेंगे और आपका प्रॉब्लम पूछेंगे और जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसका निराकरण करने का प्रयास करते
1: जी
0: हैं।
1: बहुत अच्छी सुविधा आपने बताई रविंद्र जी,
0: जी
1: इससे लोगों को मुझे उम्मीद है काफी मदद मिली होगी और मन से एक तरीके का डर भी चला गया होगा।
0: जी
1: रविंद्र जी, अब हम चाहेंगे आप हमें लोक अदालत के बारे में बताएं।
0: मैडम, जैसा कि लोक अदालत नाम है, लोक का मतलब ही होता है जनता का अदालत।
1: जी
0: ये सामान्य अदालत की तुलना में अलग प्रकार का अदालत है जो विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ही आयोजित कराया जाता है।
1: जी
0: इसमें आपसी राजीनामा के आधार पर पक्षकारों के विवादों का निराकरण किया जाता है। ऐसे मामले जिनमें राजीनामा हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के मामले हों, जैसे कई आपराधिक मामले हैं जिनमें राजीनामा का प्रावधान है, या सिविल मामला है, या कोई लेन देन का मामला है, संपत्ति संबंधी विवाद है, या घरेलू मामला है
1: जी
0: जिसमें राजीनामा हो सकता है, वहां पक्षकारों के आपसी समझौते के आधार पर मामले का निराकरण किया जाता है।
1: जी
0: सबसे ज्यादा फायदा इसमें यह है मैडम कि जैसे अगर आप किसी रेगुलर लोक अदालत में आवेदन करते हैं तो आपको कोर्ट फीस पे करना पड़ता है, वकील रखना पड़ता है, लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, कई पेशी
1: बिल्कुल
0: चलती है, इसी के साथ कई अन्य आवेदन और कानूनी प्रक्रिया का एक अच्छा खासा लंबा प्रक्रिया पालन करना पड़ता है।
1: जी
0: लेकिन लोक अदालत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोक अदालत में पीठासीन अधिकारी के सामने दोनों पक्षकार जाएंगे और जो भी समस्या होता है उसका आपसी बातचीत के माध्यम से निराकरण करने का प्रयास किया जाता है।
1: जी
0: जहां निराकरण हो जाता है वहां तत्काल ही उनको निर्णय दे दिया जाता है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होता है, इसलिए वो हर जगह मान्य है।
1: जी
0: तो इससे पक्षकार जो लंबी पेशियों में लंबी कतारों में लगे रहते थे अब उनको सामना करना नहीं पड़ता, एक ही
1: जी
0: बार में उनके मामले का अंतिम निराकरण हो जाता है, कोर्ट
1: बिल्कुल
0: फीस पे करना नहीं पड़ता है तो कोर्ट फीस की भी बचत हो जाती है,
1: जी
0: एक ही दिन में निराकरण हो जाता है, इसलिए उनको कई कई सालों तक इंतजार करना नहीं पड़ता है। इसमें वकील रखने की भी आवश्यकता नहीं है मैडम,
1: जी
0: इसमें वकील की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही किसी प्रकार की कोई कानूनी बहुत लंबी जटिल प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। तो इसलिए ये लोक अदालत जनता की सुविधा के लिए, जनता का जनता के लिए अदालत ही वास्तव

0: में लोक अदालत है
1: जी। सर आगामी लोक अदालत कब है, हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: जी आगामी लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को आयोजित की जाने वाली है।
1: जी रविंद्र जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी विधिक सहायता योजना और लोक अदालत की हमारे श्रोताओं को दी। इसी कड़ी को अब आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे आप श्रोताओं को महिलाओं, बच्चों और माता पिता के संबंध में भरण पोषण कानून के बारे में कुछ जानकारी दें। ये प्रावधान क्या है, हम चाहेंगे आप हमें बताएं।
0: भरण पोषण का प्रावधान पुराने दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 125 में था
1: जी।
0: वर्तमान में 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून लागू हो जाने के बाद धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसका प्रावधान दिया गया है, जिसमें वे लोग जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं और अपना भरण पोषण कर पाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं, तो वे न्यायालय के माध्यम से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। जैसे ये विशेष रूप से बनाया गया है कानून की पत्नी, बच्चे तथा माता पिता जो अपना भरण पोषण कर पाने में असमर्थ हैं, वे भरण पोषण मांग सकते हैं
1: जी।
0: पत्नी है यदि वो स्वयं का भरण पोषण नहीं कर पा रही है, बच्चे हैं चाहे वो उनके वैध वारिस हों, वैध बच्चे हों या अवैध संतान हो, दोनों ही प्रकार के संतान भरण पोषण मांग सकते हैं जब तक कि वो बालिक ना हो जाए
1: जी।
0: यदि कोई बालिक पुत्र है परंतु वह शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग है और अपना भरण पोषण नहीं कर पाता, तो वह भी अपने पिता से भरण पोषण की मांग कर सकता है। और यदि माता पिता जो बुजुर्ग हो चुके हैं अब अपना भरण पोषण कर पाने में असमर्थ है, तो वो भी अपने पुत्र से भरण पोषण मांग सकते हैं
1: जी। सर कितनी राशि मिलती है भरण पोषण के लिए और क्या ये राशि कम या ज्यादा हो सकती है?
0: जी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ कोर्ट बहुत सारी चीजों को भरण पोषण के आवेदन का निराकरण करने के समय देखता है। जैसे जिस व्यक्ति से भरण पोषण की राशि वसूलनी है उस व्यक्ति का आय का स्रोत क्या क्या है, उसकी सैलरी कितनी है, उसकी अपनी कितनी जिम्मेदारियां हैं, और जिस व्यक्ति को भरण पोषण दिया जाना है उसका रहन सहन कितना है, ताकि सामने वाले व्यक्ति जिसको भरण पोषण देना है उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सके।
1: बिल्कुल।
0: तो इसके लिए कोई निर्धारित राशि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये परिस्थिति को देखते हुए न्यायालय के द्वारा निराकृत किया जाता है
1: जी। वकील साहब, आदेश का पालन न करने पर क्या सजा मिलती है इस प्रावधान के तहत?
0: जी यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरण पोषण का आदेश पारित किया गया है
1: जी
0: जानबूझकर भरण पोषण देने में अवहेलना करता है, जानबूझकर वो भरण पोषण नहीं देता है, तो सबसे पहले तो न्यायालय के पास ये अधिकार है कि न्यायालय चाहे तो गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है
1: जी।
0: गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर भी अगर वो भरण पोषण नहीं देता है तो सिविल कारावास में भी डाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति से भरण पोषण वसूलना है उसके संपत्ति की कुर्की हो सकती है, जब्ती हो सकती है या उसके वेतन से कटौती हो सकती है, और फिर भी यदि वो व्यक्ति जानबूझकर बार बार भरण पोषण देने में चूक करता है तो इसे न्यायालय अपने अवमानना समझकर अवमानना की कार्रवाई भी कर सकता है
1: जी। रविंद्र जी, फैसला आने में काफी समय लग जाता है, ऐसे में जिस व्यक्ति ने आवेदन किया है उसका जीवन किस तरह चलेगा, उसके लिए क्या उपाय है?
0: जैसा कि भरण पोषण का आवेदन प्रस्तुत करने के बाद और निराकरण होने के बीच में कई पेशी हो जाती है और इस बीच में पक्षकार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है
1: जी।
0: जैसे यदि पति या पत्नी है और वो अलग अलग रह रहे हैं तो उनके आने जाने का खर्च, खुराक खर्च और वो खर्चे, इस बीच में अंतरिम भरण पोषण का एक प्रावधान दिया गया है
1: जी।
0: अंतरिम भरण पोषण विशेष रूप से इसलिए बनाया गया है कि जब तक भरण पोषण का आवेदन निराकृत नहीं हो जाता और अंतिम रूप से ये निष्कर्षित नहीं किया जाता कि कितना भरण पोषण राशि आवेदक को दिया जाए या न दिया जाए, इस बीच में उसे एक अस्थायी राहत के रूप में अंतरिम भरण पोषण दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य ही यह है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक पीड़ित पक्ष को आर्थिक तंगी से बचाया जा सके। और अभी जो नया आपराधिक कानून आया है इसमें समय सीमा निर्धारित कर दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अंतरिम भरण पोषण के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है तो 60 दिनों के भीतर अदालत को अंतरिम भरण पोषण का आवेदन का निपटारा करना अनिवार्य है और यह तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि अंतिम फैसला नहीं कर दिया जाता।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को बताई। सर अब मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि क्या शादीशुदा बेटी से भी माता पिता भरण पोषण की मांग कर सकते हैं?
0: जी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे यदि कोई माता पिता है और उनकी एकमात्र पुत्री है या पुत्री ही पुत्री है, कोई पुत्र नहीं है और उन पुत्रियों का विवाह हो चुका है, तो केवल शादी हो जाने मात्र से वो अपने माता पिता के प्रति दायित्व जो होता है उससे वो बच नहीं सकते, तो एक विवाहित पुत्री से भी भरण पोषण की मांग की जा सकती है
1: जी। और क्या सौतेली माँ भी भरण पोषण का दावा कर सकती है?
0: हाँ मैडम, बिल्कुल, सौतेली माँ भी भरण पोषण का दावा कर सकती है यदि उसके खुद के संतान ना हो।

0: उनके पुत्र पुत्री नहीं है तो सौतेली माता पिता भी भरण पोषण मांग सकती है यदि वो अपना भरण पोषण स्वयं करने में असमर्थ है तो।
1: जी श्रोताओं, आज कार्यक्रम कानून की बात में हमने जानकारी ली नए आपराधिक कानून में भरण पोषण के प्रावधान की, निःशुल्क विधिक सहायता योजना और लोक अदालत की। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी सारी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं ये जानकारी हमारे श्रोताओं के जरूर काम आएगी। और अब प्रतिमा अजमानी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: कार्यक्रम कानून की बात में अभी आप सुन रहे थे निःशुल्क सहायता योजना, लोक अदालत, नए आपराधिक कानून में भरण पोषण के प्रावधान, इस विषय पर असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल रायगढ़ श्री रविंद्र कुमार साव से ली गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थी प्रतिमा अजमानी। ये आकाशवाणी रायगढ़ की प्रस्तुति थी। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
8: बेटा,
7: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
8: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
9: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
7: कहाँ
9: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
7: आरबीआई कहता है।
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
11: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
10: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
11: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
10: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
11: क्यों?
10: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
12: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
13: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते किसानों को इस वर्ष यूरिया और डीएपी पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा कम दिया जाएगा, राज्य सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। राष्ट्रपति कल नई दिल्ली में प्रदान करेंगी पद्म पुरस्कार। दंतेवाड़ा जिले के गोडबोले दंपत्ति को भी पद्मश्री से किया जाएगा सम्मानित। प्रदेश के सभी डाकघरों में अगले दो दिन अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। और सुरक्षा बलों ने कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके से बड़ी मात्रा में नक्सल डंप बरामद किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने खरीफ वर्ष 2026 के लिए सहकारी क्षेत्र में उर्वरक वितरण संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार बीते वर्ष किसानों को वितरित की गई उर्वरक की मात्रा के आधार पर इस वर्ष का कोटा तय किया गया है। इसके तहत इस वर्ष किसानों को यूरिया की 80% मात्रा ही पारंपरिक यूरिया के रूप में दी जाएगी, शेष 20% मात्रा उपलब्धता के आधार

0: आधार पर प्रदान की जाएगी या उसके बदले नैनो यूरिया दिया जाएगा। डीएपी वितरण भी पिछले वर्ष के मुकाबले 60% ही किया जाएगा। शेष 4% मात्रा के लिए वैकल्पिक एनपीके उर्वरक या नैनो डीएपी उपलब्ध कराया जाएगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी किसान को नैनो उर्वरक लेने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था पूरी तरह वैकल्पिक होगी। गौरतलब है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों तथा खाड़ी क्षेत्र में चल रहे तनाव के मद्देनजर राज्य सरकार ने किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 25 मई को नई दिल्ली में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर आकाशवाणी नई दिल्ली अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ शासन को विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 2 माह में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि राज्य में 49,000 से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए करीब 4,000 विशेष शिक्षकों की जरूरत है। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि 848 स्वीकृत पदों में से 62 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 155 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और 85 विशेष शिक्षकों को स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होने का अवसर दिया जाए। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से सभी राज्यों में लागू हो जाएगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने नियमों में सख्ती करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार अब हवाई यात्री एयरपोर्ट के सुरक्षा होल्ड एरिया पर रेल बनाना पूरी तरह से बैन रहेगा। साथ ही हवाई जहाज के खड़े होने वाली जगह और बस से यात्रियों को विमान ले जाने वाले तक स्थान पर रुककर रील फोटो या वीडियो बनाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और आम लोगों को घबराकर अतिरिक्त खरीदी करने की जरूरत नहीं है। सरकार के अनुसार राज्य में करीब 3,94,00,000 लीटर पेट्रोल और 8,08,00,000 लीटर से अधिक डीजल का भंडार उपलब्ध है। किसानों और जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए ईंधन की नियमित आपूर्ति जारी है। राज्य में 22 मई से ड्रम और जेरिकेन में पेट्रोल डीजल देने पर रोक लगाई गई है। सरकार ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 2 अलग-अलग स्थानों से डंप बरामद किया है। डीआरजी बीएसएफ और बीडीएस की संयुक्त टीम ने कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पल्लाहूर और जपमरका के बीच जंगल में छिपाकर रखे गए नक्सल डंप को बरामद किया। इसमें बीजीएल लॉन्चर, बीजीएल सेल, फायर कार्टेज, AK-47 और SLR का खाली कार्टेज सहित विभिन्न विस्फोटक सामग्री शामिल हैं। इसी तरह सुरक्षा बलों ने कांकेर नारायणपुर सीमावर्ती क्षेत्र के ग्राम मरकाबेड़ा, आदनार और एलूर के बीच जंगल से भी नक्सल सामग्री बरामद की है। इसमें 3 12-बोर की राइफल, बीजीएल लॉन्चर, बारूद और इलेक्ट्रिक डिटोनेटर सहित विस्फोटक सामग्री शामिल हैं। उधर राजनांदगांव जिले की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवाद विरोधी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान नक्सली डंप बरामद किया। डंप से हथियार निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर

0: भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
1: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। जांजगीर चांपा जिले की पर्वतारोही अमिता श्रीवास ने बीती 22 मई को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सफलतापूर्वक फतह किया। हालांकि वापसी के दौरान अत्यंत कम तापमान और ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें आज हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर काठमांडू के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटना की जानकारी मिलते ही राज्य के उच्च अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अमिता के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल द्वारा प्रदेश के सभी डाकघरों में कल और परसों यानी 25 और 26 मई को अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कोई भी नागरिक अपने नजदीकी डाकघर जाकर या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत एजेंटों के माध्यम से अल्प बचत योजनाओं जैसे मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि में निवेश कर सकेंगे। प्रदेश में संचालित प्रयास बालक और कन्या आवासीय विद्यालयों के वर्तमान सत्र में प्रवेश के लिए आयोजित प्राक चयन परीक्षा के मॉडल उत्तर जारी कर दिए गए हैं। विद्यार्थियों से कक्षा 9वीं प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र या उत्तरों से संबंधित किसी भी प्रकार की दावा और आपत्तियां 30 मई को शाम 5:30 बजे तक आमंत्रित की गई है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरिया पुलिस ने धान खरीदी में फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए साल्हे ऊना उपार्जन केंद्र के समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इन पर आरोप है कि बिना धान की वास्तविक आवक के ही ऑनलाइन एंट्री कर करीब 99 लाख रुपये का गबन किया गया। इस मामले में सहायक खाद्य अधिकारी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद सहित प्रदेश के 18 जिलों में एक दो स्थानों पर लू चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम से आने वाली शुष्क और गर्म हवा के प्रभाव के कारण अधिकतम तापमान बढ़ा हुआ है जिसके कारण गर्मी से अभी राहत मिलने की संभावना नहीं है। वहीं आज रायपुर में 43.6, बिलासपुर में 43.4 और जगदलपुर में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इस बीच विशेषज्ञों ने लू से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। विशेषज्ञों ने पानी और तरल पदार्थों का सेवन करने, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने और पूरे शरीर को ढक रखने की सलाह दी है। साथ ही अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने की भी अपील की है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। कबीरधाम जिले के एक राइस मिल में चोरी करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी हुआ चावल भी बरामद कर लिया गया है। बालोद जिले के ग्राम सिवनी और देउर तराई क्षेत्र में जिला प्रशासन और पुलिस ने तांदुला नदी तट पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के लिए अभियान चलाया। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के बारनामापारा अभयारण्य के पास देवपुर में बच्चों के लिए विशेष नेचर कैंप का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर बलौदाबाजार वन मंडल के विभिन्न वन परिक्षेत्रों और अभयारण्य क्षेत्रों में जन जागरूकता और सहभागिता आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत सारंगढ़ में वस्तु प्रदर्शनी सह विक्रय मेले का आयोजन किया गया। मेले में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के जनजातीय कारीगरों ने हिस्सा लिया। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में जिला शिक्षा अधिकारी ने 2 सहायक शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। दोनों पर कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतने का आरोप है। रायपुर पुलिस ने पंजाब से ड्रग की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 56 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। जांजगीर के करही गांव में करीब 1 महीने पहले हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बिटकॉइन में निवेश कर मुनाफा दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 7.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में दुर्ग पुलिस ने 1 आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते किसानों को इस वर्ष यूरिया और DAP पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा कम दिया जाएगा। राज्य सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। राष्ट्रपति कल नई दिल्ली में प्रदान करेंगी पद्म पुरस्कार। दंतेवाड़ा जिले के गोट बोले दंपति को भी पद्मश्री से किया जाएगा सम्मानित। प्रदेश के सभी डाकघरों में अगले 2 दिन अल्प

0: बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और सुरक्षा बलों ने कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके से बड़ी मात्रा में नक्सल डंप बरामद किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
1: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
1: कहाँ
3: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
4: RBI कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 7 बजे हैं। हम हाजिर हैं लेकर चित्रपट संगीत।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे आनंद बख्शी का लिखा गीत। फिल्म बेताब के लिए संगीत आर डी बर्मन का था।

Akashvani at 90. आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उधास अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं इब्राहिम अश्क, संगीतकार राजेश रोशन। फिल्म का नाम बहार आने तक।

श्रोताओं, अगले गीत से पहले एक सूचना सुनिए। आगामी मंगलवार 26 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसान वाणी कार्यक्रम का विषय होगा खरीफ पूर्व कृषि यंत्रों का रखरखाव एवं संबंधित योजनाएं। इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विनय कुमार नायक, सहायक प्राध्यापक कृषि अभियांत्रिकी कृषि विज्ञान केंद्र पांडा दुर्ग। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 26 मई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

लता मंगेशकर और अमित कुमार को आपने सुना फिल्म रोमांस में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने। इसके साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल।

0: राम राम रुक्मणी,
1: राम राम रोशन। संगे संग हमारे कार्यक्रम सुनिए, जम्मो संगी मल्ला हमर दोनों के
0: राम राम, राम।
1: रोशन हाँ। अभी तो बहुत तेज घाम होते हैं, दोपहर के देख जौन हवा चलते लू भरे वाले रहते हैं, तो देख अभी गर्मी के समय चलत है और ये समय में काम बूता संग सेहत और खान पान के हमला ध्यान रखना बहुत जरूरी होते हैं। काबर की प्रकृति के संग ले हमला चलना है, तो जौन भी हमर जौन प्रकृति के हिसाब ले है वो हाँ। वो हिसाब ले हमला चलना है नी, अपन खान पान के ध्यान रखन और ये बेरा मा जौन हमर शरीर है ना तो अतका धूप ले एकदम से गर्म हो जाते हैं ना, तो हाँ। लू लगे के संभावना रहते वो हिसाब से हम अपन आहार व्यवस्था रखन।
0: सही कहे रुक्मणी, अधिक ठंड के दिन में ठंड लगते, बरसात के दिन में बरसात में भिंगथन, वही प्रकार के अभी गर्मी के दिन चलत है धूप के लू के है ना, तो जैसे लू चलत है तो हमला भाई काम बूता तो करे लगही है ना भाई, तो काम बूता ला जौन है सावचेत रीके करे लगते है ना भाई, संझा है मुधियार है ये समय में ज़्यादा करके काम बूता ला करना और मंझने हो अपन घर में रहन, कोनो जरूरी काम बूता है तभी निकलन। अभी के समय में खास करके जौन हमन नान्हे नान्हे लोग लैका मन है उहू मल्ला घला सावचेत रहना चाहिए, खास करके सियान मल्ला ध्यान देना चाहिए। और एक बात आऊ रुक्मणी, देख नान्हे नान्हे लैका मन जो मन रिथे ना ते मन हा अबड़ गर्मी ही के तरिया में डुबकत रिथे है ना, फिर हम पानी ने हमन ठंडा में हमन ऐसे की थे लेकिन वो है जो उन्हें अच्छा नोहरा है, काबर ऊपर ले जौन गर्मी परत है तो पड़बे करही आओ देखबे जब डुबक के निकलते लैका मन ना तो आँखी मन लाल लाल और उसने में जौन है तो मन के फट ले स्वास्थ्य है खराब घर।
1: और रोशन यहू बात के हम जौन है मन के मन ध्यान देवन, माँ बाप ध्यान देवें कि लैका मन अगर जैसे अभी ते बोले कि गर्मी के बेरा में उमन नदी तरिया में डुबकी लगाते हैं तो चेत करके रखें कि भाई अतका टाइम हो गया उमन काबर नहीं आए, काबर कि ये बेरा में ज़्यादा सुने में आते कि लैका मन डूब गए हैं नी ऐसे, तो ये बात के जरूर ध्यान रखो संगी हो कि लैका मन आप मन ले ज़्यादा दूर समय तक दूरिया झन रहे हैं। और देख रोशन हमारे शरीर अभी हमन गोट बात करते हैं गर्मी के बेरा में खान पान के है नी, तो हमारे शरीर ला सुरक्षित तभी रख सकते हैं जब हम आहार अच्छा ले वो आहार

0: भरपेट खाबो और हमर शरीर ला ऊर्जा मिली। अभी समय में पानी वाला जो अभी के बेरा चलत है बेरा में पानी वाला हम फल खावन और ज्यादा पियन पानी ज्यादा पियन। और हमर छत्तीसगढ़ में तो बोरे वासी है एक बहुत अच्छा प्रोटीन और पौष्टिक आहार है जिला सब भोजन खाते तको और ये गर्मी के बेरा में बड़े स्वाद के होते और फायदा के होते।
1: सही कहे रुक्मणी, देख बोरे बासी की बात करे ना तो देख बोरे बासी हो गए और आमा के अथान हो गए या प्याज होगे तो झन पूछ है ना। वो बोरे बासी है फायदा करबे करते संग मा जन ओकर पानी रिथे चावल के पानी हा वो बड़ फायदा करते। और अभी के समय मा फल फलेरी की बात करन तरबूज है कलिंदर है ककड़ी है ना और दही है आमा आमा के पना है ये फल मल्ला मा पानी और पानी ले भरपूर रिथे और स्वाद ले घला जे हमार शरीर पर पानी के मात्रा ला पूरा करते। ये फल ला खाए ले हमार शरीर ला कोनो प्रकार के नुकसान नहीं होवे। थोड़ा बहुत कहूँ धूप गर्मी लू लगे है तो वह है दुरिहा जाते आहार के रूप में खाना के संगमा घला हमला ले सकता अपन व्यवस्था के अनुसार।

हैं। ये फल मन ला माँ पानी और पानी ले भरपूर रहते और स्वाद ले घला, जे हमार शरीर पर पानी के मात्रा ला पूरा करते। ये फल ला खाए ले हमार शरीर ला कोनो प्रकार के नुकसान नहीं होवे। थोड़ा बहुत कहूँ धूप गर्मी लू लगे है तो वह है दुरिहा जथे। आहार के रूप में खाना के संग में घला हमला ले सकथन अपन व्यवस्था के अनुसार। रुक्मणी गोट बताऊ आगू करबो फिर सुनथन ए संदेश।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ?
3: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
7: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
8: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
7: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
8: 47 सालों से निरंतर सेवा में
7: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
9: रोशन हाँ? देख भाजी एकर महत्ता तो 12 महीना रहते है नी, फिर अभी के बेरा के बात करें ता भाजी के ज्यादा ले ज्यादा उपयोग करें, जैसे भाजी में हो गए खट्टा भाजी हो गए, चेज भाजी हो गए, लाल भाजी हो गए, ये सब्बो प्रकार के भाजी के उपयोग हम हमार आहार में कर सकते हैं। ये सब्बो पुष्टई के होते और पाचन आसानी ले हो जाते, तो संगवारी हो ये सबके उपयोग हम हमारे आहार में जरूर करें।
10: भाजी के है तो भाजी यानी हरा भरा है ना, हरा भरा यानी कि ओमा पानी की मात्रा ज्यादा होना है ना भाई, हरा है यानी पानी की मात्रा ज्यादा है। और खास करके भाजी में तो पूरा चरित है। आओ देख हम ला अभी के समय में पानी के जरूरत ज्यादा होते और भाजी में बड़ पानी रिथे और हरा भरा हमार शरीर ला पानी के पूर्ति करते है ना भाई। आओ देख खाए में स्वाद घला आते भाजी है नहीं, अभी जिसे बोरे बासी के शुरू गोट बात करते रहे
9: तो खट्टा भाजी हो गए हाँ।
10: खट्टा भाजी हो गए है ना, तो वह बड़ा अच्छा लागते, चार करोड़ ज्यादा खवाते है ना। अभी गर्मी के समय में रुकमणी देख सत्तू घला सुबह सुबह शरबत बना के खाए ले, जो उन्हें हमारे शरीर ला फायदा के होते। ओकर ले आहार तो होबे भरबे करते, पेट भरबे करते, संग में जो उन्हें सत्तू जो उन्हें पौष्टिक आहार होते तो हमारे शरीर ला फायदा पहुंचाते।
9: ऐसे रोशन सलाद में हम प्याज है, चुकंदर है, ये सब के उपयोग कर सकते हैं। और प्याज तो गर्मी में बहुत ज्यादा उपयोग करने चाहिए, कांवर ये ठंडा होते, आंखी भर ठंडा होते। और बहुत संगवारी मन है या संगवारी मन ला ये करना चाहिए कि जब भी हम घर ले बाहर निकलत हैं तो प्याज ला अपन साथ मराखन कहे जाते, कर ले लू लगे की संभावना कमती रही थे।
10: रुकमणी देख प्याज की बात करे तो सलाद की बात करे तो मन नींबू हुए है ना, नींबू है तो अभी बहुते फायदा के होते, नींबू है, पुदीना है, दही है, मट्ठा है, ये मन हा जो उन्हें तो हमारे पेट ला ठंडा करते, साथ में पेट के जो जलन है, गैस है, पाचन तंत्र ला सही करते। और देख नान्हे नान्हे लोग लइका मन घला शरबत बना बना के पीते, चाहे वो नींबू खोबा है, पुदीना खोबा है, कतको संगवारी मन हा पुदीना के पत्ता के चटनी बना के घला खाते, जे पेट भर तो फायदा होते, पाचन तंत्र अच्छा रखते और पेट के जो हमार गर्मी है ओला दूरियाते।
9: रोशन ये सब गोट बात तो हम हमार भर कर लेने नहीं, फिर संगे संग संगवारी हो हमार पशुधन के तको ये बेरा में ध्यान देवन, ओखर मन के आहार व्यवस्था बने रखन, और बासी है या बदबूदार है जौन भी आहार है उमन ला झन देवन, अशुद्ध पिए के पानी देवंत, और संगवारी ओखर मन के रहे के व्यवस्था बने करन, तभी हम स्वस्थ रही वो हमार पशुधन स्वस्थ रही और हमार प्रकृति स्वस्थ रही। प्रकृति के बात करें तो संगवारी हो अभी बर बिहाव बहुत चलत है और ये बेरे में देखे में आते कि अभी हमन प्लास्टिक के उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, पानी पिए के गिलास के बात हो या दोनों पत्तल के उपयोग करे के बाद ओला हम एती उती फेंक देते हैं, जिखर ले हमार पर्यावरण प्रदूषित होते। और सबले बड़े बात है संगवारी हो कि वो माटी में कहूँ दबा जाते तो वो जगह के माटी हमार अनुपजाऊ हो जाते, तो ये बात के ध्यान रखें कि प्लास्टिक के कमती ले कमती उपयोग करें, दोना पत्तल के उपयोग करें जो पत्ता के बने रहते हैं, या फिर स्टील के बर्तन के उपयोग कर सकते हैं।

0: या उपयोग करत हन त सुरक्षित रूप म करन और कमती से कमती करन।
1: सही कहे रुक्मणी, अब देखे गर्मी में बहुत अकन बात के सावचेत रहे लागथे। अभी देखे होबे कतको सुने म देखे में आते कि नशा पदार्थ ले घला संगवारी मल्ला जौन है तो गर्मी ते पड़बे करत है, ओकर से घला नुकसान होते, बीपी है ना भाई, चिड़चिड़ापन है और काम बूता में ओमन हा सुस्ती ओकर मन के शरीर लगते, बने ढंग ले काम बूता घला नहीं कर पावे। तो संगवारी हो नशा तो नाश की जड़े, इला जरूर नहीं करना चाहिए, जे कर ले हमार शरीर स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, मन हा अच्छा रहे। रुक्मणी देख, अभी सबो डहन खेत खार हा ये कहन के सुनना लागथे है नहीं, गर्मी के दिन पतझड़ हो गए है ना। देख, चिरई चुरून के बोली है बड़ सुहाथे, माया के बोली है मयारू लभाथे, तभे त ऐसन आरो आथे, मैना के बोली सुहागर लागे। तो आओ संगवारी सुनथन गीत जे लगावत है गया सिंह और निकास साहू मन।

0: अभी सुनन गीत जे लगावत रहिन हे गया सिंह और निकास साहू मन
1: बड़ सुघर गीत रही रोशन देख रोशन संरक्षण के बात हमन अभी करत रहन है नहीं अपन स्वास्थ्य सुरक्षित राखे के बात करत रहन तो संगवारी हो संरक्षण सबो जिनिस के बहुत जरूरी होते चाहे माटी के होवे पेड़ पौधा के होवे देख रोशन अभी पेड़ पौधा के महत्ता अभी के बेरा में बहुत ज्यादा पता चलते है जब हम रद्दा में चलथन तो लगते है कि कहूँ छाया वाला पेड़ पौधा मिल जाए जेखर नीचे हम खड़ा हो जाए और इसने नदी तरिया के पानी ला शुद्ध रखें उमा झिल्ली है या फिर देख खेती किसानी में उपयोग होए के बाद हम कीटनाशक दवाई डालन थन और वो ओखर उपयोग हो जो डब्बा है ये मल्ला नदी तरिया में झंड डालन एखर ले का होते हमारा जो पानी है वो अशुद्ध हो जाते जहरीला हो जाते है उमा रहिया जो जलीय जीव जंतु है ओखर मन पर वो नुकसान के होते है और एमा सबले ज्यादा जो प्रभावित होते वो होते मछली मन है नी
0: सही के हे रुक्मणी अब देख साफ सफाई चाहे हमर घर द्वार के होवे कुआं खोवे तरिया खोवे सबो जग के जरूरी है ना और साफ सफाई हमर रखबो तभी हमर जीवन ह सुरक्षित है और देख तरिया के बात करन तो अभी के समय में कुआं है तरिया होकर पानी मन हा अटा गे है कमतिया गे है और थोक बहुत पानी हवा भी तो वह गरम रिथे जेमा जौन है तो हमर कतको संगवारी मन हा मछली पालन के काम करते वो मल्ला थोड़ा ध्यान देना और मछली ला सुरक्षित ढंग ले पालना कठिन हो जाते ये गर्मी के दिन में है ना तो एक संबंध में आज के सलाम सुनथन जानकारी मछली पालन एवं प्रबंधन विशेषज्ञ है डॉक्टर सोएबम नासोत्तर सहायक प्राध्यापक मत्स्यकी महाविद्यालय कवर्धा और इनकर लेगोड़ बात करत है मोनिका जैन
2: संगवारी हो मछली पालन करैया जम्मो संगवारी मन हर बात के सावधानी रखते तभो ले कतकोने से नवा नवा समस्या आत रही थी जिसे आज के बेरा मा मछली पालन करैया संगवारी मन ला दू समस्या देखा मा आते पहली तो ये है माइक्रो प्लास्टिक और दूसरी यह होते माइक्रोबियल तो मछली पालन करत बखत ये दू समस्या का होते कैसे होते उखा निदान का है ये सारी जानकारी खातिर आज हमर संग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सोएबम नासोत्तर जी हा आप मन हा सहायक प्राध्यापक है मत्स्यकी महाविद्यालय कवर्धा मा डॉक्टर साहब अपन के स्वागत है हमारे क्रम मा
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब जैसे कि आज हमन आप मन ले दू जिन समस्या है जिन खास करके मछली पालन के वक्त आते ये विषय में जानना चाहबो जैसे कि माइक्रोप्लास्टिक और माइक्रोबियल तो सबले पहली तो ये बताते हो कि माइक्रोप्लास्टिक का हरे
3: माइक्रोप्लास्टिक्स एक एमर्जिंग पोल्यूटेंट है जो हम बाजार में थैली यूज करते हैं बॉटल यूज करते हैं या फिर मछली पकड़ने के जाल उसमें पॉलीएमाइड यूज होता है तो ये सब प्लास्टिक्स है तो क्या होता है कि जब प्लास्टिक आपको हम लोग फेंक देते हैं तो ये धीरे धीरे छोटी प्लास्टिक्स में बनती जाती है ये हो गया सेकेंडरी सोर्स अब प्राइमरी सोर्स है कि हम लोग कॉस्मेटिक्स या फिर पर्सनल केयर प्रोडक्ट जैसे कि शैम्पू हो गया आपका कोलगेट हो गया माउथ वॉश हो गया इनमें भी माइक्रोप्लास्टिक्स के बीड्स के फॉर्म में रहते हैं वो हो गया प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स तो ये सभी कहाँ पे जाते हैं अल्टीमेटली ये लोग जाते हैं पानी पे फिर इनको मछलियाँ खाती हैं तो ऐसे मछलियों पे इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है जो कि हम लास्ट में जाके हम जैसे लोग जो खाते हैं मछलियों को उन पे प्रभावित होता है इनका हाँ जी
2: सिर्फ तो उन बात है मतलब प्लास्टिक हा पर्यावरण प्रदूषण तो करवे करते हैं संगे संग पानी में जाके मछली मल में घलो की ये समस्या दे अच्छा ये जिन माइक्रो प्लास्टिक है ये मैंने जम्मू मछली मन में होते का
3: रिसर्च के अनुसार अभी तक तो जितने भी मछलियों में रिसर्च किया गया है उनमें ये माइक्रोप्लास्टिक्स पाया गया है

0: पर्टिकुलरली इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्स पे हद तक इनके मसल्स में भी, लिवर्स में भी और अन्य ऑर्गेन्स में भी पाया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा इनका डाइजेस्टिव ट्रैक में ही रहता है ये माइक्रोप्लास्टिक्स, जिसको हम बाद में खाने से पहले निकाल दें तो सुरक्षित कर सकते हैं खाने के लिए।
1: अच्छा ये बताते हो कि जैसे मछली मन में तो ये नुकसान पहुंचावे करते, तो क्या हम मनखे मन में घलोक ये नुकसान पहुंचा सकते?
0: हाँ, रिसर्च के अनुसार माइक्रोप्लास्टिक्स के बहुत तरीके के नुकसानदायक है। जैसे कि रिसर्च ने पाया कि रिप्रोडक्शन में समस्या आती है, फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है, तो ये सब अभी तक लैब में ही सीमित है और ये सब अभी तक इन विट्रो स्टडीज में पाया गया है। मतलब ह्यूमन में असल में स्टडीज नहीं हुई है, लेकिन एनिमल्स में स्टडी हुआ है, जैसे कि रैट में और कुछ और प्राणियों पे। तो इसका अभी तक लॉन्ग टर्म एक्सपोजर इफेक्ट पूरी तरीके से स्टैब्लिश नहीं हुआ है इसका अभी।
1: जी अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताते हो, मन में आवा थे कि भाई कोनो भी चीज़ है जैसे हमन पकाथन तो कहते ना कि कतकोन जिन जीवाणु में नष्ट हो जाते, जैसे पानी ला उबाल के पिए बर कही थे कि भाई पानी ला उबाल के पीना चाहिए तो खर जीवाणु में नष्ट हो जाते। अब अगर हम मछली के बात करें तो क्या मछली ला पकाए ले एमा जिन माइक्रो प्लास्टिक की समस्या आवा थे वो खत्म हो जाएगी?
0: मछली को पकाने से माइक्रो प्लास्टिक्स नहीं हटती, सिर्फ एक तरीका है इसको हटाने का, वो है डाइजेस्टिव ट्रैक को हटा ले आप खाने से पहले।
1: अब आथन हम दूसरिया जिन हमारी समस्या है जिन मछली पालन करत बखत होते ये कीटाणु ले होते जिले हमन माइक्रोबियल कही थन।
0: हाँ जी,
1: तो ये बताती हूँ कि ये मछली मन में कौन प्रकार के खतरा लेके आते, मतलब कैसे मछली मन ला नुकसान पहुंचाते?
0: पहली बात तो जब मछली जब मरती है तो उनके बॉडी में पहले से ही माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि हम इंसानों के पेट में भी माइक्रोब्स रहते हैं। तो जब मछली मरता है तो इसको अनकंट्रोल तरीके से बढ़ जाती है, फिर अगर हम लोग इसको सही टेम्परेचर में ना रखें, फ्रिज में ना रखें, तो तापमान के अब्यूज के वजह से ये माइक्रोब्स बहुत तेजी से बढ़ती है और मछली खराब कर सकती है।
1: जी।
0: हाँ जी
1: अच्छा इससे ये मतलब जैसे कि आपने बताया कि पहले ले कीटाणु मन मछली में होते,
0: हाँ जी,
1: तो ये आते कहाँ ले मछली में?
0: पहली बात तो माइक्रोब्स वाटर में प्रेजेंट रहते हैं, हर तरीके के वाटर में, फ्रेश वाटर हो या समुद्र का पानी हो, तो माइक्रोब्स तो रहते ही है। तो क्या होता है कि मछली ब्रीद करने के लिए गिल्स के थ्रू ब्रीद करती है, जिसके लिए उनको पानी को उनके गिल्स के थ्रू निकालते रहना पड़ता है। तो ऐसे पहला तो ये इस तरीके से मछलियों पे जाती है, और दूसरा है कि जब हम कैच करते हैं इनको, जब पकड़ते हैं इनको समुद्र से या फिर पॉन्ड से, तो अगर जिन इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज कर रहे हैं पकड़ने के लिए, गियर्स का जिसको हम लोग यूज करते हैं, अगर वो पहले से गंदा हो तो उससे भी आ सकती है। और फिर तीसरा है कि अगर हम लोग गंदा यूटेंसिल्स यूज करें इसको रखने के लिए, या फिर जब लैंडिंग सेंटर में आता है तो गंदा जगह पे रख देते हैं उसको, तो वहां से भी आ सकती है।
1: जी डॉक्टर साहब अब ये बताओ कि भाई मछली मनला एक तरह से असुरक्षित ही है मन, तो असुरक्षित ये जो मछली मन है मनला खाए का हो सकते?
0: असुरक्षित मछली को खाने से बहुत अलग अलग तरीके के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज हो सकते हैं, जैसे कि उल्टी, फिर डायरिया हो सकता है, फूड पॉइजनिंग जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं, नौजिया और फीवर भी आ सकती है इनसे।
1: अच्छा अब जैसे बाहर में जैसे जिन मन मछली ला बेचा थे वो मन तो वो कला सुरक्षित रखे खातिर अलग अलग उपाय रखते, बर्फ में रखते और दूसरे उपाय अपनाते, अब हम अल्लाह घर में मछली मन ला सुरक्षित रखना है तो ओखर बर हमन का उपाय अपना सकथन?
0: सबसे पहले तो मछली को खरीदते ही आप उसको धो ले अच्छे से, और उसको अच्छे से काट ले, और उसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक, गिल्स ये सब निकाल ले, और उसको फ्रिज में रख दे तुरंत। तो इससे हम जो ये सब डेंजर्स है इससे हम लोग बचा सकते हैं मछली को स्पॉइल होने से।
1: अच्छा तो का सिर्फ फ्रिज में रख दे वो तो का मछली मन सुरक्षित हो जाएगी?
0: नहीं नहीं, फ्रिज में रखने से काफ़ी हद तक माइक्रोब्स की बढ़ने की संख्या जो है कम हो जाती है, लेकिन माइक्रोब्स को नहीं मार पाती हो तो स्पॉइलेज डिले हो जाती है, मतलब स्पॉइलेज धीरे धीरे होती है, जो जल्दी होना था वो धीरे धीरे होती रहेगी, बट असुरक्षित तो अभी भी है मतलब। हाँ जी
1: अब जैसे हम मतलब पकाते हैं तो

0: अभी सुनिन गीत जला गाय रहिन भूषण देख देशमुख और शकुन तिवारी।
1: रुक्मणी देख किसान संगवारी मनला खरीफ के फसल लेके तैयारी जो उन्हें तो बहुत जरूरी हो गए है ना, चाहे खादू कचरा के बात करन बीजा के बात करन, तैयारी है जो उन्हें तो कोनो भी काम बूता के सफलता हर आए है ना। वो चाहे माटी की होवे बीज की होवे और कतको संगवारी मन है जो उन्हें तो घेरा उरा घला करत है अभी के समय में है ना भाई, तो ये जो उन बखत है तो संगवारी मल्ला तैयारी के भरपूर कहन की कोशिश करना चाहिए।
0: और अशन देख गर्मी के जो बेरा होते महीना होते ता कोनो भी तैयारी के बहुत अच्छा होते हैं नी, जैसे जैसे बात करें बीज के हो गए ऐसे माटी की तैयारी या खेत की तैयारी हम ये बेरा में अच्छे से कर सकते हैं। देख थोड़े दिन पहले पानी गिरेस रही है नी, तो अगर कहूँ खेत में नमी है तो हम खेत के अकरस जोताई कर सकते हैं, मेड़ बना के काम कर सकते हैं। और देखे मात है कि खेत कहूँ जगह ऊपर रही थे कोनो जगह का होते ढालू होते हैं नी, तो ओकर हम समतलीकरण कर सकते हैं।
1: सही के है रुक्मणी, देख खंती गोदी करके मेड़ के बात कहे सुना तो देख अकरा ज्यादा पानी गिरते अचानक से तो अभी गर्मी के समय माँ मेड़ मन रनाए रही थे है ना, आओ केकरा ओकरा मन बीला करे रही थे ता ओमा पानी भरते जब ना तो मेड़ हा बोहा जाते फूट जाते है ना, और बहुत ज्यादा पानी गिरते ता और पूरा खार में जब पानी पानी हो गए तो मेड़ ला बांधे बर कहाँ लाबो पानी है ना, तो मेड़ ला बांधे और माटी कहाँ लाबो है ना, तो एकर स्थिति जौन है तो बने मोटा बांधन जेकर ले जौन हो उस समय फिफियाए की जरूरत झन पड़े। और देख गोट बात करा समय कैसे बुला पता नहीं चली जाए बेरा हो गए है, तो जाए पहली काली के कार्यक्रम बता देथन। काली हुई आज के सलामा दुग्ध प्रसंस्करण एवं प्रबंधन विशेषज्ञ हुई डॉक्टर सारंग दिलीप, सहायक प्राध्यापक दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर। और गीत संगीत संग हुई आज के प्रश्न, तो भाई देवा विदा कार्यक्रम सुनिया सबो संगवारी मल्ला रोशन हो
0: रुक्मणी के
1: राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल, ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं, आइए सुने चित्रपट संगीत।

0: हरिहरन और अलका याग्निक की आवाजों में आप सुन रहे थे रानी मलिक का लिखा गीत। फिल्म अलबेला के लिए संगीत जतिन ललित का था।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: यस बॉस, इस फिल्म का गीत आइए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति

0: की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ, संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में आपने सुना फिल्म वास्तव का गीत। समीर के बोल थे, जतिन ललित का संगीत। इसके साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:15 होने को हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashvani. We now bring you the weekly program Swar Dharohar, based on the archival inputs of Akashvani.
1: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वर धरो

0: नमस्कार श्रोताओ, स्वर धरोहर कार्यक्रम में मैं आशुतोष
1: और मैं श्वेता आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओ, आज हम बात करेंगे उस विभूति की जिसने उपशास्त्रीय गायन की एक शैली ठुमरी को घर घर तक पहुंचाया।

0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विदुषी गिरिजा देवी की। 8 मई 1929 को बनारस में जन्मी विदुषी गिरिजा देवी के पिता रामदेव राय एक जमींदार थे, साथ ही संगीत प्रेमी भी थे। उन्होंने ही गिरिजा देवी को संगीत की ओर प्रेरित किया।
1: विदुषी गिरिजा देवी ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा पंडित सरयू पांडे और बाद में श्री चंद्र मिश्रा से ली। बचपन से ही उन्हें ठुमरी, दादरा, कजरी और होरी जैसे उपशास्त्रीय गायन में रुचि हो गई। आइए सुनते हैं गिरिजा जी से उनके बचपन के बारे में।
2: मैं 5 साल की थी तब मेरा संगीत शुरू मेरे पिताजी ने करवाई, और मेरे पिताजी को संगीत का शौक था। वो संगीत वादन वगैरह में उनकी रुचि काफी थी। मेरी रुचि इतनी हो गई कि मुझे पढ़ाई भी अच्छी नहीं लगती थी और केवल बस खेल कूद थोड़ा, मैं मुझे गुड़ियों से शौक था। तो वो इसलिए हुआ कि मुझे लोकगीत बहुत पसंद थे, तो लोकगीत में मेरी जितनी गांव के लोग आती थी, मेरी माँ, काकी, दादी, ये लोग जो शादी वादी में गाती थी, तो इसलिए मैं हर वक्त गुड़ियों की शादी करवाती थी। उसमें जो उन लोग को बिठा दे गाना गाने के लिए, मैं भी गाती थी। तो उससे मुझे शौक हुआ कि ये भी संस्कारिक गीत एक चीज होती है। और उसके बाद तो मैं अपने गुरु से 15 साल तक बराबर सीखी, 10 साल पंडित सरयू प्रसाद मिश्रा जी से, जिनको हम लोग दादाजी कहते थे, क्योंकि मेरे पिताजी भी उनसे संगीत की शिक्षा लिए हुए थे। संगीत का शौक जो मुझे हुआ कि मैं शास्त्रीय संगीत और अपने बनारस की सब चीजें मैं सीखूं, इसलिए उसके ऊपर मैं पूरी तरह से अपनी मन प्राण दे करके उसके बीच में पड़ गई। 18 साल की जब मैं हुई तब मेरे दूसरे गुरुजी आए, तब मेरी शादी हो गई थी, तो स्वर्गीय पंडित श्री चंद मिश्रा जी से, और उनसे लगातार, मैंने जब तक उनका स्वर्गवास नहीं हुआ, उन्हें कैंसर हुआ था, तब तक भी हमें बताते चले जाते थे, गले से उनको हो गया था, मैं लिख के बताते थे। इतनी मुसीबत से मैं सीखती थी और उनकी सेवा भी करती थी कि हमारे गुरु किसी तरह से बच जाए। तो काफी मैंने उनके इलाज और दवा और डॉक्टर, क्योंकि जब वो गए हैं तब काफी मैं प्रोग्राम्स वगैरह कर रही थी, इसलिए जान पहचान होने के नाते उनकी, मैं चाहती थी मेरे एक गुरु तो बच जाए।
0: 1946 में गिरिजा देवी का विवाह एक व्यवसायी परिवार में हुआ। उस समय समाज में महिलाओं का मंच पर गाना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन उन्होंने समाज की परवाह नहीं करते हुए अपने गायन की शिक्षा को जारी रखा। शादी के बाद उन्होंने अपने गायन और परिवार दोनों को एक साथ कैसे संभाला, आइए सुनते हैं।
2: उसमें से समय ऐसे निकालती थी कि अपना नींद सोना बंद कर दिया, अपना घूमना बंद कर दिया, अपने कोई फैशन की चीज बंद कर दिया, अपना कोई सिनेमा, ये कोई चीज, सब चीज देखना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे पास समय उतना था कि सवेरे उठ करके नाश्ता बनवाना, ये करना, पति को या अपने को, परिवार के अतिथि को स्वागत करना, मेरी एक बेटी स्कूल भेजना, फिर इसके बाद समझ लीजिए कि दोपहर के खाने वाने में करना। तो लेकिन हम 3:30 बजे रात को उठते थे और मैं 6:30 तक गा लेती थी, तो 3:30 में 4 बजे से शुरू करके 6:30 बजे गा लेती थी, उसके बाद सारे काम करती, फिर 11 बजे से जब कोई काम नहीं था 11 से 1 तक गा लेती थी, इस तरह से गए। फिर मेरे 8:30 बजे गुरुजी आते थे सबको खाना खिला के, 8:30 से लेके फिर 11 बजे तक रात को गा लेती थी।
1: 1949 में उन्होंने पहली बार आकाशवाणी में अपनी प्रस्तुति दी। ये उनके प्रोफेशनल करियर की शुरुआत थी, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्रोताओं, विदुषी गिरिजा देवी की रेडियो में गाने की शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं।
2: इलाहाबाद रेडियो स्टेशन बना 48 में, शायद वो हमारे स्वर्गीय पंडित कान्हा जी ठाकुर साहब लोग गए थे उसमें, और 49 से मैं गई।

0: उसमें तो उस जमाने में खुद एसडी साहब थे, उन्होंने लिया मेरा ये गाना सुना और एक घंटे तक सुनते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे, तो उस जमाने में ग्रेड वगैरह कुछ पता नहीं लगता था, लेकिन इतना अच्छा ग्रेड दिया जो कि हमारे बड़े कलाकारों को मिलता, उसी उतने ही रुपया मुझे मिला। तो 49 से रेडियो में गाया।
1: जो ठुमरी पहले केवल लोक संगीत का अंग माना जाता था, उसे उन्होंने कला के ऊंचे स्तर तक पहुंचाया।
2: उनकी आवाज में मिठास, गहराई और एक खास बनारसी अंदाज था। लोग उन्हें प्यार से ठुमरी की रानी कहने लगे। उन्होंने देश विदेश में सैकड़ों कार्यक्रम किए और हर जगह भारत की सांस्कृतिक गरिमा को बढ़ाया। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं उनकी एक ठुमरी।

श्रोताओं, कार्यक्रम स्वर धरोहर में अब समय हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम विदुषी गिरिजा देवी के बारे में और जानेंगे।

0: आप सुन रहे हैं स्वर धरोहर। ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है।
1: गिरिजा देवी ने ठुमरी, कजरी, चैती, होरी और टप्पा जैसी गायन शैलियों को खूब गाया। उनका अंदाज बहुत भावुक और दिल छूने वाला होता था। लोग उनके गायन में गांव, गंगा और बनारस की खुशबू महसूस करते थे। उनकी गायकी में एक सादगी और मिठास थी जो सभी सुधीजनों को रास आती थी। आइए सुनते हैं उनके संगीत सम्मेलन के बारे में।
2: मार्च में मैं दिल्ली गई, जहाँ की ऐसा था कि 20-20 मिनट के 3 प्रोग्राम होने चाहिए। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरोजनी नायडू और जितने अब्दुल कलाम आजाद, इन लोगों के लिए एक प्रोग्राम होता था तालकटोरा गार्डन में। तो उसमें 20 मिनट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, 20 मिनट परोसकर जी और 20 मिनट मेरा था। और संयोग की बात थी कि देखिए, ये भी मेरे तकदीर की बहुत बड़ी बात थी। हम कभी बताते नहीं, लेकिन आज बता रहे, सारी दुनिया सुने, मुझे तो अच्छा ही लगेगा। डॉक्टर राधा कृष्णन जी वहाँ बैठे थे, वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर। फिर जब मैं 17-18 मिनट लगी करी थी बंद करने, तैसे ही वो आई दौड़ी दौड़ी, मिस निर्मला जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी डॉक्टर राधा कृष्णन जी करें, एक गाना और सुनेंगे। तो हमने कहा, जब इधर देखे तो उम्र छोटी, तो हमने कहा 23-24 साल की उम्र, हमने कहा क्या कह रही हैं आप दीदी, उनको भी हम दीदी बोलते थे
1: जी।
2: तो बोले एक गाना और जल्दी सुना दम का, नहीं जल्दी नहीं सुनाएंगे, अगर उनका सुनने का मन हो तो हम जब तक गाएंगे सब लोग बैठे तो सुना में, अब बीच में 5 मिनट गाते रहे या उठ जाएंगे तो मुझे बहुत अपमान लगेगा। मैं तब ये मेरी बात सुना गई सबको, बिल्कुल बेसुध होके बोले, क्योंकि घबराए थे ना। मैंने कहा थोड़ा बगल में होगा कि दीदी देख लीजिए, बीच में से कोई लोग उठेंगे तो मुझे बहुत खराब लगेगा, या तो पहले ही कह दीजिए 2 मिनट का गाना हम गा दें, नहीं तो हम गाएंगे तो सुन लीजिए। तो उसके बाद मैंने समझ लीजिए कि एक ठुमरी 40 मिनट की गाई।
0: विदुषी गिरिजा देवी को कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 1972 में पद्मश्री, 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1989 में पद्म भूषण, 2016 में पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार प्राप्त हुए। लेकिन उनका असली सम्मान तो वो प्यार था जो आज भी हर संगीत प्रेमी के दिल में उनके लिए है।
1: गिरिजा देवी सिर्फ गायिका ही नहीं, एक बेहतरीन शिक्षक भी थी। उन्होंने ITC संगीत अकादमी और BHU वाराणसी में कई छात्रों को सिखाया। उनके सिखाए हुए शिष्य आज भी ठुमरी को जिंदा रखे हुए हैं।
0: विदुषी गिरिजा देवी ने अपनी पूरी जिंदगी संगीत को समर्पित कर दी। अपने अंतिम दिनों तक वो संगीत सिखाती रहीं, गाती रहीं। 24 अक्टूबर 2017 को 88 वर्ष की आयु में कोलकाता में उनका निधन हो गया। श्रोताओ, आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swardharoharair@gmail.com। जी हाँ, swardharoharair@gmail.com।
1: श्रोताओं, आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है स्वर धरोहर आकाशवाणी।
0: तो अब हमें, यानी आशुतोष
1: और श्वेता को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम स्वर धरोहर की आज की कड़ी के निर्माता थे आशुतोष कुमार। आलेख था दीपा कुमारी का और प्रस्तुति सहयोग था डिंपल का। वाचल स्वर था आशुतोष और श्वेता का। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया अनुराग उपाध्याय और अभिषेक ने।

0: की उमंग, साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा, 1 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह पक्की की, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला जारी। एशियन जूनियर व्यक्तिगत स्क्वॉश चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला आर्यवीर दीवान ने अपने नाम किया, शिवेन अग्रवाल और अनिका दुबे उप विजेता रहीं। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता उत्साह के साथ तीसरे दिन भी जारी, और अहमदाबाद में आयोजित हुआ संडे ऑन साइकिल का 75वां संस्करण। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुश्ती से, जहां पर कई आज पदक देखने को हमें मिले। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए आज वियतनाम के दानांग में 1 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उज्बेकिस्तान के ओजोदबेक खालिमवेव को 12-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 55 किलोग्राम वर्ग में नीरज पटेल ने कांस्य पदक के लिए खेले गए मैच में कजाकिस्तान के रोआन बेकिमोव को 8-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। रोहित बुरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में किर्गिस्तान के आर्टिक बेव अलिम्बेक उलू को 9-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। वहीं महिलाओं की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वीटी ने 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में न्योगलिन डो से 7-5 से हारकर रजत पदक अपने नाम किया। 59 किलोग्राम वर्ग में नेहा संगवान ने फाइनल में उज्बेकिस्तान की लेलोखोन सोबी रिवॉक से 9-5 से हारने के बाद रजत पदक हासिल किया। वहीं 55 किलोग्राम वर्ग में अहिल्या शिंदे ने कांस्य पदक जीता। आज कई खिलाड़ियों ने स्वर्ण तो कई ने कांस्य और कईयों ने रजत पदक अपने नाम किया। अगर हम देखें इस प्रतियोगिता में, तो प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने विरोधियों को पटकनी देते हुए देश के लिए कई पदक अपने नाम किए। बचे हुए मुकाबलों में इन खिलाड़ियों से पदकों की संख्या बढ़ाने की पूरी उम्मीद है। अब सीधे रुख कर लेते हैं आईपीएल क्रिकेट की ओर, जहां पर टॉप 4 के टीम जो है प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। जहां आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित ओवर में 8 विकेट पर 205 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई 9 विकेट पर 175 रन ही बना सकी। इस मुकाबले के परिणाम के बाद प्लेऑफ की 4 टीमें फाइनल हो गई। आरसीबी 18 अंक और बेहतर रन रेट, अगर हम आरसीबी की बात कर ले तो टॉप पर आरसीबी पहुंची है, जिनका नेट रन रेट 0.783 है। वहीं दूसरे स्थान पर गुजरात टाइटंस ने क्वालिफाई किया, जिनका नेट रन रेट 0.695 है। वहीं तीसरे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद पहले ही क्वालिफाई कर चुकी थी, जिनका नेट रन रेट 0.524 है। उन्होंने 9 मुकाबले जीते हैं और 5 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं राजस्थान ने 16 अंकों के साथ प्लेऑफ में जगह बना ली है। और अगर हम आगे के मुकाबलों की भी बात कर ले, तो धर्मशाला में 26 मई को क्वालिफायर 1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। वहीं न्यू चंडीगढ़ में 27 मई को एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स मुकाबला करेंगे। वहीं कल एक और मुकाबला खेला गया था, हालांकि पंजाब किंग्स प्रतियोगिता से अब बाहर हो चुकी है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने आज अपना मुकाबला जीत लिया है। लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर के प्रदर्शन ने अगले साल के लिए कुछ उम्मीदें गाई हैं। कल लखनऊ में हुए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। सुनते हैं कल के मैच का हाल।
1: कल हुए मुकाबले में टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। लखनऊ ने 16 के स्कोर पर अर्शीन कुलकर्णी का विकेट गंवा दिया। निकोलस पूरन भी 2 रन बनाकर मार्को यानसन का शिकार बने। चौथे विकेट के लिए आयुष बड़ौनी और जॉश इंग्लिश ने 49 रन की साझेदारी की। आयुष ने 200 से अधिक स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ 43 रन बनाए। कप्तान ऋषभ पंत और इंग्लिश ने मिलकर लखनऊ की पारी को संभाला। कप्तान ने 26 रन की सधी हुई पारी खेली। वहीं इंपैक्ट प्लेयर जॉश इंग्लिश ने 44 गेंद पर बेहतरीन 72 रन बनाए। अब्दुल समद ने भी 37 रन का अहम योगदान

नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत

0: योगदान दिया। लखनऊ ने निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर 196 रन बनाए। पंजाब की ओर से मार्को यानसेन और युजवेंद्र चहल ने दो दो विकेट अपने नाम किए। अजमतुल्ला उमरजई और शशांक सिंह ने एक एक विकेट हासिल किए। प्रभसिमरन सिंह और कप्तान श्रेयस अय्यर ने साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 76 गेंदों में 140 रन जुटाकर टीम को जीत की दहलीज पर ला दिया। प्रभसिमरन 39 गेंदों में 69 रन की पारी खेलकर आउट हुए। वहीं अय्यर 51 गेंदों में 5 छक्कों और 11 चौकों के साथ 101 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रेयस अय्यर की कप्तानी पारी के बदौलत पंजाब ने दो ओवर शेष रहते सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाकर जीत दर्ज की। लखनऊ की ओर से मोहम्मद शमी ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि सीजन का अपना पहला मैच खेल रहे अर्जुन तेंदुलकर ने 1 विकेट अपने नाम किया। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि हमने खिलाड़ियों को अपना नेचुरल गेम खेलने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा था।
1: Honestly speaking, we didn't say anything. We just kept it simple. Rather than having meetings, putting more pressure on the boys, I think you kind of get lost in the previous losses when you discuss a lot. It's important that you let them be. You know, their free flow of mind is required, especially in crucial games, and you don't want to make them overthink in pressure situation. And today, I literally told Ricky that, you know, let's not do any team meeting. Let's just head to the ground and do our rituals, which we've been doing consistently, and we could see the result.
0: करिश्मा राय स्पोर्ट्स कैन।
2: इस बीच कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच भी अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 13वें ओवर में 3 विकेट पर 125 रन बना लिए। हालांकि इस मुकाबले का अब परिणाम से कोई भी प्लेऑफ में अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगले साल होने वाले आईपीएल के लिए ये खिलाड़ी और ये जो टीमें हैं उम्मीदें जगाएंगी। अब सीधे रुख करते हैं स्क्वाश की ओर। 33वें एशियन जूनियर व्यक्तिगत स्क्वाश चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला आर्यवीर दीवान ने अपने नाम किया। शिवेन अग्रवाल और अनिका दुबे उप विजेता रहीं। सुनते हैं इस प्रतियोगिता में अब तक भारतीय खिलाड़ियों का कैसा रहा प्रदर्शन।
3: 33वीं एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप में आज लड़कों के अंडर 19 वर्ग में आर्यवीर दीवान ने खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। फाइनल में आर्यवीर ने कोरिया के ली जोंग हा युक को हराया। 3x4 सीड हासिल करने वाले आर्यवीर ने चीन के पंजुआ में आयोजित प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में मलेशिया के टॉप सीड निकलेश्वर मोगाना सुंदरम को 4 गेम में हराया। आर्यवीर ने पिछले साल अंडर 17 खिताब के लिए भी इसी मलेशियाई खिलाड़ी को शिकस्त दी थी। लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में अनिका दुबे उप विजेता रहीं। अनिका दुबे को हार्लिन तान ने हराकर खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। वहीं लड़कों के इसी वर्ग में शिवेन अग्रवाल शानदार प्रदर्शन करते हुए उप विजेता रहे। फाइनल मुकाबले में शिवेन को नुमान खान से हार का सामना करना पड़ा। अंडर 13 वर्ग में लड़कों में अमारिया बजाज को भी फाइनल मुकाबले में हार मिली। खिताबी मुकाबले में उन्हें लियोंग सांग से हार का सामना करना पड़ा। भूपेंद्र सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
2: ये जो आर्यवीर दीवान और जो नई पौध है ये लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत का झंडा शान से लहरा रहे हैं। अब सीधे रुख करते हैं झारखंड के रांची की ओर, जहां पर सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता जारी है। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता जारी है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन आज भी कई स्पर्धाएं आयोजित की गईं। प्रतियोगिता के दूसरे दिन गुरिंदर सिंह वीर ने 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में नया कीर्तिमान स्थापित किया। मैच के बाद गुरिंदर वीर सिंह ने कहा कि इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ मजबूत होना चाहिए।
4: लास्ट मिनट पे जो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाएगा वो जीतेगा, तो शायद मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाया और इसलिए मैं अच्छा भाग पाया और होपफुली आगे भी अच्छा करूंगा। ट्रेनिंग बहुत अच्छे से चल रही थी, हार्ड ट्रेनिंग किया, बहुत चीजें जो मेरे में कमी थी उसको सुधारा। एंड्योरेंस की कमी थी, स्पीड एंड्योरेंस की कमी थी, हर चीज पे फोकस किया, ब्लॉक स्टार्ट को इम्प्रूव किया, अपनी स्ट्रेंथ को और अच्छी स्ट्रेंथ बनाया। प्लानिंग यही है अभी, गो विद द फ्लो, मैं अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करूंगा। होपफुली भगवान ने चाहे तो कॉमनवेल्थ एशियन गेम में अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा।
2: और अब अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी रांची संवाददाता महवीश।
5: जी
2: महवीश, झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन का प्रतियोगिता जारी है। आज महिलाओं के वर्ग में हरियाणा और पंजाब का दबदबा रहा, इस बारे में क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
5: जी बिल्कुल, आज भी स्टेडियम में दर्शकों

0: का उत्साह चरम पर था। महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक में हरियाणा की रवीना ने अपनी रफ्तार से सबको पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के हैमर थ्रो मुकाबले में पंजाब की मनप्रीत कौर ने शानदार थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है।
1: जी, ये प्रतियोगिता कॉमनवेल्थ खेलों के लिए चयन ट्रायल भी है। पुरुष हाई जंप से देश के लिए क्या अच्छी खबरें नजर आ रही हैं इस प्रतियोगिता से?
0: जी, आज तो हाई जंप में भारतीय एथलीटों ने कमाल कर दिया। सर्वेश अनिल कुसारे ने 2.28 मीटर की शानदार छलांग लगाई। उनके साथ ही आदर्श राम ने 2.22 मीटर की कूद लगाकर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इन दोनों खिलाड़ियों ने भारत के लिए पदक की उम्मीदें बहुत बढ़ा दी है।
1: मैं विश ट्रैक इवेंट की अगर हम बात कर ले तो आज हर्डल्स यानी बाधा दौड़ में किन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सबकी नजरें रही थी?
0: आज ट्रैक पर जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। रिलायंस के तेजस अशोक सिरसे ने मात्र 13.5 सेकंड का समय निकालकर एक नया मीट रिकॉर्ड कायम किया और स्वर्ण पदक जीता। उनके ठीक पीछे क्रिस्क एम ने 13.52 सेकंड के बेहतरीन समय के साथ रजत पदक हासिल किया। इन दोनों धावकों के बीच की टक्कर आज के दिन का सबसे बड़ा रोमांच थी। एक बड़ा धमाका पुरुषों के पोल वॉल्ट में भी हुआ, जहां मध्य प्रदेश अकादमी के देव मीना ने 5.42 मीटर की रिकॉर्ड तोड़ छलांग लगाकर नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। वहीं महिलाओं की 100 मीटर हर्डल रेस में नंदनी के प्रदर्शन पर मुख्य फोकस रहा। इन दोनों एथलीटों ने अपनी श्रेणी में सबसे बेहतरीन खेल दिखाया है आज।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद महवेश, आपने ये विस्तृत हमें जानकारी हमारे साथ साझा की। अब सीधे बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन पर। पेरिस में आज से फ्रेंच ओपन टेनिस का आगाज हो चुका है। प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर, अलेक्जेंडर ज्वेरेव जैसे प्रतिष्ठित खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। वहीं कार्लोस अल्काराज चोट के कारण प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। भारत की ओर से यूकी भांबरी और एन श्रीराम बालाजी भारतीय दल का नेतृत्व करते नजर आएंगे। महिला वर्ग में करमन कौर थांडी ने क्वालिफाइंग ड्रॉ में हिस्सा लिया था, लेकिन उनका सफर पहले दौर में ही समाप्त हो गया। यूकी भांबरी ATP डबल्स रैंकिंग में टॉप 20 तक पहुंचने वाले वे सक्रिय भारतीय खिलाड़ियों में से सबसे आगे हैं। वहीं श्रीराम बालाजी अपने अनुभव और मजबूत नेट गेम के कारण भारतीय डबल्स टीम के अहम स्तंभ माने जा रहे हैं। फ्रेंच ओपन 2026 में भारत की मौजूदगी की अगर हम बात करें तो भले ही सीमित हो, लेकिन यूकी भांबरी की शानदार फॉर्म, श्रीराम बालाजी का अनुभव और जूनियर खिलाड़ियों का उत्साह भारतीय टेनिस प्रशंसकों को भविष्य के लिए नई उम्मीदें दे रहा है। आने वाले दिनों में पेरिस की क्ले कोर्ट पर करोड़ों भारतीय निगाहें इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी। हैम्बर्ग में इग्नासियो बुसे ने फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए हैम्बर्ग ओपन टेनिस का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने दुनिया के 26वें नंबर के अमरीकी खिलाड़ी टॉमी पॉल को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। उधर SM कृष्णा मेमोरियल ओपन में आदिल कल्याणपुर और मुकुंद शशिकुमार की जोड़ी ने कल बेंगलुरु में SM कृष्णा मेमोरियल ओपन 2026 में डबल्स को अपने नाम कर लिया है। सीधे बात करते हैं फिट इंडिया मूवमेंट पर। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत चलाए जा रहे संडे ऑन साइकिल इवेंट के 75वें संस्करण का आयोजन अहमदाबाद में हुआ। इसमें खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, अभिनेता आयुष्मान खुराना और ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग शामिल हुए। मनसुख मांडविया ने इस कार्यक्रम के दौरान देशवासियों को फिट रहने का संदेश भी दिया। अब सीधे ले चलते हैं आपको कोलकाता, जहां पर IPL का अंतिम लीग मुकाबला जारी है, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 135 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान

0: मैदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
2: We want peace and stability.
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
2: Importer of energy and much of it comes from that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने CPIM के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों कारावास की सजा

0: पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है।

कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालु नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

एंट्री देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपने श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओजोदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड I am निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi. BJP candidate Debangshu Panda sweeps West Bengal's Falta Assembly repoll by over 1,00,000 votes. TMC candidate forfeits deposit. West Bengal government directs all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners. Government ropes in IIT Madras and Kanpur to experts to fix CBSE re-evaluation portal glitches. In Karnataka, 8 people swept away by strong currents in Tatte Hakalu River in Uttara Kannada district. President, Vice President and Prime Minister expressed grief over the loss of lives. Normal life affected due to severe heat wave in central and northwest India. Conditions to continue for next 7 days. And at the Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian

0: लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज़ों में आपने सुना मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। फिल्म अभिमान के लिए धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: चित्रपट संगीत में अब आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में फिल्म रॉकी का गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

0: कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ, रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
5: कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म परिंदा से। खुर्शीद हल्लौरी के लिखे गीत को संगीत दिया है राहुल देवबर्मन ने, आवाजें आशा भोसले और सुरेश वाटकर की।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:30 होने को हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में
1: है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाली विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगाशंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य उस समय के बम्बई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हरशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You were listening to Rag Darbari on the sitar by Pandit Harishankar Bhattacharya. He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छाया नट सुन रहे थे। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग छाया नट इन द सितार रिसाइटल। Pandit Harishankar Bhattacharya concludes his presentation with Rag Zila Kafi. Beginning with Alap, the composition of the rag is set to Gat in Deep Chandi and Drut Tinta.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरोशंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांतो दे रॉय।
1: You are listening to Rag Zila Kafi in the sitar recital by Pandit Harishankar Bhattacharya. He was accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: And with this, we end tonight's रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी CPIM के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा

0: निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालु नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Health Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. Union Home Minister Amit Shah today said, government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, that is UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said, the UCC will not infringe upon any tribal rights.

हेलो टाक स्टूडियो, अभी यहाँ घड़ी में 5:30 और 12:13:14:15 सेकंड हुए हैं। हेलो।